0: वाले रथ पर बैठकर आप मनुष्यों के हित चिंतकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। त्वं सूरो हरितो रामयो नृन्भरचक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्य पारं नवतिं नाव्यानामपि कर्तमवर्तयो यज्ञून। हे इंद्रदेव, आप प्रकाशमान सूर्यदेव के समान ही मनुष्यों की हितकारक और रसों को अवशोषित करने वाली रश्मियों को आलोकित करते हैं। आपके रथ का चक्र सदैव गतिमान रहता है। नौकाओं से लांघने योग्य 90 नदियों के पार यज्ञ विरोधियों को फेंक कर आपने विलक्षण कार्य संपन्न किया है। त्वं नो अस्या इंद्र दुर्हणाया पाहि वज्रिवो दुरितादभि के प्रनो वाज्यान्रथ्यो अश्वबुद्ध्यानिशे यन्धिश्रवसे सूनृतायै। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिन्हें अति प्रयास पूर्वक ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसे दुर्गतिकारक पाप कर्मों से हमें बचाकर संरक्षित करें। युद्ध भूमि में भली प्रकार से हमारी रक्षा करें। हमें यश बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त व्यवहार के निमित्त रथ और अश्वों से युक्त ऐश्वर्य संपदा प्रदान करें। मा सा ते अस्मत सुमतिर् वि दसद्वाज प्रमह समिशो वरंत आ नो भज मघवन गोश्वरियो मै हिष्ठास्ते सधमादह स्याम। अपनी सामर्थ्यों से स्तुति योग्य हे इंद्रदेव, आपकी विवेक युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में अभाव न हो। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के अन्न एवं धन को अर्जित करें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप हमें गोधन से परिपूर्ण करें तथा आपकी महिमा को बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रहकर आनंदित हों।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 121 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास पलटकर देखने वालों को इशारे से बुलाता है पास और दे देता है समय का संदूक जिसमें आज भी जीवित हैं स्मृतियां। इतिहास दोहराया नहीं जाता, लिखा जाता है बार बार नई दृष्टि, नए तेवर और नई भाषा में। कोई भी मानव सभ्यता अपने इतिहास को जाने बिना स्वयं को नहीं जान सकती। इतिहास हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है। इतिहास हमें हमारी जड़ों की ओर ले चलता है और गुजरे कल के आईने में हम अपनी असली तस्वीर देख पाते हैं। इस तरह इतिहास हमसे हमारा परिचय करवाता है तथा वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए हमें तैयार करने में मदद करता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे इतिहासकार और पुरातत्वविद की, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मोहन जोदड़ो की खोज कर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वो महान पुरातत्वविद और इतिहासकार थे राखालदास बंदोपाध्याय। राखालदास बंदोपाध्याय का जन्म 12 अप्रैल सन 1885 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। राखालदास बंदोपाध्याय अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत भाषा का भी गहन अध्ययन किया था। राखालदास बंदोपाध्याय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ अध्ययन के दौरान ही उनकी भेंट महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री और सुप्रसिद्ध लेखक रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी से हुई। पंडित हरप्रसाद शास्त्री एक शिक्षा शास्त्री, संस्कृत के विद्वान, भारतविद तथा बांग्ला साहित्य के इतिहासकार थे। इन विद्वानों के सानिध्य ने उनके मन में इतिहास और पुरातत्व के प्रति विशेष रुचि पैदा कर दी। उन दिनों बंगाल सर्किल के पुरातत्व अधीक्षक थे डॉक्टर टी ब्लॉक। राखालदास बंदोपाध्याय जब डॉक्टर ब्लॉक के संपर्क में आए तो उनके साथ अवैतनिक सहायक के रूप में जुड़ गए। अनेक अन्वेषणों और उत्खननों में उन्होंने डॉक्टर ब्लॉक के साथ काम किया। इस तरह राखालदास बंदोपाध्याय के जीवन ने जैसे अपनी एक दिशा तय कर ली। भारत और उसका गौरवशाली इतिहास उनकी आत्मा का संगीत बन गया।

सन 1907 में बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद राखालदास बंदोपाध्याय की नियुक्ति प्रांतीय संग्रहालय लखनऊ में हुई। यहाँ वो सूची पत्र बनाने का काम किया करते थे। लेखन में भी उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए इस बीच उन्होंने इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण लेख भी लिखे। 1910 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद उनकी नियुक्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उत्खनन सहायक के पद पर हुई। लगभग एक साल तक उन्होंने कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम में काम किया। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में एक वर्ष तक काम करने के दौरान उनकी रुचि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की ओर और गहरी हुई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में एक मजबूत नींव दी। 1917 में राखालदास बंदोपाध्याय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पश्चिमी मंडल पुणे में अधीक्षक नियुक्त किया गया। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थलों पर काम किया। मध्य प्रदेश के भूमरा में गुप्तकालीन मंदिर और है कलचुरी स्मारकों पर उनके शोध ने उन्हें अभूतपूर्व ख्याति दिलाई। महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, राजस्थान और मध्य प्रदेश की देसी रियासतों में उन्होंने पुरातत्व के जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनका विवरण एनुअल रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन राखालदास बंदोपाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण काम सामने आया सन 1922 में, जब उन्होंने सिंध में मोहनजोदड़ो की खोज की। दरअसल वो एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ असाधारण अवशेष मिले। इन अवशेषों ने एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा किया जो हजारों वर्षों से गुमनाम मिट्टी की तहों के नीचे दबी हुई थी। राखालदास बंदोपाध्याय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के साथ मिलकर इस स्थल की गहन खुदाई की। ये खोज थी सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, 2500 ईसा पूर्व की एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा था। ये स्थान सुनियोजित सड़कों, विशिष्ट जल निकासी प्रणाली और अपने बड़े बड़े अनाज भंडारों के साथ भारतीय प्राचीन सभ्यता का एक शहरी चमत्कार था। राखालदास बंदोपाध्याय की इस महत्वपूर्ण खोज ने ये साबित कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी।

मोहनजोदड़ो की खोज ने विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित कराया। इस शहर की खुदाई में कई आश्चर्यजनक चीजें सामने आईं। यहाँ की सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। यहाँ की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आधुनिक नगर नियोजकों को भी इसे देखकर आश्चर्य होता है। एक विशाल स्नानागार यहाँ मिला जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग होता था। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मुहरें और एक प्रसिद्ध नृत्य करती कन्या की मूर्ति भी मिली। इन मुहरों पर पशुओं और लिपियों की नक्काशी थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो के घरों में ईंटों का उपयोग और उनके डिजाइन से पता चलता है कि यहाँ के लोग निर्माण और कला में कितने कुशल थे। यहाँ मिली विदेशी सामग्रियों से पता चलता है कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ व्यापार भी करती थी। राखालदास बंदोपाध्याय की खोज ने न केवल भारत के इतिहास को समृद्ध किया बल्कि ये भी साबित किया कि प्राचीन भारत शहरीकरण और तकनीक में विश्व के अग्रणी क्षेत्रों में से एक था। उनकी इस उपलब्धि ने पुरातत्वविदों को अन्य स्थलों जैसे हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल की खोज के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त राखालदास बंदोपाध्याय ने पूना में पेशवाओं के राजप्रासाद का उत्खनन कर पुरातत्व और इतिहास की भग्न श्रृंखला को भी जोड़ने का प्रयत्न किया। राखालदास बैनर्जी केवल एक पुरातत्वविद ही नहीं बल्कि एक कुशल साहित्यकार भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पाषाणेर कथा, धर्मपाल, करुणा, मयूख, शशांक, प्राचीन मुद्रा, द ओरिजिन ऑफ बंगाली स्क्रिप्ट, असीम आदि। उनकी कृति द पाल्स ऑफ बंगाल, बंगाल के पाल वंश पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1924 में उनका स्थानांतरण पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्वी मंडल कोलकाता में हुआ जहां उन्होंने लगभग 2 वर्ष कार्य किया। यहां के अपने कार्यकाल में उन्होंने पहाड़पुर के प्राचीन मंदिर का उल्लेखनीय उत्खनन करवाया। सन 1926 में सरकारी सेवा से उन्हें अवकाश ग्रहण करना पड़ा। इसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राध्यापक के तौर पर जुड़े और अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वो लेखन और शोध कार्य में लगातार जुटे रहे। दुर्भाग्यवश 23 मई सन 1930 को मात्र 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया लेकिन उनकी खोज और लेखन आज भी जीवित हैं जो हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ते हैं। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: न जी भर के देखा न कुछ बात।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: पन्नों से
1: इतिहास के पन्नों से।
0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी लेकर आपके साथ हाजिर हूं। फिर से एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में 23 और 24 जून को ये युद्ध लड़ा जा रहा था। नर्मदा और गौर नदी के मध्य की नरई घाटी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थानों पर इस प्रकार खड़ी कर दी कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी और घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष बाण, तीर तलवारों और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज गया। युद्ध समाप्त होने को था। गोंड सेनापति पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। दोनों ही सेनाओं में अनेक सैनिक हताहत भी हुए। रानी दुर्गावती की हाथी सेना का संचालन फौजदार अर्जुन सिंह बखीला कर रहे थे। उनका नाम अर्जुन सिंह बैस या अर्जुन सिंह बघेल भी मिलता है। उस समय सेना में हाथियों का बड़ा महत्व था। फौजदार अर्जुन सिंह बखीला संपूर्ण हाथी सेना का संचालन करते रहे और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन शाम होते होते इस युद्ध में फौजदार अर्जुन सिंह बखीला वीर गति को प्राप्त हो गए। ये गोंड सेना के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। लेकिन इतनी बड़ी क्षति होने के बाद भी आखिर सूरज ढलने से पहले रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की तरफ धकेल दिया। आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची मुगल सेना के साथ घाटी से जान बचाकर वापस भागने लगे और इस प्रकार गोंड रानी दुर्गावती की विजय हुई। पूजा जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की ओर से आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, गोंड रानी दुर्गावती की यहाँ पर विजय हुई तो इस विजय से तो गढ़ा की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई होगी।
2: जी हाँ, ये खुशी की बात तो थी ही, रानी दुर्गावती की विजय हुई थी
0: जी
2: और गढ़ा राज्य की विजय हुई थी। यह विजय भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखती है
0: जी।
2: निश्चित ही गढ़ा की सेना में खुशी की लहर तो दौड़ी गई होगी
0: जी,
2: किंतु नेतृत्व कर रही रानी दुर्गावती और उनके सेनापतियों ने संयम नहीं खोया। रात को गढ़ा की सेना के खेमे में आज के युद्ध के बारे में समीक्षा की गई
0: जी।
2: और अगले दिन की योजना भी बनाई जाने लगी
0: जी।
2: इधर रात होने से पहले ही मुगल सेनापति आसफ खां की विशाल मुगल सेना नरई के निकट पहुंच चुकी थी और सेना ने पास में ही अपना शिविर गाड़ लिया था। इसलिए अगले दिन सेनापति आसफ खां की विशाल सेना से सामना होना निश्चित था।
0: तो मतलब ये बात रानी के पास पहुंच चुकी थी कि आसफ खां भी वहां अपनी सेना लेकर आ रहा है।
2: बिल्कुल। तो अब जो योजना बनाई जानी थी वो उसी हिसाब से बनाई जानी थी कि अगले दिन आसफ खां की विशाल सेना के साथ में युद्ध करना होगा। तो योजना बनाते समय बीच में एक सुझाव आया
0: जी।
2: कि क्यों ना मुगल सेना के शिविर पर रात को ही धावा बोल दिया जाए
0: जी।
2: थकी हुई सेना पर रात के अंधेरे में चारों ओर से धावा बोलकर आसान जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन गढ़ा की सेना इससे सहमत नहीं हुई। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध भी था, इसलिए एक मत से इसे नकार दिया गया।
0: वाह पूजा जी, आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी हमें बताया था कि हमेशा से हम युद्ध कला कहते आ रहे हैं, कोई युद्ध सिर्फ एक कोई शब्द होता ही नहीं। आपने बताया था इतिहास में हम इसे युद्ध कला के नाम से जानते हैं और कला हमेशा नियमों से बंधी हुई होती है, तो इसी वजह से शायद ये भी बात यहाँ पर हुई। और देखिए कितनी अच्छी बात है श्रोताओं कि हम अपने दुश्मन पर भी पीठ पीछे हमला नहीं करते। रात के वक्त थके हुए सैनिकों पर हमला करना एक अच्छा मौका हो सकता था रानी के लिए, एक बहुत अच्छा अवसर था रानी दुर्गावती के लिए, क्योंकि उनके पास सेना कम थी और आसफ खां की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने युद्ध के मैदान में ही जंग करना उचित समझा। तो पूजा जी, अगले दिन क्या हुआ, किस तरह युद्ध आरंभ हुआ और क्या क्या हुआ?
2: सुबह हुई और नरई की घाटी में विशाल मुगल सेना प्रवेश कर गई
0: जी।
2: दूसरी ओर गढ़ा की सेना भी दलबल के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। योजना के अनुसार आज के युद्ध का नेतृत्व गढ़ा राज्य के उत्तराधिकारी राजा वीर नारायण को करना था। जैसी कि हमने पहले भी बात की थी कि वह इस समय सिर्फ 16-17 वर्ष के रहे होंगे। गढ़ा के सैनिक भी पूरी तैयारी से थे। मैंने एक लोकगीत में सुना था कि जब गोंड सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते थे तो वे एक खास फूल का रस अपने कपड़ों पर छिड़कते थे।
0: अच्छा।
2: इस फूल का रस भगवा रंग का हुआ करता था और भगवा छींटे सभी सैनिकों में उत्साह का संचार करते थे।
0: वाह, क्या बात है।
2: तो युद्ध आरंभ हुआ। गढ़ा की ओर से राजा वीर नारायण ने सेना की कमान संभाली। उनकी ओर से शम्स खां मियाना और मुबारक बिलूच भी बहादुरी से युद्ध का संचालन कर रहे थे।
0: जी, ये वही अफगानी लड़ाके थे जो रानी से परास्त होकर उनकी सेना में शामिल हुए थे।
2: बिल्कुल, ये वही थे।
0: जी,
2: दूसरी ओर से मुगल सेनापति आसफ खां की सेना भी पूरे दमखम के साथ लड़ी। युद्ध में धनुष बाण, तीर तलवार, बर्छे भाले की टनकार लगातार गूंज रही थी। दोनों सेनाओं के सैनिक हताहत भी हो रहे थे। समय के साथ युद्ध की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। घोड़े पर सवार राजा वीर नारायण भी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। तभी उन्होंने मुगल सेना को घाटी से पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त कर ली, किंतु कुछ समय बाद मुगल सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया और वीर नारायण ने फिर उन्हें परास्त कर दिया और पीछे धकेल दिया। यह क्रम 3 बार चला। तीसरी बार भी राजा वीर नारायण ने मुगल सेना को परास्त किया और उन्हें नरई की घाटी से पीछे भागने पर मजबूर कर दिया।
0: वाह, तो इसका मतलब जो वीर नारायण थे, कुंवर वीर नारायण, राजा वीर नारायण, वो सिर्फ 16-17 साल के थे और उस उम्र में इतना शौर्य, इतना पराक्रम, तो मतलब शुरू से वो भी युद्ध कला में पारंगत किए गए थे।
2: जरूर, युद्ध कला में, शस्त्रों अस्त्रों में उन्हें पारंगत किया ही गया होगा।
0: जी,
2: उसका विद्या अध्ययन उन्होंने किया ही होगा। अब युद्ध आगे बढ़ा।
0: जी,
2: और चौथी बार मुगल सेना फिर से जोर लगाते हुए अधिक संख्या में दोबारा नरई में प्रवेश कर गई।
0: जी,
2: लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आसफ खां के साथ तोपखाना भी आया था।
0: जी,
2: और अब तक तोपखाना भी पूरा सजा लिया गया था। तोपें आग उगलने के लिए तैयार हो गई थी और आग उगलने लगी थी। दोपहर का समय हो रहा था। युद्ध अपने जोरों पर था। अचानक से राजा वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गए। जैसे ही रानी को यह पता चला, उन्होंने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली। उनके विश्वस्त सेनापतियों ने वीर नारायण को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकालने की जिम्मेदारी उनके महावत पर सौंपी।
0: जी,
2: गढ़ा की सेना की कुछ टुकड़ियां वीर नारायण को घेर कर इस प्रकार युद्ध लड़ती रहीं कि शत्रु सेना को पता भी नहीं चला और राजा वीर नारायण को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया।
0: जी,
2: किसी भी युद्ध में राजा का बचना अनिवार्य है।
0: जी,
2: यदि राजा ही मर जाए तो फिर युद्ध तो समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर की सेना जीत जाती है।
0: लेकिन पूजा जी, जब राजा वीर नारायण को सुरक्षित नरई से निकाल लिया गया तो फिर तब सेना का संचालन ऐसी स्थिति में किसने किया?
2: राजा वीर नारायण के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली।
0: जी,
2: उनके सेनापति तो युद्ध लड़ ही रहे थे। रानी दुर्गावती अपने प्रशिक्षित हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन करने लगी।
0: जी,
2: उनके हाथी का नाम सरमन था और सरमन के महावत का नाम आधार सिंह बखीला था।
0: अच्छा।
2: जिन्हें बघेला भी कहा जाता है।
0: जी,
2: युद्ध जोरों पर था। खूब जोर शोर से लड़ाई हो रही थी। भीषण युद्ध चल रहा था। रानी दुर्गावती पूरे पराक्रम से लड़ रही थी। शाम होने को थी और एक लोकगीत है। लोकगीत में इस समय का वर्णन हमको मिलता है।
0: जी, बिल्कुल।
2: तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाती हूँ कि काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, रक्त लोहू के नदिया हो तुरते दईस है रे बहाए। यानी कि रानी जो है वो काली के रूप में,
0: जी,
2: दुर्गा के रूप में दूसरे शत्रु सेना पर झपट रही हैं और रक्त की नदियां बह रही हैं।
0: जी,
2: अड़े रहो सब मग में हो या सबे ला सिखाए, जीत के डंका बजाए के माता मन मुस्काए। ऐसी तरह जीत रही हैं शत्रु सेना पर, ऐसी भारी पड़ रही हैं कि वो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और सबसे कह रही हैं कि डटे रहो, जीत हमारी होगी।
0: बिल्कुल। रणमा जूझे धरे तलवार, रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए। ये भी एक सैला लोकगीत हमें पूजा जी ने ही बताया था। तो पूजा जी, फिर आगे युद्ध किस तरह से आगे बढ़ा?
2: दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध हो रहा था। और युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया कि अब निर्णय होने को ही था
0: जी।
2: कि अचानक हाथी सरमन पर बैठी रानी दुर्गावती को युद्ध के दौरान एक तीर दाई कनपट्टी पर जा लगा।
0: हो।
2: रानी ने उस तीर को अपने हाथों से निकालकर फेंक दिया। इस बीच शत्रु सेना ने अपना शिकंजा और जोर से कस दिया, उन पर नुकीले और जहर बुझे तीरों की बौछार कर दी
0: जी।
2: इससे पहले कि रानी संभल पाती, एक दूसरा तीर रानी दुर्गावती की गर्दन में जा धसा
0: जी।
2: और एक और तीर उनके सीने को बेधते हुए निकल गया। इतने तीर एक साथ लगने से रानी मूर्छित होने लगी, किंतु इस अवस्था में भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उनका बचना अब असंभव है, किंतु वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि यदि वह जीवित अवस्था में भी मुगल सेना द्वारा बंदी बना ली गई तो उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा
0: जी।
2: जैसा कि उस समय होता भी था। यह तो फिर युद्ध क्षेत्र में लड़ती हुई रानी थी, इनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी
0: जी।
2: यहां रानी के साथ होने वाला दुर्व्यवहार सिर्फ उनका ही अपमान नहीं था, बल्कि गढ़ा राज्य की प्रजा का अपमान था। शत्रु सेना द्वारा अपनी रानी के साथ घृणित व्यवहार करते प्रजा से देखा नहीं जाता, रानी अपने गढ़ा और अपनी प्रजा का अपमान होते हुए नहीं देख सकती थी।
0: निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी रानी के समक्ष, वो मूर्छित होने को थी, पूरी तरह से मूर्छित नहीं हुई थी और जान का खतरा उन पर मंडरा रहा था, वो ये बात जानती थी। उसके बाद भी उनका जीवट इतना बड़ा था, उनकी जिजीविषा इतनी बड़ी थी कि वो जीते जी तो अपने आप को दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपना चाहती थी ताकि गढ़ा के लोगों का अपमान न हो। वाह क्या बात है, धन्य है रानी दुर्गावती। तो पूजा जी, जैसा कि आपने बताया उस समय हारे हुए लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, खास तौर पे जो मुगल थे उनका इस तरह का कुछ जो भी बर्बर तरीके थे, क्या उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: जैसा हम जानते हैं, जब मुगल सेनाएं जीतती थीं तो वह उन महिलाओं के साथ भी घिनौना कृत्य करती थी जो युद्ध में शामिल भी नहीं होती थी
0: जी।
2: जीत के बाद मुगल सेनाएं गाँव और कस्बों में घुस जाती थी और खेतों और खलियानों को नष्ट कर देती थी। घोड़े हाथी सैनिकों के पैरों तले हरी भरी फसलें रौंद दी जाती थी, उनमें आग लगा दी जाती थी। जिसके हाथ जो लगता था वह निर्दोष लोगों से लूट लेता था। मंदिरों मठों पर हमला बोलकर उन्हें ध्वस्त किया जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, जो विरोध करता था उसके साथ बड़ा ही घृणित व्यवहार किया जाता था, जबरदस्ती धर्मांतरण होते थे। बड़ा ही भयावह और घृणित दृश्य होता होगा। मंदिरों महलों घरों खेतों खलिहानों में रखे धन संपदा अनाज की लूटपाट तो होती ही थी। स्त्रियों बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसका तो वर्णन करना भी असंभव है। उनका जितना अपमान शारीरिक मानसिक तौर पर किया जा सकता था वह सभी किया जाता था। इसलिए ही तो जौहर प्रथा आरम्भ हुई। स्त्रियां घिनौने शत्रुओं के हाथ लगे इससे पहले वह आग में जलकर या जल समाधि लेकर या किसी भी प्रकार से स्वयं को खत्म कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। और यहाँ नरई में तो मामला ही गंभीर था। यह तो रानी दुर्गावती थी, वह भी युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक गढ़ा का नेतृत्व करते हुए युद्ध लड़ती हुई रानी
0: जी।
2: उसे तो वह कतई नहीं छोड़ते
0: जी।
2: यदि वह जीवित बंदी बना ली जाती तो उनके साथ होने वाले घृणित अपराध के बारे में तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था
0: जी।
2: यदि युद्ध में इस प्रकार किसी का मृत शरीर भी प्राप्त होता था तो उसके साथ शिरोच्छेद या अंगोच्छेद आदि घृणित कार्य किए जाते थे।
0: कितने विभत्स दृश्य रहे होते होंगे जो हमें इतिहास के पन्नों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसे देख कर पढ़ कर जो अभी हम महसूस कर रहे हैं वही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो उन दृश्यों की तो शायद हम वाकई कल्पना भी नहीं कर सकते। पूजा जी, फिर जब रानी को तीर गर्दन में लगा, एक तीर उनके सीने के पार हो गया, वो मूर्छित होने लगी, तो तब क्या हुआ युद्ध का, क्या हुआ सेना का?
2: जब रानी को एक तीर गर्दन में और दूसरा तीर सीने पर लगा तो रानी लहूलुहान हो गई और मूर्छित होने लगी। तब रानी दुर्गावती ने अपने महावत आधार सिंह बघेला को कहा कि वह अपनी कटार निकाले और उनके जीवन का अंत कर दे
0: जी।
2: किंतु महावत आधार सिंह बघेला तो उन्हें अपनी माँ जैसा मानते थे
0: जी।
2: वह अपनी माँ को कैसे मार सकते थे? उन्होंने रानी दुर्गावती के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वह ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकते, वह अपनी माँ को अपनी कटार से नहीं मार सकते। उन्होंने हाथ जोड़कर रानी से निवेदन किया कि उन्हें किसी भी प्रकार से बचाकर वह युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। रानी दुर्गावती सिर्फ उन्हें आज्ञा दें, वह कैसे भी अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा ले जाएंगे, शत्रुओं के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: जी।
2: किंतु रानी जानती थी शत्रु सेना के अनेक सेनापति उन्हें चारों ओर से बुरी तरह से घेर चुके हैं।
0: जी।
2: सभी उन पर निशाना साधे हुए हैं। महावत आधार सिंह बघेला कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब रानी दुर्गावती को बचाना असंभव था।
0: और फिर रानी दुर्गावती तो रणक्षेत्र को छोड़कर, अपनी सेना को छोड़कर वैसे भी वहां से नहीं जाती।
2: जी हाँ।
0: देखिए श्रोताओं, इसलिए उनके बारे में आज भी हमें लोकगीतों से जो जानकारी प्राप्त होती है वो कुछ इस तरह की है। रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, नाम आसफ दुश्मन के, गई से धरी धरी हार, सज धज के आवे तिसरैया, फौजी धरे हथियार, ताक नसाना महारानी के हो, नहीं काई उपचार, जख्मी चोट लगे से सतन मा, बही रक्तन के धार, जोर फिरंगी माथा मा, मोहे नहीं जावे आंच, नारी के तन आए, बचाहूं यही हवे मोला साच। तो फिर पूजा जी, क्या रानी के जो महावत थे उन्होंने बात उनकी मानी, या फिर उन्होंने कोई और तरीका निकाला?
2: रानी दुर्गावती भयानक दर्द से कराह रही थी।
0: जी।
2: उन्हें अनेक तीर लगे थे, वह लहू लुहान थी। शत्रु सेना इससे पहले कि कुछ समझ पाए उन्हें निर्णय लेना ही था। समय ही तो नहीं था, हर क्षण भारी था।
0: जी।
2: विपदा सामने खड़ी थी, शत्रु सेना आगे बढ़ रही थी, रानी लहू लुहान थी।
0: जी।
2: गणा राज्य की इज्जत दांव पर लगी थी, पल पल भारी था। बिना देर किए तभी रानी ने अपने ही कमर से बंधी कटार निकाली और अपने ही सीने में घोंप ली।
0: जी।
2: क्षण भर में रानी दुर्गावती के प्राण निकल गए। उस वीरांगना के बलिदान को देखकर जैसे सारी सृष्टि थम गई, तलवारों की गूंज रुक गई, सन्नाटा पसर गया। उस वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के लिए सहर्ष ही अपने प्राण नौछावर कर दिए।
0: और तभी तो देखिए आज इतने सालों बाद, इतनी सदियों बाद, हम आज भी उनका नाम कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से लेते हैं। शौर्य की उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। रानी दुर्गा जो कहा है, आज भी वो रानी दुर्गा के समान जिन्हें गढ़ा के लोग मानते थे, आज वो पूरी दुनिया में वीरांगना रानी दुर्गावती कहलाती हैं। पूजा जी, सुना है कि इस दृश्य को पेंटिंग के रूप में भी उकेरा गया है, क्या ये बात सही है?
2: हाँ, जैसा कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि मुगल साहित्यकारों ने, लेखकों ने, चित्रकारों ने रानी दुर्गावती को हमेशा बहुत साहसी, निर्भीक और परिस्थितियों के आगे न झुकने वाला बताया है।
0: जी।
2: तो मुगल शासक अकबर के जो दरबारी लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ भी लिखा है।
0: जी।
2: ये अकबरनामा 1590 से 1595 के बीच कभी लिखा गया, और इसमें बहुत सारा वर्णन तो है ही, साथ में अंदर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं। और वर्तमान में ये जो ओरिजिनल अकबरनामा है, ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है।
0: अच्छा।
2: और मुझे 2016 में ये देखने का मौका भी मिला।
0: जी।
2: तब मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि अकबरनामा में रानी दुर्गावती के बारे में क्या कहा गया है या उन्हें दर्शाया गया है। तो अकबरनामा में पूरे 2 पेज को मिलाकर एक पेंटिंग बनाई गई है, और इसमें नरई के युद्ध का वह पल चित्रित किया गया है जिसमें रानी दुर्गावती को तीर लग चुके हैं।
0: अच्छा।
2: तो ये पेंटिंग यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं।
0: जी।
2: रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर बैठी हुई हैं।
0: जी।
2: सरमन को छींट वाले सफेद वस्त्रों से ढका गया है, जैसे हौद जो होती है।
0: जी।
2: ऐसे है, उस पर पालकी है, पालकी में रानी दुर्गावती बैठी हैं।
0: जी।
2: उन्होंने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और अंगरखा जैसा है।
0: जी।
2: जिसे उन्होंने कमर पर बांधा हुआ है, और उनके कमर में कटार है, उन्होंने सिर पर शिरस्त्राण भी पहना हुआ है, उनके हाथ में तलवार है, उनके आसपास धनुष बाण है।
0: जी।
2: इस दृश्य में यह भी दिखाई देता है कि रानी दुर्गावती की गर्दन में एक तीर लगा हुआ है और दूसरा तीर उनके सीने में धंसा हुआ है।
0: जी।
2: उनका चेहरा कुछ पीछे की तरफ लटका हुआ है और सामने हमको दिख रहा है कि जो उनका हाथी है सरमन, उसका जो महावत है आधार सिंह बकीला, जिसने उनसे यह निवेदन किया था कि हम युद्ध क्षेत्र से आपको सुरक्षित बाहर ले जा सकते हैं इस अवस्था में, वो आधार सिंह तलवार लेकर हाथी के ऊपर बैठा हुआ भी रानी को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है।
0: जी।
2: इसके साथ ही आसपास के दृश्य में दिखाया गया है कि रानी दुर्गावती के सभी सेनापति ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और वो मुगल सेना को उनके निकट आने से रोक रहे हैं।
0: जी।
2: वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना अपने तीर भाले लेकर पूरी तरीके से एकमात्र रानी के ऊपर निशाना साधे हुए है। इस पेंटिंग में एक और देखने वाली बात है, वो ये है कि एक सैनिक तो दो नाली बंदूक लिए हुए भी है।
0: मुगल सेना के सैनिक?
2: जी हाँ, मुगल सेना का सैनिक एक बड़ी सी दो नाली बंदूक भी रानी की ओर ताने हुए है।
0: अच्छा।
2: तो तोपखाना भी उनके पास था, दो नाली बंदूकें भी थी और तीर बर्छे हाथी घोड़े ये सब तो थे ही। तो ये ठीक उस क्षण का दृश्य है जब रानी दुर्गावती को दोनों तीर लग चुके हैं और उन्होंने युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने को मना कर दिया है और उनके सभी लोग उनको बचाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
0: इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी में आज हमने पूजा जी से जो बात करी, हम इतने दिनों से रानी दुर्गावती की दास्तान सुन रहे थे और आज के अंक को, आज के एपिसोड को सुनने के बाद हम ये जान पाए कि किस तरह जो आज शौर्य गाथा गाई जाती है वो किस तरह रानी दुर्गावती ने खुद अपने ही हाथों अपनी कटार से लिखी थी, अपने पराक्रम से लिखी थी। उन्होंने कतई हार नहीं मानी, ना अपने आप को दुश्मनों के सुपुर्द किया, ना ही वो रणक्षेत्र छोड़कर भागी। वो एक लगभग निश्चित पराजय जब उनकी होने वाली थी तब भी उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी, आखिर समय तक वो लड़ती रही और अंत तक उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। निश्चित रूप से ये गढ़ा के गोंड राज्य की विजय गाथा है, एक महान वीरांगना की विजय गाथा है। तो श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे इतिहास के पन्नों से, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों को समेटकर हमारे लिए ये जो जानकारियां लाई हैं वो हैं मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। फिर एक बार पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अनुपम जानकारियां आप हमें दे रही हैं, इतनी अनूठी जानकारियां हमें आप दे रही हैं। गढ़ा के गोंड राज्य की दास्तान आगे भी जारी रहेगी लेकिन वक्त है अब आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में थी पुरातत्वविद के रूप में, ध्वनि संयोजन और ध्वनि संपादन का कार्य संभाला अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जब मनुष्य संसार की चकाचौंध के पीछे भागते भागते थक जाता है, तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या यही जीवन का सत्य है? क्या धन वैभव, यश, दीर्घायु जैसी बातें ही मानव जीवन की उपलब्धि हैं? इन्हीं गहरे प्रश्नों से उद्वेलित हैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम। उनका मन संसार की क्षणभंगुरता को देखकर अत्यंत विचलित है। उन्हें प्रतीत होता है कि धन संपत्ति, भोग और आयु सब कुछ समय के प्रवाह में विलीन हो जाने वाले स्वप्न मात्र हैं। योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम का विचलन और उसके समाधान हेतु दिया गया उत्तर केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के अज्ञान को दूर करने वाला सूत्र है। श्री राम के मन में उठने वाले प्रश्न हर उस व्यक्ति के प्रश्न हैं जो जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना चाहता है। तो आइए शामिल होते हैं योग वासिष्ठ की उस दिव्य संवाद यात्रा में, जहां वैराग्य की अग्नि में तपकर सत्य का सोना खरा होता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप श्रोताओं को याद दिला दें कि वो क्या घटना थी, और उसके बाद फिर हम आज के विषय पर आ जाएंगे।
2: जी, जब राम जी गुरुकुल से आते हैं और तीर्थ यात्रा की याचना करते हैं अपने पिताजी से कि मुझे तीर्थ दर्शन करना है,
1: जी।
2: जो ज्ञान उन्होंने गुरुकुल में प्राप्त किया है, उस ज्ञान के साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की जिज्ञासा उनके मन में होती है। और तीर्थ दर्शन से जब लौट के आते हैं तो वो वैराग्य की स्थिति में हैं, और जब उनको भरी सभा में बुलाया जाता है तो उनके चित्त को जो देखते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, आपने तो विषय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे में आपके चित्त में इस तरह की व्यग्रता क्यों है? और विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके आंखों में जो चंचलता दिखाई दे रही है, ये आपके चित्त की व्यग्रता को दर्शा रही है, तो इसका कारण क्या है, इसको विस्तार से कहिए। और यही बात वाल्मीकि जी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से कह रहे हैं, उसमें ये पूरी कथा चल रही है। तो राम जी जब लौट के आते हैं, जैसे आज का संसार है हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही लोग व्यग्र दिखाई दिए, कहीं कोई किसी कर्म से संतुष्ट नहीं दिखा, तो ऐसे में उनको लगा कि जब कोई कर्म व्यक्ति को संतुष्टि नहीं दे सकता तो कर्म ही छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने को कर्म से विरत कर लिया।
1: तो संसार को देख कर बहुत विचलन उनके मन में है, और कुछ उनके मन में जो बातें हैं वो धन संपत्ति को लेकर भी हैं, जो वो मुनिश्री के सामने रखते हैं।
2: जी,
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि धन संपत्ति को वो कष्ट का कारक मान रहे हैं।
2: हाँ,
1: है ना, जबकि आज का जो समय है, सुख का आधार हम धन संपत्ति को मानते हैं, सफलता का आधार हम धन संपत्ति को मानते हैं, और आनंद का आधार भी धन संपत्ति को माना जाता है आज के संसार में, लेकिन ठीक इसके विपरीत बात कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि धन संपत्ति को हमें किस रूप में देखना चाहिए, एक जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो इसे कैसे देखता है?
2: विवेकवान व्यक्ति इसको व्यामोह की तरह देखता है। वो कहता है कि धन संपत्ति जो है, ये जैसे हम विषय को अर्जित करते जाएं और उस विषयों में कभी संतोष की प्राप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे ही धन संपत्ति में भी व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए आप देखिएगा कि धन की कोई सीमा नहीं है, जो व्यक्ति जितना पैसा या धन अर्जित करता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और कहा जाए तो दरिद्रता का संबंध धन की आकांक्षा से है। किस व्यक्ति को कितना धन की आवश्यकता है उसके अनुपात में उतना ही दरिद्र होगा।
1: बहुत ही सुंदर बात, क्योंकि बहुत धन संपत्ति होने के बाद भी आदमी दरिद्र हो सकता है, क्योंकि उसकी आकांक्षा भी धन के लिए है, वो अभाव महसूस कर रहा है।
2: होता ही है, आप देखिए कि जिसको जितने अधिक धन की आवश्यकता है, इसका मतलब उसकी गरीबी उतनी बड़ी है,
1: उतनी बड़ी है। जी जी जी,
2: है ना। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार का व्यामोह पैदा करता है। तो विवेकवान पुरुष इस रहस्य को जानता है, वो देखता है कि एक व्यक्ति जो छोटी सी इच्छा लेके आया इच्छाएं था, फिर वो इच्छा इतनी बड़ी होती चली गई कि इतना कुछ आने के बाद भी उसकी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं हुई। इसलिए आप देखेंगे कि धन के पीछे जो लोग भागते हैं वो पूरा जीवन असंतोष में बिताते हैं। और भारतीय चिंतन में, गांव और हमारे लोक कथाओं में भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष धन है।
1: संतोष को धन कहा गया।
2: लेकिन संतोष धन की प्राप्ति धन से नहीं होती।
1: हाँ, हाँ।
2: धन से हमेशा असंतोष की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रकार का व्यामोह हुआ कि नहीं हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: विवेकवान इसको जानता है कि जो धन है वो व्यक्ति को असंतुष्ट करेगा,
1: असंतुष्ट करेगा,
2: और असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा।
1: और वो संतुष्टि के लिए धन एकत्रित करता है।
2: एक कथा आती है कि धन का तीन प्रकार का भोग होता है। भारत के ऋषियों ने ऐसा चिंतन किया, कहा कि सबसे उत्तम भोग उसका ये है कि उसका दान हो, क्योंकि आपके पास अगर धन आया है आपकी आवश्यकता से अधिक, तो ऐसे में जो लोग धन के अभाव में अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं तो उनके लिए आप उसका दान करें, तो उस समय आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी शायद जितना आप उसका भोग करके आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, उतना आपके द्वारा अर्जित सामर्थ्य से अगर कोई दूसरा भोग करता है जिसको आप चाहते हैं कि आप दें, तो उस समय आपको खुशी होती है। देखिए, त्याग और दान में फर्क है। त्याग में व्यक्ति को कष्ट होता है, दान में प्रसन्नता होती है।
1: प्रसन्नता होती है।
2: तो दान में आप दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं और आपको लगता है कि देखिए परमात्मा ने कैसी कृपा आप पर की कि आप में इतना सामर्थ्य आया कि आप अपने को तो संतुष्ट कर ही पा रहे हैं लेकिन दूसरा भी आपसे संतुष्ट हो रहा है। इसको कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा जाए। तो मतलब ये हुआ कि दान सबसे उत्तम भोग है। उसके बाद मध्यम भोग कहा गया कि आप उस संपदा का अपने इच्छानुसार जो आपको उपयुक्त लगे, जो उचित लगे, जो सार्थक लगे, उसमें उसका उपभोग करें। और जो लोग परिग्रही होते हैं, क्योंकि धन के साथ परिग्रह भी आता है, संकलन की प्रवृत्ति भी आती है, तो कहते हैं ये परिग्रही लोग धन का नाश करते हैं, उनके लिए धन नष्ट हो जाता है। वो परिग्रह आप करते हैं और फिर कोई दूसरी पीढ़ी आती है जो उसे नष्ट करती है। तो ऐसा देखने को आपको या तत्त्व सर्वत्र दिखेगा। तो राम जी कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष है वो धन के व्यामोह में कभी नहीं आता, जानता है कि ये व्यामोह का कारण है, व्यक्ति को मोहित करेगा।
1: तो जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं वो धन संपत्ति को किस तरह से देखते हैं?
2: आपने सुंदर कहा। राम जी कहते हैं कि ये लोगों को भ्रम है कि वो सोचते हैं कि धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों का साधन हो सकती है और सब में उत्कृष्ट वस्तु है, क्योंकि धन के द्वारा किसी भी वस्तु का विनिमय हो सकता है। जो आपने भी कहा कि विकास में, आज के समय में सामाजिक आर्थिक विकास की बात की जाती है, तो धन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। तो वस्तु विनिमय में धन का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे जो मूढ़ लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर संसार में हमारे पास धन स्थिर रहा तो हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे उत्कृष्ट वस्तु धन है। ऐसी जो सोच रखता है उसको कहते हैं कि वो मूढ़ है। वास्तव में धन जो है वो व्यामोह में डालता है। और राम जी तो ये तक कहते हैं कि सारे अनर्थ का कारण अर्थ है।
1: अच्छा।
2: हाँ, ऐसी दृष्टि है।
1: जी,
2: और
1: जी।
2: अगर आप इस पर विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि जब आपके पास धन आता है तो धन के आने के साथ साथ आपके अंदर भय भी आता है, आपके अंदर सुरक्षा की प्रवृत्ति भी आती है, आप लोगों से झूठ भी बोलते हैं, आप हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं कि कोई कहीं आपसे धन न मांग ले, या इसी धन के लिए लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो आप मूलतः भाव को पकड़ने के बजाय सबके केंद्र में आपके धन आ जाता है, तो धन से तमाम सारे विकार आपके मन में भी जन्म लेते हैं और धनवान व्यक्ति हमेशा सशंकित और चौकन्ना रहता है कि कहीं उससे कोई कुछ मांग न ले।
1: तो क्या मनुष्य को मलिन बनाने का काम धन संपत्ति ही से होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मनुष्य के चित्त को जो धूमिल करता है, जो उसके चित्त पर धूल आता है, वो धन के कारण आता है। आप सामान्य तौर पर विचार करें कि जैसे आपके पास धन है और आपके जानने वाले लोगों को ये पता चल गया कि आप धनवान हैं, तो फिर ऐसे में जैसे ही लोग आपके पास आएंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं?
1: हाँ, वो भावनाओं का जुड़ाव नहीं रहेगा।
2: नहीं रहेगा। आपको लगता है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, भले वो अच्छे भाव में हो, लेकिन आपको लगता है ये किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है या मुझसे कुछ चाहता है। आप अक्सर ये देखेंगे व्यवहार में, जीवन व्यवहार में देखिए तो मनुष्य कहता भी है और कहते भी हम लोग हैं कि आपको लोग नहीं चाहते तब जब आपके पास संपन्नता आती है तब आपसे चाहते हैं, और जब आपके पास संपन्नता नहीं होती है, या कहा भी जाता है कि आप देखिए कि जब आपके पास धन नहीं होता है तब सही लोगों की पहचान होती है कि कोई आपको चाहता है या फिर आपसे चाहता है। तो मित्रों की परख, गोस्वामी जी ने लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परीखौ जारी। तो जब आपत्ति का समय हो, अनुकूल समय में तो सब आपके प्रेमी हैं और सब लगेंगे कि जैसे आपके लिए ही जी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं लक्ष्मी से आपका वियोग हो गया, धन संपत्ति का अभाव हो गया, तो उस समय आप देखिए कि आपके पास कितने लोग हैं। शायद आदमी अपने लोगों से भी दूर हो जाता है और अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये चित्त में जो मलिनता का कारण है, जैसे कहते हैं मुट्ठी भर धूल मड़ियों को मलिन कर देती है, ऐसे ही संपत्ति जो है मनुष्य के चित्त को मलिन कर देती है। लेकिन इसके लिए बहुत विवेक की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है।
1: लेकिन धन संपत्ति को लेकर जो आज वर्तमान समय में जो आम आदमी की सोच है वो इसके ठीक उलट है। है ना, वो समझते हैं कि धन संपत्ति से ही सुख की प्राप्ति होती है। योग वासिष्ठ में क्या कहा गया है?
2: योग वासिष्ठ में कहा गया है कि ये धन संपत्ति उसी प्रकार है जैसे बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर, कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी कलंकित कर देता है ये। मतलब आप इसके सामने कभी भी चाहें कि अपने चित्त की शुचिता बचा के रखें तो ये धन संपत्ति होने की वजह से ये रह नहीं सकता। और इस पर मैं आपको कथानक कहूं, ऐसा कहा जाता है कि एक महात्मा थे, तो उनको किसी राजा ने कुछ स्वर्ण मोहरों का दान कर दिया। तो जब वो चलने लगे तो इसके पहले बड़े निश्चिंत रहते थे वो, लेकिन उस समय उनका चित्त बड़ा व्यथित था, कहीं कोई मुझे लूट न ले, कहीं कोई बदमाश ना आ जाए। अब ये सारे ख्याल क्यों आए? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी जरूरत लोगों को है, जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। तो फिर आपने क्या किया, आपने अपनी स्वाभाविक दशा खो दी। तो शिष्य को लगा कि महाराज तो ऐसे थे नहीं, आज क्या हो गया इनको? तो उसको लगता है कि जैसे राजा के द्वारा दी गई जो मुहर है उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो जब थोड़ा शाम होने लगा, सूर्यास्त होने का समय आया, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि थोड़ा और तेज चलो क्योंकि जल्दी पहुंचना है गांव में। तो शिष्य समझ गया महाराज की व्यग्रता का कारण, जो चित्त उनका जो विचलित था। तो कहा महाराज मैंने वो कारण ही मिटा दिया है जिस कारण की वजह से आपके चित्त में ये भय समाया हुआ है। मैंने उस स्वर्ण मोहरों को बाहर फेंक दिया। वो थोड़ा सा झुंझलाए लेकिन एक पल के लिए फिर उन्हें होश आया, कहा ठीक ही हुआ, आखिर मेरे चित्त में विचलन का कारण ये धनी था। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी ये बात कही जाती है कि स्वामी जी को जब एक कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ ने एक बहुत कीमती वस्त्र दिया जिस पर रत्न जड़ित थे, और कहा कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, चूंकि आपसे बड़ा कोई संत नहीं है, इसे आप धारण करें। तो जब वो वस्त्र धारण करके माँ काली के मंदिर में गए तो उन्हें माँ के समक्ष लेटने में वस्त्र का ख्याल आता था, माँ का ख्याल धूमिल हो गया। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरे और माँ के बीच बाधा बन रहा है। तो उन्होंने उस
1: वस्त्र को संभालना है
2: जी, तो उन्होंने उस रत्न जड़ित वस्त्र को निकाल दिया। तो ये है विवेकमान की दृष्टि। और आप देखें तो हम लोग भी इसी दृष्टि से कहीं कहीं ग्रसित हैं। और एक बार हम विचार करके देखें, आत्मन्वेषण करें, तो हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं संसार की अपेक्षाओं को पूरा करने की कामना लेकर, तो आप देखिए हमारी कितनी रुचि भगवान में होती है। सच यह है कि बार बार ध्यान हमारा अपनी अपेक्षाओं पर रहता है, कामनाओं पर रहता है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये सारी कामनाओं की जड़ ये संपत्ति ही तो है। अगर आपके पास संपत्ति न हो तो आप घर से बाजार नहीं जाएंगे, और संपत्ति आते ही आपको बार बार बाजार का चिंतन आएगा कि कहाँ चले, क्या खरीदें। तो ये वो चित्त को विचलित कर देता है, मलिन कर देता है।
1: चाहे संपत्ति की बात करें, चाहे आकांक्षाओं की बात करें, चाहनाओं की बात करें, ये सब ईश्वर से दूर करता है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो खुद का एक अगर हम ईमानदार विश्लेषण करना चाहें कि हम धन को लेकर किस तरह की दृष्टि रखते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभ पुरुष की भी चर्चा हुई है, तो मैं चाहती हूँ वो आप जरूर बताएं।
2: हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा योग वासिष्ठ में राम जी ने कहा है। राम जी ने कहा है कि जो मैंने देखा इस जगत को, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, कि जो मैंने जगत को देखा,

0: के पात्र होते तो ऐसी दृष्टि आपको देखने को मिलेगी सामान्य तौर पर। तो कहते हैं ऐसा आदमी हमने नहीं देखा कि जिसके पास संपत्ति हो और निंदा का पात्र न हो।
1: जी, जी, जी।
0: फिर कहते हैं कि शूरवीर हो और अपने मुंह से बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा न करता हो।
1: अच्छा,
0: आप देखेंगे कि अगर थोड़ी बहुत आप में शक्ति आई तो आदमी यथार्थ नहीं बताता, उसमें दो चार जोड़ के बताता है
1: ताकि, जी, जी, जी।
0: ताकि और वो प्रशंसनीय हो सके। हा, हा, हा। तो कहते हैं कि ऐसा भी आदमी दुर्लभ है। एक ऐसा आदमी दुर्लभ है कि धन संपत्ति हो और निंदा का पात्र
1: ना हो,
0: और शूरवीर हो और अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर न बताए, ऐसा आदमी भी दुर्लभ है। कहते हैं और एक आदमी ऐसा भी जो स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो। जैसे ही आपके अंदर स्वामित्व का भाव आता है आपके दृष्टि में विषमता आ जाती
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: और आप विषम दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ।
1: हाँ।
0: और ये तो कहते हैं ये लोग दुर्लभ हैं। तीन तरह के लोग दुर्लभ हैं जिनमें स्वामित्व का भाव है और उनके पास विषम दृष्टि ना हो, और जिनके पास संपत्ति हो निंदा के पात्र ना हो, और आदमी शूरवीर हो और अपनी वीरता को बढ़ा चढ़ा के न बताए। तो ये दुर्लभ लोग हैं। इस पैरामीटर पर अगर आज के समय में आप लोगों को देखें तो मैक्सिमम लोग आपको इसी तरह के मिलेंगे जो ऐसा करते हैं, यानी ये दुर्लभता आज भी है।
1: आज भी है, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इस जीवन में भय और भ्रांति का क्या कारण है?
0: भय और भ्रांति का कारण जो अभी हम लोगों ने पहले भी बात की, धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी विषय को बढ़ाने वाला है। ऐसा राम जी ने साफ कह दिया कि मैंने जो जगत देखा उसमें धन संपत्ति ने ही व्यक्ति को भय और भ्रांति में डाल रखा है। भ्रांति का मतलब ये हुआ कि जैसे धन से हम संसार में सुख प्राप्त करेंगे जबकि धन से असंतोष प्राप्त होता है और असंतोष दुख ही देता है।
1: जी, जी, जी।
0: संतोष धन के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और धन कभी संतुष्ट करता नहीं है। तो एक प्रकार की भ्रांति ने जन्म दिया इसको। और भय ये है कि जब आपके पास कुछ खोने को होता है तभी आप भयभीत होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो धन जब आपके पास आता है वो आते ही सबसे पहले आपको भयभीत करता है कि कहीं आपसे ये छिन न जाए, क्योंकि आपके पास इकट्ठा हुआ है। इसके लिए कथा भी आती है, आप गांव में लोग सुनाते हैं कि एक बड़ा पहलवान था, वो था तो बहुत गरीब लेकिन बहुत निश्चिंत रहता था और उसको कोई हरा नहीं पाता था। तो एक दिन जो वहां के सामंत लोग थे वो पूछे कि इसकी इस ताकत की वजह क्या है। तो कहा साहब उसको चिंता नहीं है इसलिए ये ऐसे रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक दिन जाओ उसको 99 रुपए दो,
1: चिंतित करो
0: उसे। तो 99 जैसे ही आपके पास आएगा अब आप खर्च करने नहीं, एक को जोड़ने की सोचेंगे ताकि 100 हो जाए।
1: हाँ,
0: है ना। तो वो कहते हैं कि 99 के चक्कर में लोग फंसे हैं। तो यही है 99 का चक्कर कि जहां आप जोड़ने पर संग्रह पर लग जाए तो संपत्ति जो है ये आपको संग्रह करने की तरफ ले जाती है। तो हालांकि ये गलत नहीं है, संग्रही होना चाहिए, इसका कभी भी हमें सही और गलत के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टि की दृष्टि से देखना चाहिए कि वास्तव में जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वो हमारे सुख की वजह है, और अगर हमारे पास नहीं है तो जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो जब उनको भी आप देखेंगे तो ऐसे में देखेंगे चित्त आपका शांत हो जाएगा। देखिए चित्त की शांति का एक मूल कारण है वैराग्य। इसीलिए योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ या कभी भी योग की शुरुआत हमेशा वैराग्य से होती है। वैराग्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप संसार को छोड़ करके कहीं दूर भागें। वैराग्य का अर्थ यह है कि आपके चित्त को संसार जिन कारणों से मलिन करे, दूषित करे, उन कारणों को सही अर्थों में समझ करके अपने चित्त को दूषण से बचा लें, इसका नाम है वैराग्य। और इसी का अभ्यास करके आप अपने चित्त की चंचलता को रोक सकते हैं। एकाग्रता आप में विकसित हो सकती है, और जीवन में जब एकाग्रता आती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप अर्जित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस जो चित्त को अपने वश में कर सकते हैं। तो वैराग्य प्रकरण ये आता है। तो चित्त जो है ये संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाली है। ऐसा साफ साफ राम जी कह रहे हैं, राम जी को देखने में ऐसा आया। और ये विषाद रूपी विष को बढ़ाती है और व्यक्ति के जीवन में तमाम संकल्पों का विकल्प खड़ा करती है।
1: अच्छा।
0: आप देखिए संपत्ति के नाते हम बहुत सारे विकल्प खड़ा करते हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो ये विकल्पों में ले जाती है। इसलिए आप एक ऐसी यात्रा में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
1: योग वासिष्ठ में क्या बताया गया है कि अनर्थकारी जो कर्म है उनका जन्मदाता कौन है?
0: अनर्थकारी कर्मों का जन्मदाता अर्थ है, ये योग वासिष्ठ में राम जी कहते हैं कि जो ये अर्थ है यही व्यक्ति को अनर्थकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में भी देखें तो तमाम सारे जो जांच होने के बाद कुछ लोगों के पास जो संपत्ति मिलती है उसमें आप देखिए तो वो जो अनर्थकारी कर्म उन्होंने किया है किसके लिए किया है, अर्थ के लिए किया है, उससे अर्थ ही प्राप्त हुआ है और उस अर्थ ने उनका पूरा साम्राज्य व्यर्थ कर दिया। तो ये अनर्थकारी ही कर्म तो हुआ, अनर्थकारी कर्म करके अर्थ इकट्ठा हुआ और फिर इकट्ठा अर्थ ने अनर्थकारी कर्म का रूप ले लिया और आप समाज में किसी लायक नहीं बचे, है ना, कोई प्रतिष्ठा नहीं बची। तो इस तरीके से अगर देखें तो धन का ये महत्व जो लोग जानते हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं वो धन के इस प्रभाव से अपने को मुक्त कर पाते हैं या जो धन के प्रति वैराग्य का भाव उनके अंदर है वो सदा बना रहता है, तो इसलिए वो उसका अर्थकारी उपयोग करते हैं।
1: तो अर्थ से अनर्थ है और अनर्थ से सब व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ जी, अनर्थ से सब व्यर्थ है।
1: आयु के संबंध में भी योग वासिष्ठ में बात हुई है, क्या आयु मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण हो सकती है?
0: बिल्कुल, आयु ही मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण बनती है, क्योंकि महापुरुषों की आयु लाभ हानि सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। यानी जो महापुरुष लोग हैं उनकी आयु सुखदायिनी है, लेकिन जो लोग विवेकवान नहीं हैं उनके आयु में आप देखें तो वो सुख को पाना चाहते हैं, दुख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब सुख दुख के प्रति उनके अंदर समदृष्टि नहीं है। जबकि सच ये है कि सुख और दुख दोनों आपके आयु को खाते हैं। जिसको कहा जाता है ना रात दिन, ये दो काले और सफेद चूहे हैं जिसको काल भी कहा गया है, जो आपकी आयु को कुतर रहे हैं। तो अगर देखें तो सारे क्लेश का कारण जो है ये आयु है। अब ऐसे में क्लेश से बचने का उपाय क्या है, तो कहते हैं कि वो सुख दुख में चित्त को समान भाव से स्थिर रखा जाए, योग की सिद्धि की जाए, जो समत्वम योग उच्चते भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो उस समान बुद्धि वाली जब दृष्टि आपकी होगी, उस बुद्धि से जब आप युक्त होंगे जिसमें सुख दुख समान भाव से आप ग्रहण कर सकें, तो फिर आपके लिए आयु सुखकारी है और ऐसा महापुरुषों के साथ है। अन्यथा ऐसी दृष्टि अगर नहीं है, सुख दुख में विषम भाव है, तो ये जो दुख आयु है ये क्लेश का ही कारण है, ये दुख ही देगी, अहंकार की वृत्ति को बढ़ाएगी और अंततः व्यक्ति सुख दुख राग द्वेष में अपना जीवन व्यतीत कर देगा।
1: तो जीवन को लेकर महापुरुषों का जो भाव है वो इस तरह का होता है। संत कबीर दास ने भी अमनी भाव दशा का जिक्र किया है और योग वासिष्ठ में भी ये बात आती है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए आप इसकी व्याख्या करें।
0: देखिए अमनी मतलब कहते हैं ये कि मन से मनन करके आप अमनी दशा को प्राप्त हो जाएं।
1: मन से मनन
0: करके अमनी दशा, आप देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये अमनी दशा कबीर साहब भी कहते थे अमनी भाव। अमनी भाव का मतलब जहां मन अब क्रियाशील नहीं है, मन में अब वेग नहीं आ रहे हैं। जब अमनी की बात आई तो मुझे एक दोहा याद आ गया जिसमें कहते हैं कि लहरें ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत।
1: अच्छा,
0: अब देखिए लहरें अगर पानी को खोजने लगे और कपड़ा सूत को खोजने लगे, क्योंकि सूत से ही तो बना है,
1: उसी से बना है,
0: और जीव ब्रह्म को खोजने लगे, तो जीव ब्रह्म ही तो है, अज्ञानतावश जीव बना हुआ है।
1: जी जी।
0: तो ये एक प्रकार की क्या है, इसको कहते हैं ये दोनों जो है मूर्ख हैं, दोनों जो है ये कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसलिए भगवान की खोज तक भी नहीं होनी चाहिए। यानी मन ही भगवान खोजता है, अमनी दशा में भगवान की भी खोज नहीं होती। और ये मनन करके, ये चूंकि जिसके मनन किया है ये मनन में ही ये दोहा बोला गया है कि लहरें पानी से बनी है, सूत से कपड़ा बना है और ब्रह्म ही जीव अविद्या के कारण बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो ज्ञानी लोग हैं ये मन से इस बात का मनन करके अपनी को अमनी दशा में लाते हैं, यानी फिर वहां मन का प्रभाव नहीं होता, मन लहरों की तरह ऊपर नीचे नहीं आता, मन डोलता नहीं है।
1: जी, जी,
0: जिसको कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, है ना, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार फिर क्यों खोले। तो अमनी दशा मतलब हीरा की प्राप्ति, अब उसको फिर बार बार आपको खोलने और जांचने की जरूरत नहीं है। वो हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तो मान सरोवर की दशा है अमनी दशा।
1: जी जी जी। शशिकांत जी बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज की, मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें बहुत पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की धन संपत्ति के वास्तविक स्वरूप पर। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे, वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे, तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वाखले का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स के जमाने से पहले से मौजूद है और आज भी हमारा साथी बनकर इस धरती पर यानी लगभग 22 करोड़ सालों से इस धरती का हिस्सा है। यानी हम मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले से ये जीव धरती पर मौजूद है, हमारी संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी कहानियों का एक महत्वपूर्ण किरदार भी रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कछुए की। अब प्रश्न ये उठता है कि कछुए पर आज बात करने का क्या उद्देश्य है। आज है विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, और भी इस बारे में आपसे चर्चा होगी और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जो कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, वर्तमान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं। आपने भोपाल के वनस्पति जगत पर पीएचडी की है तथा पर्यावरण और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। सर, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: कार्यक्रम में सबसे पहला विचार या प्रश्न यही उठता है, ये कछुआ दिवस मनाने का इतिहास क्या है और आखिर ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है?
2: देखिए, कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई है। ये अमेरिका में कुछ संस्थाएं थीं जो कछुओं के संरक्षण पे 80 और 90 के दशक में काम कर रही थी।
0: अच्छा।
2: काम करते करते उनको यह एहसास हुआ, डाटा कलेक्शन करके उन्होंने पता लगाया कि कछुओं की जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक इस पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और विधिवत रूप से 23 मई को ये सन 2000 से मनाना शुरू हुआ।
0: अच्छा।
2: अब चूंकि शुरुआत इसकी अमेरिका में हुई थी, पहले अमेरिका में ही मनाया गया, फिर धीरे धीरे कछुओं की गिरती हुई अवस्था को, उनकी संख्या को, उनके महत्व को देखते हुए ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा और आज हम और आप भी उसी कछुआ दिवस को मनाने के लिए चर्चा करें।
0: तो फिर प्रश्न यही उठता है सर कि इसके संरक्षण की हमको आवश्यकता महसूस क्यों हुई?
2: देखिए, कछुआ जो है जलीय इको तंत्र का कीस्टोन स्पीसीज है।
0: अच्छा।
2: कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है कि यदि आपने उस स्पीसीज को निकाल दिया, हटा दिया वहां से
0: जी,
2: तो बाकी जो इकोसिस्टम में वो भी कलेप्स हो जाएगा।
0: अच्छा।
2: पहले जो किले बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनमें एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगाया जाता था जैसे की स्टोन स्पीसीज कहते थे, और यदि उसको हटा लिया जाए तो दीवार समेत छत भी भरभराकर नीचे गिर जाती थी। तो वो शब्द उपयोग किया जाता है ऐसी प्रजातियों के लिए जो कि किसी भी इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे जंगल में टाइगर होता है, या कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें बरगद का पेड़ होता है। तो ये इसी प्रकार से कछुआ, चाहे वो समुद्र का पानी हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, दोनों के लिए कीस्टोन स्पीसीज है, इसलिए इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए इस दिवस का मनाया जाना प्रारंभ किया गया।
0: तो सर, मतलब ये कीस्टोन स्पीशी जो है तो वो क्यों बनता है, आखिर कारण क्या है, वो ऐसे क्या काम है उसके, या उसकी क्या गतिविधियां ऐसी हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है इकोसिस्टम की कड़ी में?
2: देखिए, एक तो यदि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से सोचें
0: जी,
2: तो कछुआ सर्वभक्षी प्राणी है। माने वो वेजिटेरियन भी है, वो इंसेक्ट्स भी खाता है, वो सड़ी गली चीजें भी खाता है, वो जीवित चीजें भी खाता है। तो जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा काम कह सकते हैं आप, जो काम नगर पालिका सफाई का शहरी क्षेत्रों में करती है वो काम पानी के अंदर कछुआ करता है।
0: अच्छा।
2: और पानी की तमाम ऐसी गंदगी जो मांस के रूप में होती है,
0: अच्छा,
2: उनका भक्षण करके, और इवन जो दूसरे जंतु मल का विसर्जन करते हैं पानी में, उनका भक्षण भी कर लेता है। तो एक तो बहुत ही अच्छा बड़ा सफाई कर्मी
0: जी,
2: है
0: जी, जी।
2: दूसरा, इकोसिस्टम में जो अन्य जंतु हैं उनका बैलेंस बनाए रखता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो कोरल रीफ हैं उनकी रक्षा करने में कछुओं का बहुत बड़ा योगदान।
0: तो सर, अब हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कछुओं की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे इनका हम महत्व समझ सकते हैं?
2: विशेषताओं के साथ साथ ये भी स्मरण रखें कि हम किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कछुओं के बारे में, ताकि उनको जागरूकता हो, या कछुओं के संबंध में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जो उनसे सीधे डे टू डे एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनमें जागरूकता है। तो देखिए, कछुए का एक तो विशेषता ये होती है, समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हों या नदियों में पाए जाने वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलते हैं
0: जी।
2: उनको ज्ञान रहता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।
0: अच्छा।
2: एक तो महत्वपूर्ण बात यह हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कछुए का जीवन काल बहुत बड़ा होता है, यानी वो उस इकोसिस्टम में काफी साल तक बना रहेगा
0: जी।
2: दो बातें हुई। तीसरी बात यह हुई कि वो तालाब की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो मछलियां हैं, जो मेंढक है, जो क्रस्टेशिया हैं, जो घोंगे हैं, और जो अन्य प्राणियों का मृत मांस है, उनको सफाई करता रहता
0: जी,
2: है
0: जी,
2: तो
0: जी।
2: आप अपने आप समझ सकती है कि इकोसिस्टम में कछुआ कितना बड़ा योगदान निभा रहा है।
0: जैसे हम यदि भूमि पर देखें तो गिद्ध है या कौवे हैं या लकड़बग्घे हैं जो सड़ा गला मांस या इस तरह की चीजें खाके और हमारे इकोसिस्टम को साफ रखने का काम करते हैं प्राकृतिक तरीके से, वही काम कछुआ भी करता है।
2: बिल्कुल, कछुआ उसी तरह का काम करता है
0: जी। तो सर, बात यह आती है कि क्या कछुआ जो होता है उसमें अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं?
2: निश्चित रूप से, कछुए को हम तीन तरह की प्रजातियों में बांटा जाता है अमूमन। कछुए का एक तो ये है कि ऐसे कछुए जो मैरीन वाटर में यानी सी वाटर में यानी समुद्री जल में खारे पानी के वाटर में पानी में पाए जाते हैं, एक प्रजाति हो गई समुद्री प्रजाति, उनको सामान्यतया टर्टल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक। अब इसके बाद दूसरी प्रजाति हुई जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी जो हमारे नदियों में पाया जाता है मोस्टली, या बड़े बांधों में पाया जाता है, उसमें पाए जाने वाले उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स। तो दूसरी प्रजाति ये हो गई। तीसरी प्रजाति हो गई फ्रेश वाटर मार्स टर्टल, यानी जो थोड़ा कीचड़ में भी रह लेते हैं, ऐसे कछुए। ये तीन प्रजातियां हैं, उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन।
0: अच्छा अच्छा।
2: जो कि ताजा पानी में रहते हैं उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन। अब इसमें आप मोटे तौर पे यदि हमको बच्चों को समझाना हो तो मोटे तौर पे बच्चों को सिर्फ दो बातें बताना चाहिए, एक टर्टल एक टॉर्टाइज। टर्टल जो समुद्र में और खारे पानी में या मीठे पानी में रहता है, टॉर्टाइज टॉर्टाइज सामान्यतया टॉर्टाइज के लिए यूज किया जाता है जो पूरा जीवन काल पृथ्वी पर गुजारता है, टेरिस्ट्रियल होता है, धरातल पर रहता है, पानी में नहीं जाता। तो ये मोटे तौर पे ये वैज्ञानिक तरीके से देखें तो मैंने तीन तरह में विभाजित कर दिया, समुद्री कछुए, फ्रेश वाटर कछुए और मार्स वाले मर्ड वाले कछुए। और यदि हम बिल्कुल साधारणीकरण कर दें उसका तो दो कछुए होंगे, एक होगा टर्टल और दूसरा होगा टॉर्टाइज जो कि भूमि पर।
0: अच्छा, तो सर जो टॉर्टोइज है जो भूमि पर रहता है वो पानी में भी रहने के का अभ्यस्त होता है ना सर?
2: नहीं, उसने अपने आप को ढाल लिया है जमीन पर रहने के लिए।
0: अच्छा अच्छा।
2: तो वो पानी में नहीं रहता, पानी का बिल्कुल अभ्यस्त नहीं रहता। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो कछुओं का विकास हुआ है, जो विकसित हुए हैं कछुए, इनको भी रीढ़धारी प्राणियों में गिना जाता है। एक अकशेरुकी होते हैं, कशेरुकी होते हैं, तो ये कशेरुकी प्राणी होते हैं।
0: अच्छा।
2: तो इनका जो विकास हुआ है ये उभयचर से हुआ है, एम्फीबियन से हुआ है, जिसका उदाहरण हम मेंढक समझ सकते हैं।
0: अच्छा।
2: मेंढक जैसे धरती पे भी काफी आराम से रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, तो कछुओं का, कछुओं के जो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, सरीसृप कहलाते हैं, उनका विकास, विकास के क्रम में विकसित हुए हैं वो उभयचर से।
0: अच्छा, तो सर मुझे अब इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि विश्व में, भारत में और मध्य प्रदेश में कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं कछुओं की?
2: देखिए, पूरे आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 300 के आसपास प्रजातियां पूरे विश्व में कछुओं की पाई जाती हैं।
0: अच्छा।
2: जिसमें समुद्री कछुए भी शामिल है और पानी में फ्रेश वाटर में रहने वाले समुद्र कछुए भी शामिल है।
0: जी।
2: हमारा जो भारत देश है उसमें जो कछुए पाए जाते हैं वो लगभग 30 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छा। हमारे भारत देश में और 30 से लगभग सभी प्रजातियां जो हम छोड़ दें, हमारे कुछ असम वाली प्रजातियां छोड़ दें, उड़ीसा वाली प्रजातियां छोड़ दें, तो फ्रेश वाटर की काफी सारी 30 प्रजातियां लगभग हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं।
0: अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि एक उभयचर प्राणी है जो कछुआ है और कशेरुक है यानी कि जिसकी मेरुदंड होती है।
2: जी हाँ।
0: तो सर एक बात यह भी आती है कि बहुत ही जिज्ञासा रहती है हमको भी और बच्चों को भी कि उसकी वो शेल होती है जो उसका कवच है वो क्या है सर, वो हड्डी है या मांस है या ये क्या चीज है जो उसकी रक्षा करता है?
2: हाँ, ये आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। उसके पहले हम थोड़ा सा धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: शेल के बारे में तो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर ये बताऊंगा कि पहले जब लोहे का आविष्कार करके ढाल नहीं बनाई गई थी तो जो योद्धा लोग थे जो युद्ध में जाते थे वो तलवार के साथ जो ढाल का उपयोग करते थे उसके उसी शेल का उपयोग,
0: कछुए की शेल,
2: कछुए की शेल का उपयोग करते थे। और रासायनिक संगठन मुख्यतया इसका कैल्शियम कार्बोनेट और उसी से मिलते जुलते अन्य चीजों का होता है, जिससे हमारा कैरोटीन हमारा ये बना होता है, नाखून वगैरह बने होते हैं उससे बना हुआ होता है। हम आते हैं भारतीय संस्कृति में कछुआ, हमारे धर्म में कछुआ और हमारे आध्यात्मिक जीवन में कछुआ। आध्यात्मिक की बात जब आती है तो गीता के 5वें अध्याय के एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है, अपने कवच के अंदर समेट लेता है, इसी तरह से जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके ध्यान लगाता है वो सच्चे ध्यान की ओर अग्रसर हो।
0: क्या बात है, मतलब कछुए का उद्धरण गीता में भी है,
2: ऋग्वेद में भी है।
0: अच्छा,
2: ऋग्वेद में भी गीता का दिया गया, शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है। मगर एक और दूसरी बात है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी वैज्ञानिकता को धर्म से जोड़कर समझाने का एक प्रयास है कि विष्णु के जो दशावतार है उसमें एक कच्छप अवतार भी है, कूर्मा अवतार भी है। उसकी कहानी है, हम यदि संक्षेप में आज के दिन उस कहानी को याद करना चाहें कि जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन क्या, हम हर तरह का जैसे हमारा वैचारिक मंथन करते हैं तो विचार निकल के आते हैं, हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो भी एक तरह का मंथन है। तो इसी तरह से मंथन शब्द जो है वो एक तरह से वैचारिक चीजों से जुड़ा हुआ शब्द है, मथना। तो भाई इंद्र परेशान हुए, उनका बहुत सारी चीजें छिन गई उनसे, तो वो भगवान विष्णु के पास आए कि मैं क्या करूं भगवान, तो उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो असुर और सुर माने देवता और राक्षस दोनों ने समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र को मथने के लिए क्या करा जाए, तो आधार बनाना पड़ेगा मटका जैसा,
0: जी बिल्कुल,
2: तो और दूसरा होगा मथानी। तो ऐसा कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत था उसका बनाया आधार, यानी मटका जैसा बनाया, और वासुकी नाग थे उनका बनाया रस्सा और मंथन हुआ। तो अब ये हुआ कि वो जो पर्वत था उसका कोई आधार नहीं था, वो पर्वत शने शने समुद्र में डूबने लगा। तो सब देवता और असुर दोनों ने प्रार्थना करी विष्णु भगवान से, तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने तब कूर्मा अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे उठा लिया और उसको डूबने से बचा लिया। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। तो दरअसल देखिए, कोई भी पुराणों में जो कहानियां आई है या हमारे संदर्भ है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता लिए हुए होते हैं कि एक तो मंथन करेंगे आप तो ही कुछ अमृत मिलेगा, अमृत पाएंगे। उसका मतलब का ये नहीं है कि आप मथानी लेके दही मिल लेने, मतलब वैचारिक मंथन करेंगे तो ही आपको कुछ मिल पाएगा। दूसरा ये भी हमको पता चलता है कि हमारे पुराणों में पहले से इस बात का उल्लेख है कि जीवन का जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। जैसा आपने अभी कहा 25 करोड़ साल पहले कछुआ पाया जाता था, इसका मतलब हमारे पास इस बात के पहले भी कहीं ना कहीं चिंतन करके हम इस बात को अपने सामाजिकता में ला चुके थे कि कछुआ बहुत पुराना जीव है।
0: जी सर, ये तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ हुआ, पौराणिक संदर्भ हुआ। तो इसी से मिलती जुलती एक बात यही आती है कि कहा जाता है कि कछुओं की बहुत उम्र होती है, लंबी उम्र होती है, तो कितने इनका जीवन काल होता है सर?
2: देखिए, अब ये इसमें भी कछुए के उम्र को लेके भ्रांतियां हैं। मैं स्पष्ट करूं आपको कि एक वैज्ञानिक तथ्य जो है, एक अध्ययन हुआ था, एक कछुआ वैज्ञानिक आधार पर 152 वर्ष का पाया गया था। कछुए जीते हैं, काफी लंबी आयु जीते हैं, कैप्टिविटी में भी जीते हैं और खुले क्षेत्रों में भी जीते हैं, मगर जो हमारे पास रिकॉर्डेड है 152 वर्ष का कछुआ है। अभी आप कह रहे थे कि क्यों संरक्षण किया जाए, देखिए ये भी एक मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम ऐसे भी समझा सकते हैं लोगों को कि क्यों कछुए का संरक्षण किया जाए। कल को मनुष्य अपनी आयु 152 साल करना चाहता है, निश्चित रूप से जीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे जीन्स की। यदि कछुए का, उसे 152 साल वाले कछुए का जीन सुरक्षित रहता है तो हम उन जीन्स को मनुष्य के जीन्स के साथ मिलाकर, ये जीन टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का युग आ गया है, चल रहा है, तो यदि हमने किसी प्रकार से हमारा जीन में परिवर्तन कर देंगे तो मनुष्य भी बड़ी आसानी से 152 साल जी पाएगा। तो इसलिए भी कछुए का संरक्षण करना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा जीव चलता फिरता है जिसकी आयु 152 साल वैज्ञानिक रूप से प्रूव की है।
0: जी, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही सर। तो यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है, क्या सर कछुए के दांत नहीं होते?
2: आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, कछुए के दांत नहीं होते, मगर उसका जो मुंह के अंदर जो संरचना होती है वो काफी कठोर होती है खाने के लिए। दूसरी बात क्या कि मैंने आपसे कहा है कछुए का भोजन क्या होगा, मेंढक होगा, मछलियां होंगी, कुछ क्रस्टेशियंस होंगे, कुछ घोंगे होंगे, और इसके बाद मृत मांस होगा, सड़ा हुआ मांस होगा। तो इन सबको चबाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कछुओं के दांत नहीं पाए जाते, ये सही बात है।
0: तो सर इनका मैंने सुना है कि इनकी हृदय गति भी बहुत धीमी होती है सर?
2: निश्चित रूप से, ये अच्छी बात है। इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। एक कछुआ होता है के बारे में अध्ययन किया गया, 2 साल बिना खाए पिए जीवित रहा, उसको कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया। यानी जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ज्यादा आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे हमारा हम वार्धक्य आ जाता है, हमारे बुढ़ापा आ जाता है, तो चूंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है इसलिए हम खाना भी कम हो जाता है और डाइजेशन पावर भी कम हो जाता है। तो कछुए के साथ यही बात है कि वो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। एक और बात आपको बताऊं मैं कि कछुए भी हम जो आसपास जगत देखते हैं, हमारा जंतु जगत, उसमें एक तो मनुष्य और दूसरा पक्षी, इनका शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है
0: जी,
2: ये समतापी हैं। जैसे हमारे मनुष्य का जीव तापक्रम है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्थिर है। ऐसा नहीं होगा कि सर्दी आएंगी तो हमारे शरीर का तापक्रम गिर के 90 हो जाए और गर्मी आने लगे तो 101 हो जाए, स्थिर रहता है। परंतु कछुआ ऐसा जीव है जिसके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए हम देखेंगे कि सर्दी में कछुए पानी के बाहर आकर बास्किंग करते हैं, उसको तकनीकी भाषा में, वन्य प्राणी की भाषा में बास्किंग कहते हैं, आगे धूप सेक के अपना तापक्रम, शरीर का तापक्रम बढ़ाते हैं। और गर्मियां आती हैं तो वो सामान्यतया पानी में ही रहते हैं, बाहर आके बास्किंग नहीं करते, पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बहुत से कछुए ऐसे होते हैं जिसका मैंने आपको बताया ना, टर्टोर्टाइस, वो हाइबरनेशन एक तरह से सर्दियों में खाना पीना बंद कर देता है।
0: अच्छा,
2: या ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उसका खाना बहुत कम हो जाता है।
0: यानी सर तपस्वियों का जीवन है, इसीलिए तपस्वियों जैसा उनकी आयु भी है,
2: आयु भी है, वैसे ही उनका जिसको हम कहेंगे चयापचाई की दर या मेटाबॉलिक रेट उनका कम है, इसलिए उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा
0: है। जी सर, एक प्रश्न मेरा मन में ये भी आ रहा है कि जो जलीय कछुए हैं क्या वो मछली की तरह पानी में ही सांस ले लेते हैं या उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है?
2: बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा
0: जी।
2: इस प्रश्न को मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगा कि हमें समुद्री कछुए जो होते हैं, जो मैरीन टर्टाइल कहलाते हैं, वो हम पांच कछुओं की बात करेंगे।
0: अच्छा जी,
2: ठीक है। पहला कछुआ होता है समावतार भी, कूर्मावतार भी है, उसकी कहानी है। हम यदि संक्षेप में आज के दिन उस कहानी को याद करना चाहें कि जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन क्या, हम हर तरह का, जैसे हमारा वैचारिक मंथन करते हैं तो विचार निकल के आते हैं, हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो भी एक तरह का मंथन है। तो इसी तरह से मंथन शब्द जो है वो एक तरह से वैचारिक चीजों से जुड़ा हुआ शब्द है, मथना। तो भाई इंद्र परेशान हुए, उनका बहुत सारी चीजें छिन गई उनसे, तो वो भगवान विष्णु के पास आए कि मैं क्या करूं भगवान, तो उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो, तो समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो असुर और सुर माने देवता और राक्षस दोनों ने समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। उन्होंने समुद्र को मथने के लिए क्या करा जाए, तो आधार बनाना पड़ेगा मटका जैसा,
0: जी बिल्कुल,
2: तो और दूसरा होगा मथानी। तो ऐसा कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत था
0: जी,
2: उसका बनाया आधार यानी मटका जैसा बनाया
0: जी,
2: और वासुकी नाग थे उनका बनाया रस्सा
0: जी,
2: और मंथन हुआ
0: जी।
2: तो अब ये हुआ कि वो जो पर्वत था उसका कोई आधार नहीं था, वो पर्वत शने शने समुद्र में डूबने लगा
0: जी।
2: तो सब देवता और असुर दोनों ने प्रार्थना करी विष्णु भगवान से, तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने तब कूर्मा उतार लिया, कछुए का उतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे उठा लिया और उसको डूबने से बचा लिया। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। तो दरअसल देखिए, कोई भी पुराणों में जो कहानियां आई है या हमारे संदर्भ है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता लिए हुए होते हैं कि एक तो मंथन करेंगे आप तो ही कुछ अमृत मिलेगा, अमृत पाएंगे
0: जी।
2: उसका मतलब का ये नहीं है कि आप मथानी लेके दही ले, मतलब वैचारिक मंथन करेंगे तो ही आपको कुछ मिल पाएगा। दूसरा ये भी हमको पता चलता है कि हमारे पुराणों में पहले से इस बात का उल्लेख है कि जीवन का जो उत्पत्ति हुई है
0: जी,
2: वो जल से हुई है। जैसा आपने अभी कहा 25 करोड़ साल पहले वो कछुआ पाया जाता था, इसका मतलब हम, हमारे पास इस बात के पहले भी कहीं ना कहीं चिंतन करके हम इस बात को अपने सामाजिकता में ला चुके थे कि कछुआ बहुत पुराना जीव है।
0: जी सर, ये तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ हुआ, पौराणिक संदर्भ हुआ। तो इसी से मिलती जुलती एक बात यही आती है कि कहा जाता है कि कछुओं की बहुत उम्र होती है, लंबी उम्र होती है, तो कितने इनका जीवन काल होता है सर?
2: देखिए, अब ये इसमें भी कछुए के उम्र को लेके भ्रांतियां हैं। मैं स्पष्ट करूं आपको कि एक वैज्ञानिक तथ्य जो है, एक अध्ययन हुआ था, एक कछुआ वैज्ञानिक आधार पर 152 वर्ष का पाया गया था। कछुए जीते हैं, काफी लंबी आयु जीते हैं, कैप्टिविटी में भी जीते हैं और खुले क्षेत्रों में भी जीते हैं, मगर जो हमारे पास रिकॉर्डेड है 152 वर्ष का कछुआ है। अभी आप कह रहे थे कि क्यों संरक्षण किया जाए, देखिए ये भी एक मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम ऐसे भी समझा सकते हैं लोगों को कि क्यों कछुए का संरक्षण किया जाए। कल को मनुष्य अपनी आयु 152 साल करना चाहता है
0: जी,
2: निश्चित रूप से जीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे जीन्स की। यदि कछुए का, उसे 152 साल वाले कछुए का जीन सुरक्षित रहता है तो हम उन जीन्स को मनुष्य के जीन्स के साथ मिलाकर ये जीन टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का युग आ गया है, चल रहा है। तो यदि हमने किसी प्रकार से हमारा जीन में परिवर्तन कर देंगे तो मनुष्य भी बड़ी आसानी से 152 साल जी पाएगा। तो इसलिए भी कछुए का संरक्षण करना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा जीव चलता फिरता है जिसकी आयु 152 साल वैज्ञानिक रूप से प्रूफ की।
0: जी, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही सर। तो यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है, क्या सर ये कछुए के दांत नहीं होते?
2: आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया
0: जी।
2: कछुए के दांत नहीं होते, मगर उसका जो मुंह के अंदर जो संरचना होती है वो काफी कठोर होती है खाने के लिए। दूसरी बात क्या कि मैंने आपसे कहा है कछुए का भोजन क्या होगा, मेंढक होगा, मछलियां होंगी, कुछ क्रस्टेशियंस होंगे, कुछ घोंगे होंगे
0: जी,
2: और इसके बाद मृत मांस होगा, सड़ा हुआ मांस होगा। तो इन सबको चबाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कछुओं के दांत नहीं पाए जाते, ये सही बात है।
0: तो सर इनका मैंने सुना है कि इनकी हृदय गति भी बहुत धीमी होती है सर।
2: निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। एक कछुआ होता है के बारे में अध्ययन किया गया, 2 साल बिना खाए पिए जीवित रहा, उसको कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया। यानी जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ज्यादा आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे हमारा हम वार्धक्य आ जाता है, हमारे बुढ़ापा आ जाता है, तो चूंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है इसलिए हम खाना भी कम हो जाता है और डाइजेशन पावर भी कम हो जाता है। तो कछुए के साथ यही बात है कि वो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। एक और बात आपको बताऊं मैं कि कछुए भी हम जो आसपास जगत देखते हैं, हमारा जंतु जगत, उसमें एक तो मनुष्य और दूसरा पक्षी, इनका शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है
0: जी।
2: ये समतापी हैं। जैसे हमारे मनुष्य का जीव तापक्रम है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्थिर है। ऐसा नहीं होगा कि सर्दी आएंगी तो हमारे शरीर का तापक्रम गिर के 90 हो जाए और गर्मी आने लगे तो 101 हो जाए, स्थिर रहता है। परंतु कछुआ ऐसा जीव है जिसके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए हम देखेंगे कि सर्दी में कछुए पानी के बाहर आकर बास्किंग करते हैं, उसको तकनीकी भाषा में, वन्य प्राणी की भाषा में बास्किंग कहते हैं, आगे धूप सेक के अपना तापक्रम, शरीर का तापक्रम बढ़ाते हैं। और गर्मियां आती हैं तो वो सामान्यतया पानी में ही रहते हैं, बाहर आके बास्किंग नहीं करते, पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बहुत से कछुए ऐसे होते हैं जिसका मैंने आपको बताया ना ट्रॉडोटाइस, वो हाइबरनेशन एक तरह से सर्दियों में खाना भी नहीं बंद कर देता है।
0: अच्छा,
2: या ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उसका खाना बहुत कम हो जाता है।
0: यानी सर तपस्वियों का जीवन है, इसीलिए तपस्वियों जैसा उनकी आयु भी है,
2: आयु भी है, वैसे ही उनका जिसको हम कहेंगे चयापचय की दर या मेटाबॉलिक रेट उनका कम है, इसलिए उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा।
0: जी सर, एक प्रश्न मेरा मन में ये भी आ रहा है कि जो जलीय कछुए हैं क्या वो मछली की तरह पानी में ही सांस ले लेते हैं या उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है?
2: बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा
0: जी।
2: इस प्रश्न को मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगा कि हमें समुद्री कछुए जो होते हैं, जो मैरीन टर्टाइल कहलाते हैं, वो हम 5 कछुओं की बात करेंगे।
0: अच्छा जी,
2: ठीक है। पहला कछुआ होता है समुद्री कछुआ बोलते हैं, ग्रीन टर्टल। अब आपने सांस रोकने की बात करी, ग्रीन टर्टल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 5 घंटे तक सांस रोके रहता है पानी,
0: क्या बात,
2: समुद्री कछुआ है। दूसरा टर्टल है ओलब रिडले टर्टल, ये बड़ा खबरों में रहता है पूरी दुनिया में, क्यों रहता है मैं आपको भी बताता हूँ। तीसरा है हॉकबिल कछुआ, ये समुद्री कछुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा है लैदरी टर्टल, इसको शेर कछुआ कहते हैं। तो विशेषता क्या है शेर कछुआ क्यों कहते हैं, इसका वजन 1000 किलो के आसपास होता है, बड़ा भारी कछुआ होता है।
0: अच्छा, तो सर ये मतलब समुद्र में इतना बड़ा
2: कछुआ पाया जाता है। और फिर इसके बाद है लॉगरहेड कछुआ, ये लॉगरहेड कछुआ लगभग विलुप्ति के कगार पे है, कम अच्छा, मिलते हैं। ये 5 तरह के प्रमुख कछुए हैं जो समुद्र में मिलते हैं। तो अब मैं आपको जो ओलिव रिडले टर्टल, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारे भारत के हिंद समुद्र तट पे पाया जाता है, उड़ीसा में खास तौर से। तो ये कछुआ काफी बड़ी संख्या में, ये ग्रुप बना के, समूह बना के रहते हैं। कछुआ अकेले रहने वाला प्राणी नहीं है,
0: सामाजिक प्राणी है,
2: समूह बना के रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया अपनी गति करते हैं, तो इन्हें दिशा किस दिशा में जाना है, बीच समुद्र में है उनको किनारे पे आना है तो कैसे आएंगे, वो आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। मैंने कहा
0: मैग्नेटिक मतलब कि सर साउथ और नॉर्थ का इनको ज्ञान है,
2: चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं, उसके हिसाब से गति करते हैं। अब इनको अपना प्रजनन करना है, बच्चे देना है, जितने भी दुनिया में कछुए पाए जाते हैं, रहते जरूर पानी में है परंतु प्रजनन वो जमीन पे आके करते हैं।
0: अच्छा सर, समुद्री जो कछुए हैं वे
2: वो भी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
2: और जो कछुए बाहर पृथ्वी पे रहते हैं वो तो करेंगे करेंगे
0: जी,
2: और मैंने आपको तीसरा मार्श वाले कछुए बताया वो भी करेंगे
0: जी।
2: तो ये समुद्र के तट पे जहाँ रेत होती है वहाँ समुद्री कछुए करते हैं, जहाँ रेत नहीं होती वहाँ पृथ्वी पे पाए जाने वाले कछुए भुरभुरी मिट्टी में करते हैं
0: जी।
2: जो ओलिव रिडले आपको टर्टल्स की बात कर रहा था, ये कहा जाता है कि समुद्र का सबसे छोटा कछुआ है
0: जी।
2: बड़ा इंटरेस्टिंग है, हजारों की संख्या में उड़ीसा के तट पर आता
0: जी।
2: है और उड़ीसा के तट पर आकर ये केवल प्रजनन करने के लिए आता है। मादा आती है, अंडे देती है वहां पे
0: जी।
2: और इनक्यूबेशन जिसको हम कहते हैं कि वो जैसे माँ गर्भ में अपने बच्चे को रखती है 9 महीने तक
0: जी,
2: या मुर्गी अंडे पे बैठ के उसको अंडा सेती है
0: जी, जी।
2: इसी तरह से उनका इंक्यूबेशन, उनका गर्भ वो समुद्र की रेत होता है।
0: अच्छा,
2: अंडों का।
0: अच्छा अच्छा।
2: अंडे उसमें दबा देते
0: जी, मतलब समुद्र की रेत में गड्ढा खोद के उसमें अंडे दिए
2: जाते हैं, बाहर बाहर आके।
0: अच्छा,
2: तट पे
0: जी,
2: समुद्र के पानी के अंदर नहीं, तट पे
0: बिल्कुल।
2: इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं और वो 40-45 दिन 80 दिन जितना भी उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसके बाद उसमें से वो बच्चे निकलते हैं और वो बच्चों को जन्म से ही मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान होता है।
0: अच्छा।
2: उतर के समुद्र की तरफ चलने लगते हैं।
0: क्या बात है?
2: उल्टा नहीं चलते, ऐसा नहीं चलेंगे कि जिधर समुद्र उस तरफ चलना शुरू कर दे। वो माँ नहीं आती उनको लेने के लिए।
0: अच्छा।
2: माँ का काम है अंडे दिए चली गई वापस समुद्र में, ना रक्षा करती ना कुछ करती, और फिर वो अपने आप समुद्र में जाके अपने समूह से जाके मिल जाते हैं, ओलव रिडले टर्टल।
0: अब प्रश्न यही आता है सर कि आखिर इतनी प्यारी प्रजाति जो है कछुआ प्रजाति, ये विलुप्त क्यों हो रही है? क्या कारण है कि ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए?
2: देखिए, उसी के लिए तो विश्व कछुआ दिवस मनाना शुरू किया गया है कि जागरूकता है। नंबर एक जो बात है, हैबिटेट लॉस।
0: अच्छा।
2: उनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट होता जा रहा है। तालाब थे उनको खत्म कर दिया
0: जी।
2: नदियां हैं उनको खत्म कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं, या तो नदियों को हमने समाप्त कर दिया है, समाप्त नहीं कर पाए हैं तो प्रदूषित कर दिया है उनको
0: जी।
2: तीसरी बात है, समुद्र के कछुओं के बारे में यदि आप सोचें तो प्लास्टिक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं छोटे छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं जिनको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, और माइक्रो प्लास्टिक्स को वो कुछ आहार समझ के कछुए खा लेते हैं।
0: अच्छा।
2: तो उसके कारण नाश विनाश हो रहा है उनका। दूसरा हो रहा है कि कई बार समुद्र में तेल छोड़ा जाता है, तेल जैसी, ग्रीस जैसी चीजें, ऑयल जैसी चीजें छोड़ दी
0: जाती
2: है
0: जहाजों से जो लीक हो जाती
2: लीक हो जाता
0: जी,
2: है
0: जी, जी,
2: उसके
0: जी।
2: अलावा भी जो प्रदूषित पानी है उसके साथ बहुत सारा, शहरों के पास जहाँ है समुद्र में प्रदूषण का पानी छोड़ रहे हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है पानी उसके ऊपर तेल की
0: जी।
2: जिसके कारण अंदर कछुए को सांस लेने में तकलीफ होती
0: है।
2: सभी कछुए ऐसे नहीं होते कि 2-2 घंटे सांस रोक लें। सांस तो सबको, ऑक्सीजन सबको चाहिए,
0: उन्हें सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए।
2: सांस लेने के लिए सतह पर, या जो ऑक्सीजन पानी में है
0: जी जी
2: उसमें, उससे लेंगे वो पानी की ऑक्सीजन लेंगे
0: जी, जी,
2: तो पानी की ऑक्सीजन भी यदि आप उसके ऊपर आयल की सतह बना देंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो पानी में अब्सॉर्ब होती है वो कम हो जाएगी,
0: कम हो जाएगी।
2: तो ये बड़े कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि जो लोग मछली पकड़ते हैं उसके साथ साथ कछुए भी पकड़ लेते हैं, तो कछुआ पकड़ में आ जाता है तो वो कछुए को बेच देते हैं। कछुआ, कुछ लोग कछुए खाते भी हैं जो

0: बांध के किनारे पे कछुए नहीं पहुंच पाते जहां उनका उनको अंडे देना है,
1: आवास था
0: जी, तो जी, जी। तो सबसे बड़ा ही परेशानी जो हो रही है वो आवास का संकट है कछुओं के साथ, इसलिए कछुओं की संख्या में कमी आ रही है। अब मैं अभी समुद्री कछुओं के बारे में तो आपने पूछ लिया था मेरे से, किंतु आपने मीठे पानी के कछुए के बारे में नहीं पूछा, जो हमारे मध्य प्रदेश के कछुए हैं। बताना चाहें लोगों को कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे कछुए हैं, 5 प्रमुख कछुए जिनका संरक्षण होना चाहिए और जो समाप्त होते जा रहे हैं। तो उनमें पहला कछुआ जो है वो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टार्टाइज और टेरापिन कहलाते हैं, तो पहला वाला फ्रेश वाटर टर्टल है, रेड क्राउन रूफ टर्टल।
1: अच्छा, जो मध्य प्रदेश में,
0: जो मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी में मिलता है, मुरैना में पाया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये बहुत ही नियर टू एक्सटिंक्शन है। अब आप समझेंगे, एक तो मनुष्य का लालच, रेत की खुदाई,
1: अच्छा रेत खनन,
0: रेत खनन। और देखिए मैंने आपसे कहा कि वो बच्चे कहाँ दे रहा है, अपने अंडे कहाँ दे रहा है, तट पर आकर रेत में दे रहा है, और उस रेत को आप भर के ले जा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण उनका यह है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय, इनको मॉनिटरिंग करती है, इनको उसने रेड डाटा लिस्ट में डाला हुआ है कक्षार्थी के कार पे। दूसरा एक सामान्य कछुआ है जिसको जो हम लोग देखने में आता है, फ्लेप शेल टर्टल।
1: अच्छा,
0: उसका जो ऊपर की जो कब वो रहता है ना, वो बिल्कुल जरा नाजुक सा रहता है,
1: अच्छा,
0: नरम रहता है। फ्लेप शेल टर्टल। नंबर तीसरा है गंगीज सॉफ्ट टेल टर्टल। गंगा में और उसकी गंगा की जो सहायक नदियां, जैसे आप गंगा की सहायक नदियां किसको कहेंगे, बेतवा को कह दीजिए, चंबल को कह दीजिए, इनमें जो पाया जाता है, यमुना है, इन इसको मिलता है गंगीज सॉफ्ट शेल टर्टल। तीसरा है थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। उसके ऊपर 3 लाइन पंक्तियां होती हैं, 3 लाइनें खिंची होती हैं, इसलिए 3 लाइन रूफ टर्टल कहलाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया वो था स्टार टॉर्टाइस। ये स्टार टॉर्टाइस पाया जाता है कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो ये सारनी बैतूल के जंगल में मिलता है, गांधी सागर के जंगल में मिलता है। ये भी नियर टू एक्सटिंक्शन है, विलुप्ति की कगार पे है, गिनी चुनी संख्या में बचे हैं। इनका भी आवास खतरे में पहुंच गया है। आवास का खतरे में पहुंचने का कारण मेन भी आदमी भी है, पालतू पशु भी है
1: जी।
0: इनके आहार, एक बड़ा भी बात हो रही है, आहार, ये आहार, ये आहार नहीं है इनके। ये जो स्टार टर्टाइस है बहुत ही सुंदर किस्म का कछुआ है, इसकी तस्करी भी होती है, और इसका आहार ये शाकाहारी होता है।
1: अच्छा,
0: तो जंगल में ह्यूमन इंटरवेंशन इतने बढ़ गए हैं कि उसको अपना आहार नहीं मिल पाता है। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा था कि उनके दांत होते हैं कि नहीं होते, तो जिसके दांत होते हैं जरा और चीजें भी खा लेता है, जिसकी दांत नहीं होंगे उसको लिमिटेड खुराक ही होगी। तो स्टार टॉर्टाइस भी विलुप्ति के कगार पे है। ये हमारे मध्य प्रदेश के 5 कछुओं के बारे में बात। अच्छा,
1: तो सर ये जब संरक्षण की बात चल रही है तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि भारत में कछुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम क्या कहीं क्या अभयारण्य हैं, और यदि हैं तो कहाँ कहाँ हैं?
0: देखिए, एक तो बहुत पहले से कछुओं के संरक्षण के बारे में जहाँ चर्चा की, जहाँ काम किया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है, वो है चेन्नई।
1: अच्छा,
0: है ना, चेन्नई में प्रारंभ से ही कछुओं के बारे में काफी काम किया गया है। तो एक तो संरक्षित स्थल है, कोई घायल कछुआ होता है, बीमार होता है, वो लोग इलाज भी करते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं। वहाँ शार्प सेल टर्टल, वहाँ पर शार्प डॉटर टॉर्टाइस और सी टर्टल दोनों पे काम किया जाता है। मगर भारत में अभी 2 अभयारण्य बनाए गए हैं स्पेसिफिक कछुए के। एक तो बनाया गया है वाराणसी में, वाराणसी में रामनगर के आसपास, रामनगर से लेकर 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो जो गंगा नदी में कछुए पाए जाते हैं, ना केवल उनका संरक्षण हो रहा है बल्कि वहां पर अन्य कहीं से भी कछुए आते हैं तो उनको भी संरक्षित किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये जो संरक्षण वाराणसी में हो रहा है ये हो रहा है सॉफ्ट वाटर यानी मीठे पानी वाले कछुओं के संरक्षण और उनका अभयारण्य। दूसरा जो स्थान है जहाँ बड़े पैमाने पर कछुओं का संरक्षण किया जाता है वो उड़ीसा की, मैंने आपको बात बताई, उड़ीसा में भी संरक्षण हो रहा है इसका, और वहां पर भी, यहाँ पर ओलिव रिडरे आते हैं, उस जगह का नाम है केंद्रापाड़ा।
1: अच्छा,
0: तो वो केंद्रापाड़ा में वहां पर संरक्षण करके वहां भी सेंचुरी बनाई गई है और इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो दोनों तरह का संरक्षण हो रहा है, समुद्री कछुओं का भी भारत में संरक्षण के लिए सेंचुरी बनाई गई है और फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए भी बनाई गई।
1: तो सर ये अभयारण्य में सबसे ज्यादा तो जब इनका क्या कोई विशेष प्रजनन काल होता है, क्या उस समय विशेष ध्यान दिया जाता होगा?
0: मोटे तौर पर ऐसा समझिए, वैसे तो हर कछुए का प्रजनन काल में अंतर होता है, मगर सामान्यतया कछुए बारिश के पूर्व प्रजनन करते हैं ताकि रेत की स्टेबिलिटी बनी रहे और बारिश के पहले बच्चे निकल आए और वो पानी में चले जाए,
1: यानी अमूमन गर्मियों के समय में,
0: गर्मियों में नवंबर से लेके और अप्रैल के बीच में इनका सामान्यतया प्रजनन काल रहता।
1: तो सर अब बात यह आती है, आपने संरक्षण के लिए जो अभयारण्य बताए वो, लेकिन हम हमारे स्तर पर कछुओं के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं?
0: एक तो जो लोग कछुओं का शिकार कर रहे हैं
1: जी,
0: अवैध व्यापार कर रहे हैं, देखिए पहले क्या होता था, अभी भी ये प्रथा परंपरा है कई देशों में, तो वहां पे कछुओं की मांग रहती है। कछुए का जो शेल होता है ना, उससे कान के टॉप्स बनाए जाते थे, कुछ अंगूठियां बनाई जाती थी, गले में पहनने के गारमेंट्स बनाए जाते थे। कछुए के बारे में मिथक है कि वो यौन शक्ति को बढ़ाता है, वो उसके कारण गाए जाते थे, उसके कारण कछुए का था। अब कछुए के संरक्षण के लिए कछुए, जितने प्रकार के कछुए हैं वो सभी के सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शामिल किए गए हैं।
1: अच्छा।
0: यदि कछुओं का कोई मारता है या अवैध व्यापार करता है या अवैध रूप से पालता है तो उस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 3 साल से लेके अधिकतम 6 साल तक की सजा है।
1: अच्छा।
0: तो हमको कछुओं का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि कछुआ बहुत ही विनम्र जीव है, किसी को परेशान नहीं करता, काटता नहीं है, मारता नहीं है, हानि नहीं पहुंचाता, की स्टोन स्पीसीज है, पानी की स्वच्छता बनाए हुए है और हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और जंतुओं को इसलिए संरक्षण करना चाहिए, बेजुबान है, बोलते नहीं है, अपना कष्ट बता नहीं पाते हैं। कछुए दिवस पर जो परिचर्चा है उसमें मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि हमको भी जीवित रहना है प्रकृति के साथ तो कछुओं का भी संरक्षण करना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए आज और आपने कछुए के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई बातें तो हमको आज पहली बार पता चली हैं कि कछुआ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। तो श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति में मनुष्य का बढ़ता हुआ दखल, जैसे कि प्रदूषण है या अवैध शिकार है या हमारे शौक है, इसके कारण इस प्यारे से प्राणी को विलुप्ति की कगार पर पहुंचना पड़ गया। जरूरत है कि हम इनका संरक्षण करें और इसके लिए विश्व में जागरूकता बढ़ाएं, और इसीलिए ही इस विशेष दिवस को यानी विश्व कछुआ दिवस को हम मनाते हैं। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

ये समारोह 24 मई तक चलेगा। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए संतवाणी समारोह में। यह है भक्ति गायन पूर्वी सप्रे का।

पश्चात राग मिश्र किरवानी में एक भजन है कबीर जी का, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे दादा गुरु जी, मेरे पिताजी के गुरु जी लेट मिस्टर तनवानी, उन्होंने इसकी धुन बनाई है जो कि बहुत बहुत सुंदर है। मिश्र किरवानी है विराट, तो आगे चाहूँगी गुरु जी से, आगे चाहूँगी आप सभी से, आगे चाहूँगी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी अभी आपने सुनी रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुत करता थे फराज फैयाज। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा। भारत भवन में शुक्रवार को 3 दिवसीय संतवाणी समारोह का शुभारंभ हुआ। भक्तिकालीन काव्य संत परंपरा और सूफियाना संवेदनाओं से सजे इस आयोजन ने श्रोताओं को अध्यात्म और संगीत की गहन अनुभूतियों से साक्षात्कार कराया। पहले दिन 2 सत्र आयोजित हुए। प्रथम सत्र में पूर्वी सप्रे ने अपनी गायकी से संत साहित्य की आध्यात्मिक चेतना को स्वर दिए। उन्होंने संत तुलसीदास के पद ऐसो को उदार जाग माही से प्रस्तुति का आरंभ किया। इसके बाद संत तुकाराम के प्रसिद्ध अभंग सुंदर से ध्यान उभे विटे वरी में भगवान विट्ठल के दिव्य स्वरूप का अत्यंत मार्मिक चित्र उभरा। राग आधारित प्रस्तुति में भक्ति और लोक धुनों का सुंदर सामंजस्य दिखाई दिया। वहीं टिटी नगर कालीबाड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर के 165वें जन्म वर्ष के अवसर पर चल रहे एक माह के सांस्कृतिक आयोजनों के तहत शनिवार को रात 8 बजे नाटक लोकहीर पोरिखा का मंचन किया जाएगा। करीब 140 वर्ष पहले युवा अवस्था में गुरुदेव द्वारा लिखे गए इस नाटक का निर्देशन सार्थक गांगुली करेंगे। विशेष बात यह कि प्रस्तुति पूरी तरह महिला कलाकारों द्वारा दी जाएगी और इनमें से अधिकांश पहली बार रंगमंच पर अभिनय करती नजर आएंगी। कविता और छंदों पर आधारित यह नाटक परिश्रम, सत्यता और आत्मविश्वास के जरिए जीवन बदलने और संदेश देता है। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम बंगाली सांस्कृतिक परंपरा और रविंद्र साहित्य की झलक भी प्रस्तुत करेगा।

छतनारा समूह द्वारा शुक्रवार शाम एक नई श्रृंखला विमर्श के अंतर्गत पहला आयोजन किया गया। छतनारा आर्ट होम में आयोजित पहला विमर्श प्रख्यात लेखक निर्मल वर्मा पर केंद्रित रहा। शुरुआत में सभी प्रतिभागियों ने छतनारा लाइब्रेरी से निर्मल वर्मा की मनपसंद किताबें चुनी और साथ बैठे। कवि निशांत सूत्रधार की भूमिका में थे। उन्होंने पहले सभी को निर्मल वर्मा का जीवन परिचय बताया और साहित्य में उनके महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद निर्मल वर्मा की कहानी माया का मर्म का सामूहिक पाठ शुरू हुआ। 11 पेज की इस कहानी के हिस्से को 5 लोगों ने बारी बारी से पढ़ा। उसके बाद छतनारा की फाउंडर मोहिनी शर्मा ने लाल टीन की छत उपन्यास से एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। मोहिनी ने कहा कि निर्मल वर्मा अपनी कहानी के इर्द गिर्द का भौगोलिक माहौल इतनी सूक्ष्मता से रचते हैं कि पाठक उनकी रचना लोक की तरफ खींचा चला जाता है।

क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रकृति अध्ययन कार्यक्रम हरित शावक और हरित किशोर के प्रतिभागियों के लिए शुक्रवार को रचनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रकृति चित्रकला कार्यशाला में संग्रहालय के चित्रकार नवीन कुमार ने बच्चों को पर्वत, झरने, नदियां, बादल, वृक्ष, बाघ, चीता और तेंदुआ जैसे प्राकृतिक दृश्यों एवं वन्य जीवों को चित्रित करना सिखाया। वहीं राज्य पुरस्कार से सम्मानित बांस शिल्पी धर्मेंद्र रोहर के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने बांस की सहायता से विभिन्न पक्षियों और कलात्मक आकृतियों का निर्माण करना सीखा। बच्चों का उत्साह देखने बनता था।

निराला सृजन पीठ साहित्य अकादमी संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश द्वारा 24 मई को गौरांजनी सभागार रविंद्र भवन में शाम 5:30 से व्याख्यान रचना विमर्श एवं पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य विषय राष्ट्रीय अस्मिता के स्वर होगा। कार्यक्रम में दूर दूर से वक्ताओं के आने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर अलियांस फ्रांसिस द भोपाल और सिने क्लासिक द्वारा कैनोपी रूफटॉप पर चर्चित फ्रेंच फिल्म रेड साइल का विशेष प्रदर्शन किया गया। फिल्म की कहानी नूर नाम की एक युवा नर्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की केमिकल फैक्ट्री में काम शुरू करती है। वहाँ उसे औद्योगिक प्रदूषण, कर्मचारियों की बीमारियों और उद्योगपतियों, राजनेताओं व यूनियनों के बीच छिपे समझौतों के कड़वे सच का पता चलता है। ये फिल्म कॉरपोरेट जिम्मेदार, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर तीखे सवाल उठाती है। खुले आसमान के नीचे हुए इस प्रदर्शन के बाद दर्शकों के बीच पर्यावरण संकट विषय पर एक विचारोत्तेजक चर्चा भी की गई।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का प्यार भरा नमस्कार।
2: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार। इतिहास, आज तुम इस तरह अपने में खोए खोए कहाँ पहुँच गए हो?
1: तारीख, मैं हूँ झारखंड में।
2: अच्छा इतिहास, तो इसे विस्तार से समझाओ।
1: झारखंड का छोटा नागपुर, जहाँ मुंडा और उरांग जनजातियाँ इस विस्तृत और सघन वन क्षेत्र में उन्मुक्त और प्राकृतिक जीवन जीती है और अपने सिंहबोगा, नगेरा, बुरुबोगा, जेहरा, एरा आदि आराधनाओं में लगी रहती हैं। पर अंग्रेज शासकों की दखल अंदाजी, जमींदारों की बैठ बेगारी, ठेकेदारों द्वारा शोषण और धार्मिक संस्थाओं द्वारा बहला फुसला करके धर्मांतरण में उन्हें समय समय पर विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया है।
2: हाँ, देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में देश के अलग अलग हिस्सों के आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपनी आजादी के लिए झारखंड की विभिन्न जनजातियों और समुदाय ने विभिन्न कालखंडों में अनेक विद्रोह किए। इनमें प्रमुख थे पहाड़िया विद्रोह, भूमि विद्रोह, कोल विद्रोह, संथालम, सरदार विद्रोह, मुंडा विद्रोह आदि।
1: हाँ, और इसमें सबसे प्रसिद्ध है सन 1811 का मुंडा विद्रोह। और इस विद्रोह के नायक पता कौन थे?
2: कौन थे?
1: बिरसा मुंडा, जिसने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बिरसा मुंडा ने जवानी में कदम रखते ही अपने इलाके के आदिवासियों के लिए संघर्ष का बिगुल बजा दिया। मात्र 26 वर्ष की आयु में उस क्षेत्र का सबसे पूज्य मसीहा बन करके सिंहबोहा यानी परम पुत्र धरती आंबा के रूप में दुनिया से कूच कर गया। आज भी झारखंड के आदिवासी अंचल में उनकी याद में कितने ही लोकगीत गाए जाते हैं।

0: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 को छोटा नागपुर की ऐतिहासिक धरती पर रांची जिले के अलीहुआतू में डोमवारी पहाड़ी की गोद में हुआ। बिरसा के पिता सुगना मुंडा एक गरीब किसान थे जो बाद में ईसाई धर्म स्वीकार करके मसीह दास मुंडा कहलाने लगे। बिरसा का बचपन अपने ननिहाल चकलन में बीता। गरीब माँ बाप की दयनीय स्थिति का प्रभाव उनके व्यक्तित्व जीवन पर स्पष्ट रूप से पड़ा, जिसने उन्हें संघर्षशील बना दिया।
1: शुरू शुरू में तो वे मिशनरी के प्रभाव में रहे, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा मिशन स्कूल में हुई थी, किंतु वैष्णव धर्मावलंबी शिक्षक आनंद स्वामी के संपर्क में आने के बाद धर्म के प्रति उनका नजरिया बदल गया। रामायण, महाभारत, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद आदि का अध्ययन और श्रवण करते करते वे अपने समाज में सोखा और गुणी समझे जाने लगे। संघर्ष में पला बड़ा बिरसा का हृदय लोगों का दुख दर्द दूर करने में अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता था।
0: बिरसा मुंडा चटुपूर्ति गोत्र के थे, जिसके पूर्वज चटियार नगर में राज किया करते थे। बिरसा के लिए यह बड़े गर्व की बात थी, जिसने उन्हें कभी हीन भावना का शिकार नहीं होने दिया। उनके मन में राम कृष्ण ईसा मसीह के उपदेश गूंजते रहते थे। धीरे धीरे एक साधुवादी और समाजवादी धर्म गुरु के रूप में वे विकसित होते गए। उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। बिरसा को लोग उनके नए पंथ का भगवान मानने लगे और उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए कृत संकल्पित होते गए।
1: अब बिरसा मुंडा एक धार्मिक नेता थे और उनका प्रौढ़ होता मन समाज को बदलने का संकल्प ले रहा था। शीघ्र ही उनका आंदोलन धार्मिक आंदोलन से खेतिहर मजदूरों के राजनैतिक आंदोलन में बदल गया। जमीन और जंगल पर आदिवासी जनता का अधिकार मानते हुए जमींदारों के हक में बने कानून और मालगुजारी की वसूली को गैर कानूनी बताकर उन्होंने अपने अनुयायियों से मालगुजारी न देने की अपील की। वे गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को धार्मिक और राजनीतिक आधार पर हथियार बंद करने में जुट गए।
0: 22 अगस्त 1895 में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए, पर बाद में आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। अब उनका सुधारवादी व्यक्तित्व पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। अब वे धरती बाबा के नाम से जाने जाने लगे। उनका आंदोलन बिरसैत आंदोलन के रूप में विख्यात हो चुका था।
1: मुंडा समाज की बुराइयों, हंडिया, शराब पीना, डायन ओझा के अंधविश्वास और अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना आदि को दूर करने में वे जुट गए थे। साथ ही जनजातीय समाज की अस्मिता और संस्कृति को नष्ट करने वाले कारकों जैसे अंग्रेज सरकार और उनके देशी दलाल, धार्मिक संस्थाएं, जमींदार, राजा तथा जंगल के ठेकेदारों को जड़ से उखाड़ कर सिंह बोगा भगवान की इस धरती को स्वतंत्र कराने के संकल्प का प्रचार कर रहे थे।

0: इस बिरसैत आंदोलन का जनक था अंग्रेजों के शासनकाल में पनपा असंतोष, जिसकी जड़ में थे अंग्रेज सरकार के कानून, जिसके कारण सामूहिक खेती की उनकी खुटखुट्टी व्यवस्था का बर्बाद होना, जंगलों पर कानूनी बंदिशें लगने के कारण बने कानून जैसे आरक्षण और भू खेती की मनाही, क्षेत्र में बाहर से आने वाले यानी डाकू, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण और ईसाई द्वारा आदिवासियों का धर्म परिवर्तन।
1: बिरसैत आंदोलन के फलस्वरूप मुंडा आदिवासियों का पूरा इलाका जैसे खत्म हो गया। बिरसा की अगुवाई में मुंडा आदिवासी अपने हक के लिए उठ खड़े हुए।
0: 22 दिसंबर 1899 को आताताइयों के खिलाफ कोटगढ़ में मुंडाओं की महती सभा हुई, जिसमें 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के अवसर पर आताताइयों के खिलाफ मोर्चा लेने का संकल्प लिया गया। बिरसा इस आंदोलन को संचालन करने के लिए अज्ञातवास पर चले गए। 24 दिसंबर 1899 की मध्य रात्रि में सर्वदा बंडू, बरहू आदि स्थानों पर एक साथ हमला हुआ और बहुत से अंग्रेजों, पादरियों और उनके समर्थकों का कत्ल हुआ। अनेक घायल हुए, कई घर जला दिए गए। सशस्त्र क्रांति की यह पहली चिंगारी थी इस क्षेत्र में।

0: 8 जनवरी 1900 को 10 बजे रांची से आयुक्त और उपायुक्त फौज की एक टुकड़ी लेकर खूंटी पहुंच गए। भारी सेना के आगे भी हजारों बिरसैत अपने नायक बिरसा के संदेश की प्रतीक्षा में थे। उपायुक्त ने उनसे अपने परंपरागत हथियार डालकर अपना आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, पर बिरसैत नायक ने कड़कती आवाज में कहा, तुम सफेद चमड़ी वाले दीकू हमारे देश छोड़कर अपने देश वापस चले जाओ, हम हथियार नहीं डालेंगे।
1: उपायुक्त ने गोलीबारी के आदेश दे दिए और देखते ही देखते देशभक्त मुंडाओं के गर्म खून से डोमवारी पहाड़ी लवलुहान हो गई। पर अंग्रेज एसपी और उपायुक्त को बिरसा नहीं मिले तो नहीं मिले, उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया।
0: मुंडा को इटके गांव के पास पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दो सिपाहियों को मारकर और अपने दाहिने हाथ की बलि देकर वे वहां से भाग निकले, पर बंदगांव राजा के दलाल वीर सिंह महली ने पुरस्कार के लालच में धरती आबा को गिरफ्तार करा दिया।
1: 3 मार्च 1900 की रात में बिरसा गिरफ्तार किए गए। उन्हें गुप्त रूप से पालकी में बिठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के केंद्रीय कारागार लाया गया। पर्याप्त सबूतों के ना होते हुए भी न्यायाधीश काउंडर्स ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा शुरू कर दिया। पर 9 जून 1900 को केंद्रीय कारागार कक्ष में सिंहबुगा का पुत्र धरती आबा बिरसा मुंडा परम ज्योति में विलीन हो गया। उनकी पार्थिव देह धरती एंगा की गोद में समाहित कर दी गयी। बिरसा ने सुधारवाद क्रांति की जो मशाल जलाई, उसने आगे के समय में झारखंड प्रदेश के विभिन्न आंदोलनों का मार्गदर्शन किया। बिरसा का पार्थिव शरीर यदि भी पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु बिरसा धर्म आज भी जनजातीय जीवन में रच बस गया है और उनकी पवित्र आत्मदीप शिखा बनकर बिरसैतों का मार्गदर्शन कर रही है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद,
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: फ्रेम, बॉम्बे का वे गुप्त हथियार जो फ्लोटिंग ताबूत बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा अजीबोगरीब और विशाल गुप्त हथियार बनाया था जिसे एक महान और शक्तिशाली तैरने वाली मशीन कहा गया था। ये था फ्रेम, एक ऐसा जहाज जिसे बॉम्बे के गवर्नर चार्ल्स बून की हताशा ने जन्म दिया था। बून मराठा नौसेना और उसके महान सेनापति कान्होजी आंग्रे को नष्ट करने के जुनून में सवार थे। 1721 तक भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा समुद्री डकैती, जैसे कि वे कहते थे, को दबाने के प्रयास शर्मनाक विफलताओं की एक श्रृंखला बन चुके थे। बून ने फैसला लिया कि कोंकण तट के चट्टानी और ऊंचे किलों, जिन्हें भारतीय जिब्राल्टर कहा जाता था, को तोड़ने के लिए पारंपरिक युद्धपोत काफी नहीं थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फ्रेम का निर्माण कराया। क्या आप जानते हैं कि ये मशीन वास्तव में कैसी दिखती थी? ये आधा बेड़ा और आधा किला था। इसका निचला हिस्सा सपाट था ताकि ये केवल 6 फीट गहरे पानी में भी किनारे के करीब रेंग सके। इसके किनारे एक विशेष मिश्रण से बने थे जिसके बारे में दावा था कि वे पूरी तरह से कैनन प्रूफ, तोप के गोलों का असर ना होने वाले हैं। इसमें 12 विशाल तोपें लगी थीं जो 48 पाउंड के गोले दागती थीं, जो उस समय की मानक भारी तोप खाने के आकार से दोगुना था। फ्रेम को उस अचूक हथियार के रूप में देखा जा रहा था जो युद्ध को समाप्त कर देगा। 1721 में मराठों को मजबूत गढ़ घेरिया पर हमले के दौरान बड़े उत्साह के साथ इस मशीन को खींचकर मोर्चे पर लाया गया। अधिकारियों ने अपनी सांसें थाम ली और तोपों में आग लगा दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसने अंततः फायर किया तो क्या हुआ? किले की दीवारों को नष्ट करने के बजाय विशाल लोहे के गोले जहाज से थोड़ी ही दूर समुद्र में गिर गए। किसी ने इंजीनियरिंग की एक बड़ी गलती कर दी थी। तोप की गाड़ियां या तो बहुत ऊंची थीं या पोर्ट बहुत नीचे थे, जिससे तोपों को सही ढंग से निशाना साधना असंभव हो गया था। अपमानित अंग्रेजों के संशोधनों के लिए फ्रेम को वापस ले लिया, लेकिन दूसरा प्रयास और भी बदतर रहा। घेरिया का किला ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित था और फ्रेम एक सपाट निचली सतह वाला बेड़ा था। दूर से इसके गोले दुश्मन से ज्यादा ब्रिटिश लैंडिंग पार्टियों के लिए खतरा थे, और अगर ये बेहतर कोण पाने के लिए करीब जाता तो ये एक आसान शिकार बन जाता। क्या आप इसके कैनन प्रूफ कवच की विडंबना जानते हैं? जबकि इसके किनारे सीधे प्रहार को रोक सकते थे, इसके सपाट और भीड़भाड़ वाले डेक ऊपर से पूरी तरह असुरक्षित थे। मराठा रक्षकों ने बस बेड़े पर ऊपर से गोले बरसाए, जिससे उस पर सवार नाविकों को भारी नुकसान हुआ। वह शक्तिशाली मशीन अब एक तैरता हुआ ताबूत बन चुकी थी। फ्रेम की विफलता कंपनी के सैन्य इतिहास के अंधकार युग का एक सटीक प्रतीक है। एक ऐसा युग जो कुप्रबंधन से भरा था। इसके विलियम जेम्स जैसे पेशेवर नौसैनिक कमांडरों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को इन किलों को जीतने में 3 दशक से ज्यादा का समय लगा।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे बुंदेली गायन। कलाकार हैं आकांक्षा मिश्रा और उनके साथी।

0: ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में श्रृंखला संभावना के तहत।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुंदेली गायन बुंदेलखंड की माटी की सौंधी खुशबू लिए आल्हा, फाग, लमेटरा और दीवारी गीत इसमें प्रमुख होते हैं। यह छतरपुर सागर क्षेत्र में ढोलक और मृदंग की थाप पर गाए जाने वाले गीत और प्रेम, वीरता, विरह और त्योहारों को जीवंत करते हैं। बुंदेली बोली की मिठास और सहजता इसे सीधे हमारे दिल से जोड़ती है। ऐसे ही बुंदेली गायन को लेकर के हमारे बीच उपस्थित है आकांक्षा मिश्रा जी। उनका साथ दे रहे हैं अरमान विश्वकर्मा ऑक्टोपेट पर, धीरज कुमार साथ दे रहे हैं ढोलक पर, सतीश पांडेय साथ दे रहे हैं हारमोनियम पर और अब्दुल खान बेंजो पर साथ दे रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।
2: राम राम आप सभी जन का। हम आकांक्षा मिश्रा छतरपुर से अपने साथी कलाकारों के साथ आप सभी को बुंदेलखंड की कुछ झलकियां दिखाना चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड कितना मनमोहक है और कैसी कैसी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो सुने आप।

शारदा माई की जय हो। और जब कान्हा बचपन में रूठ गए माँ से कि हमें तो माँ चंद खिलौना चाहे और हम कौनों चीज से ना मांगे मान है सो कह रहे।

हिमकुंड के नाम से, वो क्षेत्र की खोज डिस्कवरी के चैनल के लोग आके कर गए, कहते को जो पानी आप वो कहाँ आ रहा और कहाँ तक ये को छोड़ है जा देखो, पर बे लोग भी पता नहीं लगा पाए, तो कहते

जाना चाहिए महुआ और चरवा के बारे में, जो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध मतलब फल कह लो या जो भी कहो आप, बहुत प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। सो कह हो जाते देखे महुआ और चरवा, देखे नदियाँ और नरवा, और हमारे बुंदेलखंड में

कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे आकांक्षा मिश्रा और उनके साथियों का बुंदेली गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कल्पना कीजिए 2300 साल पहले की एक ऐसी दुनिया की जहां समुद्र तल को शाही खजाने की तरह माना जाता था। मौर्य साम्राज्य के दौरान खन्याधक्ष यानी समुद्री खानों के अधीक्षक गोताखोरों की एक विशिष्ट टुकड़ी को हिंद महासागर की खतरनाक गहराइयों में उतारते थे। केवल पत्थरों के वजन और अटूट साहस के दम पर ये गोताखोर समुद्र की तलहटी से चंद्रमा के आंसू यानी बेशकीमती मोती निकालने के लिए डुबकी लगाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि यह केवल मछली पकड़ना नहीं था बल्कि एक परिष्कृत सरकारी उद्योग था। अधीक्षक विशाल बेड़ों और विशेष रिफाइनरियों का प्रबंधन करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर रत्न को उसकी चमक और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। शार्क से भरी मन्नार की खाड़ी से लेकर दूर दराज की चट्टानों तक इन जोखिम भरे अभियानों ने साम्राज्य की भव्यता को वित्त पोषित किया। यह एक खतरनाक लेकिन अत्यधिक लाभकारी सीमा थी जहां भारत ने पहली बार अथाह गहराइयों से तरल संपत्ति निकालने की कला में महारत हासिल की थी।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वामी जी के दार्जिलिंग में रहते समय जब सर्वप्रथम उनकी जाति च्युति को लेकर अशोभनीय वाद विवाद आरंभ हुआ, तब वे इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। और जानते भी कैसे, वे तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाकर मां काली का दर्शन कराए थे। वहां मंदिर के कर्मचारियों तथा विश्वास महाशय के पुत्रों ने उनके साथ प्रीति एवं श्रद्धापूर्ण व्यवहार ही किया था, अतएव उन्हें कैसे आन हो सकता था कि इसके बाद ही शत्रुगण एक काल्पनिक घटना रचकर कहेंगे कि समुद्र यात्रा के फलस्वरूप जातिच्युत हो जाने के कारण उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था।
1: और यदि सचमुच ही ऐसा हो जाता तो क्या इसमें स्वामी जी के कार्य में कोई स्थायी बाधा उत्पन्न हो जाती, या फिर क्या स्वामी जी का हृदय इससे कांप जाता? उनके परवर्ती काल के एक पत्र से पता चलता है कि वे इस प्रकार की अवज्ञा को किस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। स्टडी के कुछ मिथ्या आरोपों के उत्तर देते हुए उन्होंने 14 सितंबर 1899 ईस्वी को लिखा था,
2: भारत में अनेक लोगों ने यूरोपीय लोगों के साथ भोजन करने पर भी आपत्ति दिखाई है। मैं यूरोपियन लोगों के साथ खाता हूँ, इसलिए मुझे एक पारिवारिक देवालय से निकाल दिया गया था। मैं तो ऐसा नमनीय हो जाना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी इच्छानुसार मुझे मोड़ सके, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे देखने में नहीं आया जो सबको संतुष्ट कर पाया हो।
0: इस पत्र को पढ़ने से बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्वामी जी ने स्टडी को उल्टा जवाब देने के लिए तर्क के रूप में ही त्रैलोक्यनाथ विश्वास का काल्पनिक विवरण स्वीकार करते हुए लिखा था कि उन्हें एक पारिवारिक देवालय अर्थात रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर स्थित कालीबाड़ी से निकाल दिया गया था। परंतु इसके बाद 1898 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के समय उन्हें सचमुच ही उस मंदिर में प्रवेशाधिकार से वंचित कर दिया गया था। उत्सव के पूर्व ही विश्वास परिसर की यह मनसा जानकर 15 नवंबर 1897 ईस्वी को स्वामी जी ने लिखा था, इस बार महोत्सव होना तक असंभव है क्योंकि रासमणि के मंदिर उद्यान के मालिक मेरे विदेश हो जाने के कारण मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे।
1: स्वदेश और विदेश में इस प्रकार के विरोध और युक्तिहीन लोक निंदा की बातें सुनकर भी स्वामी जी ने निर्भीक हृदय के साथ मैरी को 9 जुलाई 1897 को लिखा था,
2: प्रिय मैरी, मेरे लिए भय बिल्कुल मत करना। कुछ भी हो, मैंने जितना कार्य किया है उसी से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने कभी मंसूबा बांधकर कुछ नहीं किया। चीजें जैसे जैसे सामने आती गईं, उन्हें मैं वैसे वैसे स्वीकार करता गया। केवल एक ही चिंता मेरे मस्तिष्क में दहक रही थी और वो ये कि भारतीय जनता को उन्नत करने वाले एक यंत्र को चालू कर दूं। इस कार्य में मुझे कुछ हद तक सफलता मिली है। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंद से प्रफुल्लित हो जाता कि किस प्रकार मेरे लड़के अकाल, रोग तथा दुख दर्द के बीच कार्य कर रहे हैं। हैजे से पीड़ित पैरिया की चटाई के पास बैठे उसकी सेवा कर रहे हैं, भूखे चंडाल के मुख में अन्न दे रहे हैं, प्रभु मेरी तथा उन सब की सहायता कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे क्या परवाह? क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूं और समस्त सांसारिक प्रपंचों की असारता जान चुका हूं। क्या मैं बच्चों की तोतली बोली सुनकर अपने मार्ग से हट जाऊंगा? मुझे देखकर क्या ऐसा ही लगता है?
0: स्वामी विवेकानंद का संन्यास ग्रहण करने के उपरांत हिंदू धर्म का प्रचारक होने का दावा करना, समुद्र यात्रा तथा विदेशियों का आहार ग्रहण करना आदि को केंद्र बनाकर देश विदेश में जो वाद प्रतिवाद अथवा शत्रु पीड़न का जो उत्साह दिख पड़ा था, उसी की चरम परिणति मिलती है कि प्रेमदा दास मित्र को लिखित स्वामी जी के 30 मई 1897 के पत्र में मेरी को लिखित पत्र में उत्तर है, उदासीनता है और विरोचित आत्मतुष्टि का भाव है। परंतु वे सब बातें प्रधानतः अमरीकी समाज को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। प्रेमदा दास बाबू को लिखित पत्र भारतीय परिवेश में एक सुशिक्षित पुरातन पंथी पुराने मित्र को उपदेश देने के निमित्त लिखा गया था। प्रेमदा दास बाबू को लिखा यही उनका अंतिम पत्र है। और इसी पत्र में हम ये भी देखते हैं कि जटिल प्राचीन समाज बातों में तो कट्टरता प्रदर्शित करता है, तदापि अंतर में पश्चिम की वाहवाही पाने को लालायित रहता है और व्यवहार में दुर्बल एवं दरिद्रों के शोषण में लगा रहता है। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट भाषा में अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए सब प्रकार से समझौता करके चलने की नीति पर मोटा पर्दा डाल दिया। उस पथ की इतिश्री हो गई। प्रमदा बाबू को लिखे उस पत्र के उल्लेखनीय अंश ये हैं।
2: सुनने में आया कि हिंदू धर्म के गोरे मिशनरियों के आप विशेष मित्र हैं और दुष्ट काले भारतवासी आपकी घृणा के पात्र हैं। जो मिल जाए सो खाता हूं, वो भी जिस तिस के साथ और सबके सामने, चाहे देश हो या परदेश। उपनिषद और गीता सच्चे शास्त्र हैं और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य नानक कबीर आदि सच्चे अवतार हैं, क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान अनंत थे। और भी एक विसंगति है, दिन पर दिन मेरी ये दृढ़ धारणा होती जा रही है कि जाति बोध ही सर्वाधिक भेद उत्पन्न करने वाला और माया का मूल है। चाहे जन्मगत हो या गुणगत, हर प्रकार का बाहर का जाति भेद बंधन ही है। कोई कोई मित्र सुझाते हैं कि वो मन में रहे, पर बाहर के व्यवहारिक जगत में तो जाति आदि को बनाए रखना होगा। मन नहीं, मन अभेद, बुद्धि और बाहर पिशाच का नृत्य, अत्याचार, उत्पीड़न और गरीबों के लिए साक्षात यम, जाति आदि पागलपन के विचार केवल पुरोहितों द्वारा लिखित ग्रंथों में ही पाए जाते हैं, ईश्वर प्रणीत ग्रंथों में नहीं। पुरोहितों के पूर्वजों के कर्मों का फल पुरोहित ही भोगें। मैं तो ईश्वर की वाणी का अनुसरण करता हूं, उसी से मेरा कल्याण होगा। एक और बात मेरी समझ में आई है कि परोपकार ही धर्म है और बाकी याग यज्ञ इत्यादि सब पागलपन है। अपनी मुक्ति की इच्छा भी अनुचित है। जिसने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे दिया है वही मुक्त होता है, और जो लोग मेरी मुक्ति रटते हुए दिन रात सिर खपाते हैं वे इतो नष्ट स्ततो भ्रष्टः बनकर भटकते रहती हैं। ऐसा भी अनेकों बार मेरे देखने में आया है।
1: सभी दृष्टियों से एक सुंदर उत्तर है। शास्त्र दर्शन युक्त व्यवहारिकता और नवीन युग दर्शन, इसमें सब कुछ है। और मजे की बात तो ये है कि प्रतिपक्ष की ओर से जो लोग शूद्र नरेंद्र नाथ को धराशायी कर सच्चे धर्म की विजय पताका को उड़ते देखने को ठान कर युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, योगेंद्र नाथ बसु, त्रैलोक्यनाथ विश्वास, प्रमदा दास मित्र, बैरोज, वे सभी अब्राह्मण थे। वैसे तो ये पत्र जन साधारण के लिए प्रकाशित होने की संभावना न थी, फिर भी परवर्ती युग के भारतीय परिदृश्य में स्वामी जी को समझने के लिए ये अमूल्य है। पश्चिम में भी ठीक ऐसा ही एक सर्वांग सुंदर उत्तर मिलता है। डॉक्टर जेन्स को लिखित श्रीमती ओली बुल के 7 जून 1897 के इस पत्र में।
3: कैलिफोर्निया के अखबार की कटरन के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बैरोज ने छप इतने स्पष्ट भाषा में विवेकानंद को मिथ्यावादी कहकर निंदा की और इस कारण उन पर यह आरोप लगा है कि वे जानबूझकर मद्रास में डॉक्टर बैरोज से नहीं मिले, तब डॉक्टर बैरोज के ही भले के लिए मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि वे उन सुप्रचारित स्वागत सूचक पत्रों का बिल्कुल भी उल्लेख न करते तो अच्छा होता, जिनमें स्वामी जी ने हिंदू से अनुरोध किया था कि डॉक्टर बैरोज का हिंदू धर्म अथवा उनके अपने धर्म के बारे में चाहे जो भी अभिमत हो उन पर विचार न कर उपयुक्त सद्भाव पूर्ण ढंग से उनका वैसा ही स्वागत किया जाए जैसा कि डॉक्टर बैरोज और श्री बोनी ने शिकागो में एकत्र प्राच्य प्रतिनिधियों के प्रति सदैव व्यवहार किया था, जिस समय समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व आंतरिकता एवं उत्साह के साथ स्वामी का स्वागत करने को तैयार हो रहा था। उस समय उनके प्रचारित पत्रों के साथ जब हम स्वदेश लौट कर कैलिफोर्निया में ठिया खाए डॉक्टर बैरोज के विवेकानंद संबंधी व्यक्तित्व की तुलना करते हैं तो उनमें कैसा विपरीत भाव दिखाई देता है। भारतीय जनता के मूल्यांकन करने के लिए दोनों व्यक्तियों का कैसा विपरीत चित्र उपस्थित करता है।
0: श्रीमती बुल ने डॉक्टर जेन्स को खेद जताते हुए बहुत लंबा खत लिखा था, जिसमें स्वामी जी के प्रति लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इस प्रसंग के अंत में हम स्वामी जी के 3 मार्च 1898 के एक पत्र का अंश भी उद्दात करना चाहेंगे कि जिसमें यह स्पष्ट होता है क्यों वे बैरोज साहब से बिना मिले ही मद्रास चले गए थे और उस समय वे कितना अस्वस्थ थे। उन्होंने लिखा था,
2: लंदन से लौटकर जब मैं दक्षिण भारत में था तो शरीर में शक्ति का पूर्ण हास तथा चरम अवसाद आ गया और मुझे तुरंत मद्रास छोड़कर अपेक्षाकृत ठंडे उत्तरांचल में जाना पड़ा। एक दिन भी विलंब करने का अर्थ होता उस भीषण गर्मी में और भी एक सप्ताह जहाज के लिए प्रतीक्षा करना। खैर, मुझे बाद में पता चला कि अगले दिन श्री बैरोज मद्रास पहुंचे और अपनी अपेक्षा के अनुसार मुझे वहां ना पाकर बड़े नाराज हुए। वैसे मैंने वहां उनके स्वागत तथा आवास का प्रबंध कर दिया था। उन बेचारे को क्या मालूम कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था।
1: बैरोज के लिए लिखे गए अभिनंदन पत्र पर स्वामी जी का भी हस्ताक्षर था और उनका नाम देखकर और भी अनेक हिंदू सज्जनों ने उस पर दस्तखत किए थे।
0: एक वर्ग के लोगों ने जातिवाद के आधार पर स्वामी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, तथापि उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु संपूर्ण देश में और विशेषतः त्रावणकोर राज्य में उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के लोग जिस प्रकार पीड़ित किए जा रहे थे उससे वे विचलित हुए थे और उसे दूर करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। इसलिए हम देखते हैं कि 3 अप्रैल 1897 को वे निवेदिता के नाम पर पत्र में लिखते हैं,
2: भारत की पीड़ित जनता के लिए तुम कर सको ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्य का मुझे अभी अभी पता चला है। जिन सज्जन को तुमसे परिचित कराने का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया है वे मालाबार केरल के एक देशी राज्य तिया जाति के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में हैं। तिया लोग एक निम्न जाति के हैं। तुम्हें इन सज्जन से पता चलेगा कि केवल जाति के कारण ये बेचारे गरीब लोग कैसे सताए जाते हैं। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के कारण भारत की अंग्रेज सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। एकमात्र ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उनकी आशा है। इस बात को ब्रिटेन के जनसमाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार तुम जो भी कर सको करो।
0: इसी समय एक दिन स्वामी जी माताजी तपस्विनी के आमंत्रण पर शिष्य शरद बाबू को लेकर महाकाली पाठशाला के निरीक्षण के लिए गए। विद्यालय की शिक्षा प्रणाली देख स्वामी जी संतुष्ट हुए। लौटते समय वार्तालाप के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए मठों की स्थापना करने के साथ ही साथ नारी मठ स्थापित करने की भी इच्छा है। वहां पर ब्रह्मचारिणी व सन्यासिनी सुशिक्षित बनकर नारी जाति की उन्नति व शिक्षा के लिए प्रयत्न करेंगी।
1: उन्होंने और भी कहा था कि वे जातीय आदर्श के अनुसार जीवन जीने की कोशिश न करते हुए भारतीय स्त्रियों को अभी से जातीय भाव में शिक्षा देना ही कर्तव्य है। वे शिक्षित होकर अपने भले बुरे को स्वयं ही समझ लेंगी। इसके लिए पुरुषों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है और कर्म क्षेत्र में नारी की स्वाभाविक दक्षता स्वतंत्र रूप में यदि राष्ट्र की उन्नति के लिए नियुक्त हो तो कल्याण होगा। इन दिनों स्वामी जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। अल्मोड़ा जाने से पहले उन्होंने 28 अप्रैल को मैरी को लिखा था,
2: मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल सफेद हो रही हैं, मुख पर चारों ओर झुर्रियां पड़ गई हैं और शरीर का मांस घट जाने से मेरी आयु और भी 20 वर्ष बढ़ गई प्रतीत होती है। अब मैं दिन पर दिन तेजी से दुबला होता जा रहा हूं। उसका कारण ये कि मुझे केवल मांस खाकर रहना पड़ रहा है। रोटी नहीं, भात नहीं, आलू नहीं, इतना ही क्या, अब मैं एक बड़ी दाढ़ी रख रहा हूं जिसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। हे सफेद दाढ़ी, तुम कितनी ही चीजें छुपा सकती हो, धन्य हो तुम।
1: अल्मोड़ा जाने से एक दिन पहले यानी 5 मई को स्वामी जी ने श्रीमती बुल को लिखा था,
2: अपने बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मैं एक महीना दार्जिलिंग में था। अब मैं काफी अच्छा हो गया हूँ। दार्जिलिंग में रोग पूरी तौर से भाग गया। स्वास्थ्य को पूरा ठीक करने के लिए कल मैं अल्मोड़ा नामक एक अन्य पहाड़ी स्थान में जा रहा हूँ।
0: दोनों पत्रों को एक साथ पढ़ने से पाठकों को सहज ही प्रतीत होगा कि स्वामी जी ने यद्यपि अपने स्वस्थ हो जाने की बात लिखी है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे रोग, शोक, आपत्ति, विपत्ति आदि की विशेष परवाह नहीं करते थे। अतः भयानक रोग को भी कुछ नहीं कहकर उड़ा देना उनके लिए असंभव न था। वस्तुतः इसी आयु में बालों का पक जाना और आटा, चावल, आलू तथा मीठी चीजों का निषिद्ध हो जाना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यद्यपि उन्होंने दार्जिलिंग में रोग मुक्त होने तथा अल्मोड़ा में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की बात लिखी थी, तथापि चिकित्सकों के उनके सहमत न होने के यथेष्ट कारण थे। उन लोगों ने स्वामी जी को ग्रीष्म काल में समतल में न रहकर पहाड़ों में बिताने की सलाह दी थी।
1: 6 मई को उन्होंने अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया। कुमारी मूलर पहले ही भारत पहुंच चुकी थीं और स्वामी जी की यात्रा के पूर्व ही वे गुडविन के साथ देहरादून होते हुए अल्मोड़ा पहुंच चुकी थीं। स्वामी जी के आगमन की संभावना जानकर अल्मोड़ा वासियों ने इसमें विशेष उत्सुकता दिखाई और आग्रह पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया।
0: अल्मोड़ा जाते समय लखनऊ में उनके अनुरागी मित्रों तथा भक्तों ने उनका सादर स्वागत किया और उन्होंने भी एक दिन वहां ठहरकर विश्राम किया। लखनऊ से ट्रेन में यात्रा कर हिमालय के द्वार पर स्थित काठगोदाम स्टेशन 9 मई पहुंचने पर पता चला कि उन्हें साथ ले जाने को अल्मोड़ा से गुडविन आए हुए हैं। आलम बाजार मठ से स्वामी जी योगानंद भी स्वामी जी के साथ आए हुए थे।
1: अल्मोड़ा के निकट लोदिया नामक स्थान में 11 मई को पहुंचने पर एक विशाल जनसमूह ने जय ध्वनि के साथ स्वामी जी का हार्दिक स्वागत किया। ये लोग स्वामी जी के लिए एक सुसज्जित घोड़ा ले आए थे, उसी के पीठ पर उन्हें बैठाकर एक शोभा यात्रा और अविराम जय ध्वनि के साथ लोग उन्हें नगर की ओर ले चले।
0: सभा स्थल में पहुंचने पर देखा गया कि वहां लगभग 5,000 लोग एकत्र हो गए हैं।
1: ऋषि मुनियों की निवास भूमि, आध्यात्मिक संपदा तथा माओं से परिपूर्ण गिरिराज हिमालय के साथ स्वामी जी का बचपन से ही एक तरह का घनिष्ठ लगाव था। अतः इन मान पत्रों का उत्तर देते हुए उन्होंने हिमालय का गुणगान करते हुए वहां एक आश्रम स्थापित करने की अपनी आंतरिक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा,
2: यह हमारे पूर्वजों के स्वप्न का प्रदेश है। भारत जननी श्री पार्वती की जन्मभूमि है। ये वो पवित्र स्थान है जहां भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। यह वही भूमि है जहां निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यकाल से ही करता रहा हूं। मेरे मन में इस समय हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है और संभवतः मैं आप लोगों को भलीभांति ये समझाने में समर्थ हुआ हूं कि क्यों मैंने अन्य स्थानों की तुलना में इसी स्थान को सार्वभौमिक धर्म शिक्षा के एक प्रधान केंद्र के रूप में चुना है। इन पहाड़ों के साथ हमारी जाति की श्रेष्ठतम स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यदि धार्मिक भारत के इतिहास से हिमालय को निकाल दिया जाए तो उसका थोड़ा ही बचा रहेगा। अतएव यहां एक केंद्र अवश्य होना चाहिए। यह केंद्र केवल कर्म प्रधान न होगा बल्कि यहां निस्तब्धता, ध्यान तथा शांति की प्रधानता होगी और मुझे आशा है कि एक न एक दिन मैं इसे रूपायित कर सकूंगा।
0: इन्हीं दिनों स्वामी शिवानंद अल्मोड़ा में तपस्या कर रहे थे। वे भी स्वामी जी के साथ आ मिले। और भी जो गुरु भाई या शिष्य स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा आए थे अथवा बाद में आकर उनसे मिले थे या फिर कुछ दिनों बाद उनके उत्तर भारत के भ्रमण के दौरान उनके संगी हुए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी योगानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी अद्वितानंद तथा स्वामी विज्ञानानंद। ये सभी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और स्वामी सदानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी शुद्धानंद, ब्रह्मचारी कृष्णलाल तथा श्री जे जे गुडविन, ये सभी स्वामी जी अथवा उनके गुरु भाइयों के शिष्य थे।
1: आर्य समाज के भूतपूर्व प्रचारक स्वामी अच्युतानंद भी कुछ काल तक स्वामी जी के साथ रहे। ये श्री रामकृष्ण संघ के न थे और उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इनमें जब जो लोग अल्मोड़ा में रहते, स्वामी जी दल के साथ आमोद प्रमोद में दिन बिताते। व्यायाम तथा स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त वे घोड़े पर चढ़कर दूर दूर तक भ्रमण करते। 29 मई को उन्होंने कलकत्ता के चिकित्सक डॉक्टर शशि भूषण घोष को लिखा था,
2: सुबह शाम घुड़सवारी के रूप में मैंने यथेष्ट व्यायाम प्रारंभ कर दिया है और इसके फलस्वरूप मैं सचमुच ही काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
0: अल्मोड़ा पहुंचकर शहर में कुछ दिन बिताने के बाद गर्मी के कारण वे वहीं से 20 मील दूर देवलधार नामक अपेक्षाकृत ठंडे स्थान में स्थित लाला चिरंजी लाल के एक उद्यान में चले गए। वहां प्रचुर मात्रा में फल, विशेषकर खुबानी होने के कारण वे उन्हीं को खाते तथा नैनीताल से अन्य प्रकार के फल भी मंगा लेते। ये सारा संवाद देते हुए उन्होंने डॉक्टर साहब को अंत में लिखा था,
2: इस समय मैं अपने आप को खूब बलवान महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर, आजकल जब मैं बर्फ से ढके पर्वत शिखरों के सम्मुख बैठकर उपनिषद के अंशों का पाठ करता हूँ, उस समय तुम यदि काश एक बार मुझे देख पाते। रामकृष्ण मिशन की कलकत्ते की सभाओं की सफलता की खबरें पाकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ। जो लोग इस महान कार्य में सहायक हो रही हैं, उनका सर्वांगीण कल्याण हो।
0: शारीरिक अस्वस्थता के कारण हिमालय पहाड़ के निर्जन फलोद्यान में दिन बिताने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। वहां रहकर भी वे इन बातों पर विचार करते और दूसरों को परामर्श भी देते। स्वामी जी ब्रह्मानंद के नाम लिखे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है। उस समय वे कलकत्ते के पास एक स्थायी मठ निर्माण के लिए आवश्यक धन के बारे में सोच रहे थे। कभी मुर्शिदाबाद जिले में चल रहे अकाल राहत कार्य के बारे में सलाह देते, मद्रास में शुरू किया गया केंद्र के लिए असिस्टेंट की बातें सोचते थे। मेरी हेल्बास्टर को लिखे 2 जून के पत्र में लिखा,
2: अल्मोड़ा के एक व्यापारी के एक सुंदर उद्यान में हूँ। परसों रात एक चीता यहाँ धमका और बाग में रखे झुंड में से एक बकरा उठा ले गया। मिस मूलर की तुम्हें याद है ना, कुछ दिन रहने के लिए वे यहाँ आई हुई हैं, परंतु चीते वाली घटना सुनकर डर सी गई हैं।
1: देवलधार के उद्यान में कई सप्ताह बिताने के बाद 19 जून को वे अल्मोड़ा लौट आए। स्वयं को उस समय वे काफी स्वस्थ अनुभव कर रहे थे, तथापि संगीगण उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ नहीं मानते थे। अल्मोड़ा निवास के दौरान वे स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप करते और अनेक देशी विदेशी मित्रों को पत्र लिखकर अपने विभिन्न भावी कार्यों के विस्तार हेतु क्षेत्र तैयार करते। वैसे उस समय भारत में होने के कारण भारतीय कार्य ही प्रधानतः उनके मन पर अधिकार जमाए हुआ था और इस विषय में उनका मत था,
2: कर्म कर्म कर्म, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पोथी पत्र विद्या योग ध्यान और ज्ञान प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान है। प्रेम में ही अणिमादि सिद्धियां हैं, प्रेम में ही भक्ति है, प्रेम में ही ज्ञान है और प्रेम में ही मुक्ति है। यही तो पूजा है, मानव रूपधारी ईश्वर की पूजा। ये तो आरंभ मात्र है। इसी प्रकार क्या हम संपूर्ण भारत पृथ्वी भर में नहीं छा जाएंगे?
0: इन्हीं दिनों स्वामी जी की सफलता पर जलते हुए कुछ लोगों ने उन पर चौतरफा आक्रमण चलाया था। स्वामी जी ने इस पर मेरी को पत्र लिखकर कहा था,
2: मैं समझ रहा हूं कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। जीवन के अधिक से अधिक 3-4 वर्ष बचे रहे हैं। अपनी मुक्ति की इच्छा अब मुझमें बिल्कुल नहीं है और सांसारिक सुख की कामना तो मैंने कभी की नहीं। मैं अपने यंत्र को खूब सशक्त रूप से शुरू हो गया देखना चाहता हूं और जब मैं निश्चित रूप से समझ लूंगा कि मानव जाति के कल्याणार्थ मैंने एक ऐसा यंत्र अंततः भारत में चालू कर दिया है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, तब भविष्य की चिंता छोड़कर मैं सो जाऊंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बारंबार जन्म लेकर हजारों दुख भोगता रहूं ताकि समस्त आत्माओं के समष्टि रूप अपने उस एकमात्र ईश्वर की पूजा कर सकूं जो सचमुच विद्यमान है और जिन पर मुझे विश्वास है। सर्वोपरि सभी जातियों तथा सभी वर्णों के पापी तापी तथा निर्धन रूपी ईश्वर ही मेरे विश्वास तथा उपास्य हैं।
0: अल्मोड़ा में इसी प्रकार कई दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को वे पुनः देवलधार गए। सेवियर दंपत्ति उस समय शिमला में थे, मिस मूलर अल्मोड़ा में थी और गुडविन स्वामी के आदेश पर मद्रास चले गए थे।
1: इसी काल में एक अन्य पत्र में स्वामी जी की स्वभाव सुलभ निर्भीक सत्यवादिता का उदाहरण मिलता है। कुमारी मैकलाउड भारत आना चाहती थी। स्वामी जी ने उन्हें इसके लिए सस्नेह आमंत्रित किया था, तथापि अपने 10 जुलाई के पत्र में उन्होंने भारतीय हालात तथा उसके साथ पाश्चात्य जीवनधारा के मापदंड के पूर्ण पार्थक्य के विषय में एक ऐसा सटीक तथा निरावरण चित्र खींचा था जो केवल स्वामी जी के लिए ही संभव था। उन्होंने लिखा था,
2: जैसे भी बने तुम यहाँ आ जाओ, केवल इतना ही स्मरण रखना कि यूरोपीय तथा भारतीय का साथ रहना तेल तथा जल के समान है। नेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना यूरोपीय लोगों के लिए एक बड़ी भयानक बात है। सर्वत्र धूल कीचड़ और काले आदमी, परंतु दार्शनिक चर्चा करने वाले लोग भी तुम्हें अनेक मिलेंगे।
0: अनुरागी भक्तों को वे चाहते थे, परंतु मिथ्या आशा के धोखे में रखकर नहीं। निवेदिता के भारत आने के पूर्व उन्होंने उन्हें भी ठीक इसी प्रकार या इससे भी स्पष्ट रूप से सावधान कर दिया था। कहना न होगा कि इस प्रकार जान सुनकर भी इन दो महामना महिलाओं ने यहां आकर भारत की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। इन दोनों महान महिलाओं ने भारत के सर्वहारा वर्ग के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। उनके चरणों में हमारा कोटिशः प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: प्राचीन विश्व के जहाजों की रंग कला के नियम। प्राचीन भारत में आपके जहाज का रंग कोई फैशन पसंद नहीं था, ये एक कानून था। नौसेना निर्माण पर लिखे गए मध्यकालीन ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के अनुसार जहाजों की पेंटिंग के लिए कड़े कानूनी कोड नियम थे, जो जहाज की विशिष्ट संरचना पर आधारित होते थे। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जहाज का रंग हर किसी को ये बता देता था कि उसमें कितने मस्तूल लगे हैं। यदि आपके जहाज में एक मस्तूल था तो उसका निचला हिस्सा नीला होना अनिवार्य था, दो मस्तूल वालों के लिए पीला, तीन मस्तूल के लिए लाल, और यदि आप चार मस्तूलों वाले विशाल जहाज के कप्तान थे तो उसे शुद्ध सफेद रंग में रंगा जाता था। रंगों के अलावा इन जहाजों के अगले हिस्से पर शेर और सांपों जैसी भयंकर सजावट भी की जाती थी। यह एक जीवंत कानूनी व्यवस्था थी जिसने प्राचीन हिंद महासागर को समुद्री शक्ति के चलते फिरते इंद्रधनुष में बदल दिया था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाएंगे दो प्रस्तुतियां, जिसमें पहले आप आनंद लेंगे बनारस के गायक आशीष मिश्रा के गायन का। उसके बाद सितार की दिलकश प्रस्तुति होगी, जिसे पेश करेंगे नीलाद्रि कुमार। तो लीजिए पेश खिदमत है गायन आशीष मिश्रा का।
1: राग भोपाली में शिव जी की कुछ रचना है, उससे प्रारंभ करते हैं, फिर ठुमरी दादरा

0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आशीष मिश्रा के गायन को सुनने के बाद अब वक्त हो चला है वादन की प्रस्तुति का, और आज हमने आपके लिए चुना है सितार वादन। तो लीजिए, अब सितार पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेर रहे हैं नीलाद्री कुमार।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नीलाद्री कुमार का सितार वादन। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत कार्यक्रम भारत भारती से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं?
2: हाँ?
3: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में, सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटता ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है। एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने न जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: उफ़ साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
5: मालूम है भाई साहब। रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वाले

0: सुनो ना, सॉरी, सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ? मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
1: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
1: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझकर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
1: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
1: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
2: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
1: वाह वाह, संकट
0: सोलर
1: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
1: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
1: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए हैं, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
1: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो? अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
1: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
1: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
1: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको? क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
1: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: जल्दी।
1: हाँ,
0: ये लीजिए।
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ,
0: बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का?
1: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
1: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
1: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो जी।
1: हाँ।
0: एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
1: उससे क्या होगा, क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
1: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
1: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
1: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
1: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
1: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
1: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
1: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में, अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
1: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
1: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
1: क्या
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा,
1: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करम का तैसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी जी जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो दास हुए।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुन, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो, ये देखो लॉ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए भाई, खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते, उसे पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है, आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है, पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए, पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी,
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी? अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बड़ा?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आंच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ,
0: है?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: एक जैसी
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी।
3: वाह।
0: और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े।
3: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है। इसी बात को साहेब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, वाहन चोरी की घटनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनती जा रही हैं। यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी, जहां की पुलिस बहुत ही कुशल मानी जाती है, ये घटनाएं कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अमेरिका में तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कारें चोरी हो जाती हैं और इंग्लैंड में हर 5 मिनट में एक कार चोरों के हत्थे चढ़ जाती है। चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि वे सभी सिक्योरिटी डिवाइस को धत्ता बता करके कार उड़ा ले जाते हैं। तो लीजिए, हमारा आज का यह नाटक हाजिर है एक ऐसी ही कार चोरी की काल्पनिक घटना पर, जिसमें चोरों व पुलिस के बीच लगातार आंख मिचोली होती रहती है। इसमें आय स्थानों के नाम और पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, तथा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की भी चर्चा की गई है जो भविष्य में विकसित हो सकती है और कहीं जगह तो हो भी गई ही है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, आपको सावधान करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हास्य नाटक कार की चोरी।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि
1: अरे यार कौन सा सेंट लगाया है आज तुमने, बड़ी महक रही हो।
2: छोड़ो ना सेंट वेंट तुम भी है? अरे अभी देखो दुकान देखते चलते हैं। हाँ, यहाँ रोक दो गाड़ी।
1: अरे यहाँ कहाँ जा,
2: रोको ना, वो देखो कहाँ बड़े चले जा रहे हो, रोको ना।
1: एक मिनट,
2: कहाँ बड़े चले जा रहे हो, रोको ना।
1: अरे गाड़ी भी तो लगानी है भाई, कि तुम कहो तो कार समेत दुकान में घुस जाए।
2: अरे इसीलिए तो कह रही थी लगा देते ना दुकान के सामने, जगह थी तो। अब इतनी दूर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता, पेंसिल हिल पहनती हूँ ना।
1: अरे हाँ इतनी मोटी हो और उसके ऊपर पेंसिल हिल, अरे यार तुम भी ना पैर में मेहंदी लगाकर घर से निकलती हो, चाहती हो पूरी मार्केटिंग कार में बैठे बैठे ही हो जाए, एक कदम भी पैदल ना चलना पड़े।
2: तो ये भी कौन सी समझदारी है भाई कि दुकान सामने हो और कार एक मील ले जाकर पार करें और उसके बाद जॉगिंग करते हुए यहाँ तक आए। घर के काम काज में इतनी जॉगिंग हो जाती है हमारी, वो ही बहुत है भाई।
1: कोई शौक वॉक नहीं है मुझे तुम्हारे जॉगिंग वॉगिंग कराने का, कायदे से चलते तो बनता नहीं, जॉगिंग करेंगे हाथ पकड़ कर टोचर न लगाओ तो जाने कहाँ छूट जाए क्वीन विक्टोरिया।
2: सही कहा तुमने, ऐसे घसीटते हो जैसे ये भी नहीं सोचते कि आदमी और औरत की चाल में अंतर होता है। तुम्हें हमारी तरह साड़ी तो नहीं संभालनी होती ना
1: जी।
2: हाँ बस लगते हो अपने साथ दौड़ाने मुझे।
1: अरे माफ करो यार, माफ करो भाई, गलती हो गई यार, जो बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। कार लगाने के लिए दाएं बाएं थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए यार, टर्निंग वर्निंग करनी होती है, ऊपर से नो पार्किंग जोन था वो, पता चला इधर हम लोग दुकान में घुसे और उधर ट्रैफिक पुलिस आई और ले गई गाड़ी को उठा के।
2: अरे तो पार्किंग में ही खड़ी कर दो ना, पास ही में तो है।
1: अच्छा यार बड़े अच्छे, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बात कि पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी होती हैं।
2: मजाक मत करो।
1: हाँ बताने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
2: जब देखो तब है ना टोंटी मारते रहते हो मुझे, तुम्हें याद दिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या?
1: नहीं नहीं पर
2: नहीं, सोचते हो सारी अकल तो बस तुम्हारे ही पास है, बाकी सबका तो ऊपर चैम्बर खाली है।
1: देखो मैडम बाकी सबका तो मैं नहीं जानता, पर आपके ऊपर जरूर फिट बैठती है ये बात। इतनी खूबसूरती देकर भी जब उसने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा।
2: अच्छा।
1: और हाँ, और अब दिन भर मेरा भेजा खाती रहती हो।
2: अच्छा जी, भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अच्छा किया जो वो भूल गया, नहीं तो
1: क्या जी है? क्या बिगड़ जाता उसका अगर तुम्हारे भेजे में जरा सा भेजा भी डाल दिया होता, दुनिया में भेजे की कमी थोड़ी पड़ जाती इससे। अरे इतना भेजा तो मेरे भेजे की खुरचन से ही निकल आता।
2: जरूर निकल आता, तुम्हारे जले हुए भेजे से खुरचन के सिवा भला और निकल ही क्या सकता है। पर नहीं, वो भी नहीं निकाली उसने, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
1: अच्छा बताएंगी? नहीं वो वजह मुझे
2: अब रहने दो, मत ही पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
1: टूटने दो दिल, कोई परवाह नहीं, पर सच्चाई तो अब हम जानकर ही मानेंगे।
2: अब ठीक है, तुम इतना ही जिद करते हो तो ये राज भी हम आज बता ही देते हैं तुम्हें।
1: हाँ बताओ ना, मैं भी जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ।
2: तो सुनो जी।
1: बताओ जी।
2: एक बात बताओगे
1: जी?
2: बिना भेजा भेजे तुमने मुझसे शादी क्यों की?
1: अरे तुम्हारी खूबसूरती देखकर। अरे बेवकूफ जो बन गया था, क्या जानता था कि बिना भेजे की लड़की
2: क्या?
1: ये तो वही हाल हुआ कि हार्डवेयर तो टिप टॉप है पर सॉफ्टवेयर नदारद। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर और बिना भेजे की लड़की।
2: बहुत सही, पर एक बात और बता दो कृपा करके।
1: वो क्या?
2: अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: क्या मतलब? कुछ रेफरेंस तो दो कि किस किस किस बाबत पूछ रही हो तुम
2: रेफरेंस।
1: हाँ।
2: अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि कोई भेजे वाली लड़की क्या तुमसे शादी करती? टिकट तो ले लो स्टैंड वाले से, नहीं तो क्या सबूत रहेगा तुम्हारे पास कि तुमने कार यहाँ खड़ी की थी?
1: अरे सुनो भाई, यार टिकट तो दो।
3: अरे हाँ हमें है ना भाई मियाँ, अरे फिकर क्यों करते हैं आप, आपकी गाड़ी जैसी खड़ी है वैसी ही मिलेगी।
1: पर भाई टिकट देने में तुम्हें क्या परेशानी है, कम से कम कोई सबूत तो होना चाहिए हमारे पास कि हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी।
3: अरे सबूत हम है ना खा, वो क्या है ना कि टिकट की कट्टी खत्म हो गई है, प्रिंट में गई है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: पर आप फिक्र ना करिए बिल्कुल भी, आपकी कार को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा अल्लाह की कसम।
2: सुनो इधर सुनो सुनो, हाँ, हाँ, मैं तो कहती हूँ कि कार यहाँ लगाओ ही मत, सामने वाले स्टैंड में चलते हैं ना। अरे सुनो, ये इंसान मुझे ठीक नहीं लगता, बातें लच्छेदार कर रहा है मगर ये है नंबर एक का मक्कार।
1: अरे यार तुम औरतों को भी ना शक करने की बड़ी बुरी बीमारी होती है, किसी पर विश्वास ही नहीं करती। ठीक है ठीक है, सुनो भाई हमें 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, ध्यान रखना हमारी गाड़ी का।
3: अरे जी साहब आप बेफिक्र हो जाइए ना साहब, आपकी गाड़ी की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, अरे मजा लेके कोई स्क्रेच भी आ जाए।
2: सुनो जी, हाँ? तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना
1: क्या?
2: पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है,
1: क्यों?
2: लग रहा है कि ये,
1: अरे यार काहे खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो, कहीं स्टैंड से भी गाड़ी इधर उधर होती है क्या? इतने दिन से लगा रहा हूँ यहाँ गाड़ी, कभी टिकट मिलता है कभी नहीं मिलता, अभी ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है यार।
2: अच्छा ये सब नियम कायदे फॉर्मेलिटीज लगते हैं तुमको? अरे ऊपर से खुद को बड़ा भारी नॉलेज टैंक मानते हो, जरूरी नहीं कि जो कल नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा, सब दिन जात ना एक समाना।
1: यार तुम औरतें भी ना, अच्छा छोड़ो ये सब, इसी फिक्र में घुलते रहे तो मार्केटिंग भी नहीं हो पाएगी।
2: बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ चलते चलते, अब इतना बोझ लेकर कार तक भी चलो, नहीं मुझसे नहीं उठता इतना भारी थैला, तुम ही उठाओ ना।
1: अरे यार मेरे दोनों हाथ पहले से ही फुल हैं, एक जरा सा थैला नहीं उठाते बनता तुमसे, ऊपर से मार्केटिंग का भूत है कि उतरता ही नहीं है। खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, जरूरत हो चाहे ना हो पर चीज दुकान में टंगी है तो खरीदना तो है आपको, उठाने के लिए एक नौकर तो साथ में है ही आपके।
2: फिर शुरू हो गए ना तुम, आज का दिन ही मेरा खराब है, आज सुबह से ही जैसे लड़ने पर उतारू हो तुम।
1: क्या
2: ठीक है मत उठाओ, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ।
1: मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, अपना खुद का वजन तो उठा ही नहीं उठता और कहती हो, अरे कभी देखा है अपने आपको? अरे चंपा का फूल थी जब मैं लेके आया था और अब सूरजमुखी का फूल बन चुकी हो।
2: फूल तो है ना कोई कम से कम तुम्हारी तरह बबूल का कांटा तो नहीं है, जो महकता तो बिल्कुल भी नहीं, बस चुपता ही रहता चुपता ही रहता चुपता ही रहता है।
1: अरे गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है क्या?
2: मेरे पास कहाँ दी थी तुमने?
1: अरे वो शायद मैंने तुम्हें अरे वहाँ अंदर क्या देखो यार, तुम्हारे पर्स में होगी।
2: अरे मैं वहाँ तक कहाँ गई थी, मैं तो यहीं खड़ी थी ना, तुम पार्किंग में गए थे तो।
1: अरे हाँ ये मिल गई,
2: हाँ वही तो।
1: अरे यार ये पीछे चली गई थी वो, हाँ। अरे कार कहाँ चली गई?
2: क्या
1: यही तो खड़ी की थी यार। अरे सुनो भाई।
3: हाँ भाई।
1: अरे यार हमारी कार नहीं दिख रही है, इसी जगह खड़ी की थी।
3: अरे हाँ भाई मैं अगर खड़ी की थी तो जरूर होगी, जाएगी कहाँ? अरे ठीक से देखिए देखिए जरा।
1: क्या ठीक से देखूं? क्या देखूं ठीक से? अरे यहीं खड़ी की थी यार, बिल्कुल इसी जगह पर। अरे कार कोई कागज का पन्ना है कि इधर उधर उड़ जाएगा?
3: अरे तो मैं कब कह रही हूँ कागज का पन्ना है, कार ही थी लेकिन कहीं और खड़ी करी होगी, देख लो जरा।
1: अरे नहीं भैया मैंने बिल्कुल इसी जगह खड़ी की थी।
3: नहीं नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं।
1: तो फिर क्या है आपका मतलब?
3: मेरा मतलब है कि कहीं आपने वो सामने वाले स्टैंड पर तो नहीं खड़ी कर दी।
1: अरे क्या पागल समझ रखा है तुमने मुझे, यही स्टैंड था और यही तुम थे, टिकट मांगने पर बोले थे ना कि मैं हूँ ना साहब, और अब गाड़ी नहीं मिल रही है तो कह रहे हो कि ये ऐसा है।
3: भाई खान जरा लिमिट में बात कीजिए अपन से।
1: क्या मतलब?
3: हमारे स्टैंड का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकली।
1: अरे मैं क्या जानू तुम्हारे रिकॉर्ड फिकॉर्ड को, पर मेरी गाड़ी तो गई ना।
2: अब दिखा।
1: अरे टिकट भी नहीं है कि इनको
2: दिखाओ ना, अब दिखाओ होशियारी, कुछ समझाओ तो कहोगे कि।
1: अरे यार तुम भी,
2: ये आदमी मुझे ठीक पहले से ही नहीं लग रहा था मगर नहीं।
1: अरे चुप रे भाई, एक तो ऐसे ही अकल चकरा रही है, ऊपर से तू है कि बड़बड़ बड़बड़। बीमा भी रिन्यू नहीं कराया था, गए 4 लाख, अब बैंक वाले चमड़ी उधेड़ कर किस्त वसूलेंगे।
2: ऐसे कैसे गए, मैं हूँ ना गवाह।
1: हाँ,
2: मैं हूँ ना। अरे यही खड़ी करी थी कार और इस आदमी ने टिकट देने से मना किया था।
3: ए महोत्रे माँ, आदमी औरत की गवाही का कोई मतलब नहीं होता, समझिए आप। ऐसे तो मैं भी स्टैंड के 10 लोंडे खड़े करके कहलवा दूंगा यहाँ पर कि आपने अपनी कार यहाँ खड़ी नहीं की थी और मैं भी अल्लाह की कसम यहाँ पर मौजूद नहीं था, कह दूंगा।
2: अरे ऐसे कैसे। अब सुनो जी, चलो चलते हैं पुलिस के पास।
1: हाँ,
2: ये ऐसे नहीं मानेगा।
1: चलो चलो
2: चलो।
3: अरे हाँ, जाइए जाइए, देख लेंगे।
4: अरे जमाल, जरा इसको पकड़ और इसकी जरा धुनाई तो लगा रहे। ले जा इसको।
1: मैं कमीन सर। सर सुनिए, एक मिनट सर,
4: एक मिनट एक मिनट, आप अभी बैठिए, पहले इनसे निपट लें फिर आपसे बात।
1: अरे सर, हमारा बहुत अर्जेंट मामला है सर।
4: अर्जेंट तो क्या, यहाँ सभी का मामला अर्जेंट रहता है, थाने में कोई शेर करने थोड़े ही आता है।
1: अरे सर, मगर अगर देर हो गई तो शहर से बाहर निकल जाएंगे वो।
4: अरे कौन शहर से बाहर निकल जाएगा, कोई तुम्हारा कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया है क्या।
1: अरे सर, मेरे लिए तो मेरी कार ही बिल्कुल कोहिनूर है, पार्किंग पर से पता नहीं कौन उठा के ले गया। हाँ जी,
4: कार थ्रेफ्ट का मामला है।
1: हाँ जी, जी।
4: कार की उम्र, हुलिया, कोई फोटो वोटू है उसका।
1: हुलिया, ये क्या पूछ रहे हैं सर आप, मेरी बीवी नहीं, कार है वो, कार।
4: अरे भाई, उम्र तो सभी की होती है, चाहे कार हो या बीवी। हाँ, बीवियां अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरा छुपा कर रखती हैं, पर कार के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि हम तो कहेंगे कि कार बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही परचेज की जाती है।
1: क्या कह रहे हो साहब।
4: हाँ, और हुलिया भी उसका जरूर होता है, जैसे रंग, रूप, मेक, मॉडल, कंपनी का नाम वगैरह।
1: हाँ, हाँ।
4: और हाँ, सबसे खास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब आप बताइए।
1: देखिए देखिए सर, ये लीजिए, ये एप्लीकेशन लिखकर मैं पहले ही लाया हूँ, सारा डिटेल लिखा है इसमें, ये देखिए।
4: ठीक है,
1: रंग रोगन सब है।
4: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो लगी थी ना गाड़ी में।
1: हाँ सर, और वो क्या कहते हैं, GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा रखा है सर। हाँ जी,
4: फिर चिंता की कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी पूरी दुनिया में ढूंढ निकालेंगे हम।
1: वेरी गुड सर, वेरी गुड।
4: स्टैंड वाले, इधर आ जरा।
3: जी जी।
4: क्यों बे, ये स्टैंड तेरा ही है क्या।
3: हाँ साहब, ठेकेदार का, लेकिन अपन अपने ही समझते हैं साहब।
4: अच्छा तो बेटा, कैसे निकल गई साहब की कार यहाँ से।
3: कार? अरे हाँ हवलदार साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो इन साहब ने कोई कारवां नहीं खड़ी करी हमारे पास, और अगर की थी तो टिकट तो होगा इनके पास।
1: अरे सर सर, ये देखिए, आप झूठ बोल रहा है, ये टिकट मांगा था मैंने मांगा था, और पर इसने बोला कि टिकट का कट्टा खत्म हो गया है, प्रिंट में गया है, और जिम्मेदारी भी ली थी इसने कार की। ये हमारी मैम साहब से पूछो आप।
2: हाँ सर, मेरे सामने की बात है, कह रहा था कि कार को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता यहाँ, और अब जब कार गायब हो गई है तो ये बड़ा स्मार्ट बन रहा है।
3: नहीं साहब, नहीं साहब।
2: हाँ,
3: ये दोनों मियाँ बीबी मुझे खाली पीली में फंसा रहे हैं।
1: क्या कह रहा है,
3: कहीं नो पार्किंग वगैरह में खड़ी कर दी होगी इन्होंने, और वहां से हो गई गायब, और अब सब मुझ गरीब से वसूली करना चाहते हैं, सब देखो दाद होती है तो।
4: अच्छा, तो तूने नहीं कहा था कि टिकट का कट्टा खत्म हो गया है, प्रिंट में गई है।
3: नहीं साहब, बिल्कुल नहीं किया था मैंने, भला मेरे को कहूंगा ऐसा, मेरे को कहूंगा। ये देखिए आप, ये देखिए, इतनी सारी टिकट की गड्डियां पड़ी है, ढेर लगा पड़ा है।
1: अरे तो ये बात है सर, सर ये बहुत मक्कार झूठा है, टिकट का कट्टा इसके पास है, फिर भी मुझसे झूठ बोला कि कट्टा खत्म हो गया।
3: नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, ये झूठ मूठ का मुझे फंसा रहा है, यकीन मानिए आप।
4: अबे मैं तो तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, वो तो क्या है ना कि कोई शिकायत नहीं आती थी मेरे पास, अब चल तुझे बताता हूँ मैं, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा पता कर रहा हूँ, ले चलो इसको थाने, अब वहीं से बात होगी। चले।
3: अरे ये क्या कर रहे हैं साहब हवलदार खान? अब मेरे ठेकेदार को अभी आप जानते नहीं है।
4: अच्छा, कोई मंत्री मंत्री है क्या तेरा ठेकेदार?
3: जनाब मंत्री मंत्री तो नहीं है, पर मगर क्या है कि वर्दी उतरवाने का दमखम रखते हैं।
4: अबे वर्दी उतरवाने का दम रखते हैं? उसके बाप ने दी है क्या ये वर्दी मुझे? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कार तूने ही उठवाई है। चोरों से मिला हुआ है तू। चल थाने वहीं निकालता हूँ तेरे पेट से अब सारे रात। चल।
3: अरे अरे साहब बाल तो छोड़िए, अरे कॉलर पकड़ लीजिए, लेकिन गिरेबान तो छोड़िए साहब। अरे कर क्या रहे साहब।

0: चलो स्टैंड से तो पार हो गई गड्डी।
1: हाँ,
0: आप किसी तरह गराज भर में और पहुंच जाए। उफ, ये हाई सिक्योरिटी प्लेट ना लगी होती ना इसमें तो कुछ मुश्किल ना होती।
2: सही है बॉस, लेकिन जो करना है जल्दी करो बॉस। एक बार पुलिस के पास पहुंच गए ना वो तो चारों ओर नाकेबंदी शुरू हो जाएगी।
0: नहीं रे, इतनी तेज नहीं है इंडिया की पुलिस, वो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का डर है। पुलिस वालों ने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, बस एक बार कहीं 5 मिनट रुककर ये जीपीएस जैमर इंस्टॉल कर दूं ना इसमें तो ढूंढते रह जाएंगे सबके सब।
2: यस,
1: आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भयंकर नॉलेज है बॉस। अपनी बिरादरी में तो इतना नॉलेज देखने को ही नहीं मिलता।
0: बेटे इंजीनियरिंग पढ़ी है, इंजीनियरिंग चाहता तो कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेता, पर क्या करूं, रिसेशन के कारण नौकरी नहीं मिली, मजबूरी में पापी पेट के कारण ये सब करना पड़ रहा है। मुझे कोई शौक थोड़ी है ये चोर पुलिस का खेल खेलना।
2: तुसी ग्रेट हो बॉस, मेरी तो तकदीर ही खुल गई तुम्हारा शागिर्द बनके।
0: बस बस, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये देखना है जैमर कहां फिट किया जाए।
2: बॉस इस गली में मोड़ लो, इसकी भीड़ भाड़ में कैमरे ठीक से कैच नहीं कर पाएंगे इसे, और फिर भीतर उस कुलिया में आप जैमर फिट कर लेना।
0: जैमर तो फिट हो गया। आप करते रहे ट्रेस गड्डी को, यार गाड़ी तो झक्कास है।
2: हाँ बॉस,
0: 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए।
2: अरे बिल्कुल।
0: और सुन,
2: हाँ?
0: कुछ गड़बड़ हुई ना तो कवाड़ी को दे देंगे। लाख रुपए तो वो भी दे ही देगा।
2: हाँ बॉस,
0: घंटे भर में सारे नट बोल्ट खोलकर ऐसा हाल कर देगा इसका कि इसका मालिक भी इसे नहीं पहचान पाएगा।
3: अजी सुनिए, क्या नाम है आपका?
4: सुनील सर। सुनील।
3: हाँ सुनील जी, देखिए अब आप चिंता ना करें, आपकी कार की सारी जानकारी कंट्रोल रूम को दे दी गई है।
4: वेरी गुड सर।
3: जल्द ही कार की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। बस अब एक काम करें आप, आप उस मॉनिटर के सामने जाकर बैठ जाएं।
4: अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप है? चोर हमारी गाड़ी उड़ाए जा रहे हैं और आप हैं कि हमसे कंप्यूटर गेम खेलने को कह रहे हैं।
3: अरे नहीं भाई नहीं, ये गेम नहीं है, टेक्नोलॉजी है
4: जी।
3: हाँ, अब चोर पकड़ने के लिए पुलिस गली गली में उसका फोटो लेकर नहीं घूमती, अब तो बस फोटो कंप्यूटर में डाल देते हैं और सर्च का बटन दबा देते हैं।
4: इतनी एडवांस हो गई है सर अब इंडिया की पुलिस।
3: हाँ।
4: विश्वास नहीं होता।
3: विश्वास हो जाएगा भाई, बस थोड़ा कोऑपरेट करो हम लोगों के साथ।
5: लग रहा है चोर बड़े माहिर हैं भाई, उन्होंने कार में जीपीएस जैमर इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए गाड़ी ट्रेस नहीं हो पा रही है।
4: क्या कह रहे हो सर?
5: एक काम करता हूँ
4: जी, जी।
5: हाँ, पर ये देखिए हमारे कैमरे पकड़ रहे हैं कार को। यही नंबर है ना आपकी गाड़ी का, लास्ट में 5219?
4: हाँ सर, यही है सर।
5: ये देखिए कैमरा, ये कैमरा नंबर B5 शो कर रहा है।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ।
5: अभी 2 मिनट पहले ही गाड़ी गुजरी है यहाँ से।
4: अच्छा,
5: पर अब कहाँ गई होगी? समझते नहीं था, शायद बाईपास की ओर बढ़ गई है
4: जी।
5: हाँ, पर थोड़ी देर बाद ही हमारे कैमरों की रेंज भी खत्म हो जाएगी।
4: फिर गई सर गाड़ी, गई फिर।
5: पर परेशान नहीं हो, ये गाड़ी जाएगी कहाँ? पुलिस से बचकर जाना इतना आसान थोड़े ही है, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसे
4: जी।
5: हाँ, पर काम जरा मुश्किल हो गया है। अब शहर से निकलने से पहले ट्रेस हो जाती तो यही घेराबंदी करके पकड़ लेते।
4: और अब क्या होगा सर?
5: अरे आप चिंता ना करें, अभी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए गाड़ी को निकले। भाई 100 की स्पीड से भी निकली होगी
4: हाँ?
5: तो भी 16-17 किलोमीटर से ज्यादा तो जा नहीं पाई होगी
4: जी। जी,
5: नाकेबंदी कर देते हैं।
4: हाँ जी।
5: अरे सर प्लीज ऐसा कीजिए कि रहीमगंज को भी मैसेज कर दीजिए।
4: हाँ, हाँ।
5: नाकेबंदी अलर्ट कर देंगे वो। और हाँ, टोल टैक्स वालों को भी अलर्ट कर दीजिए।
3: हेलो हेलो, रानी सराय टू रहीमगंज। हेलो। हाँ देखिए, मैं थाने से बोल रहा हूँ।
6: जी श्रीमान जी, बोलिए।
3: एक कार है।
6: हाँ।
3: जी जी, नोट करें
6: जी।
3: सफेद रंग।
6: हाँ।
3: मॉडल चाल्टो।
6: जी जी
3: जी, नोट किया सर।
6: जी श्रीमान जी।
3: अच्छा, धन्यवाद।
6: ओके सर।
3: अब देखिए जनाब, कुछ ही देर में आपकी कार आपके हाथ में होगी।
4: हाथ में होगी?
3: मेरा मतलब है कि आपके पास होगी।
7: अच्छा।
2: पीछे लग गई है।
0: अरे पीछे नहीं लगी रे, आगे लगी है। रहीमगंज थाने पर चेकिंग चल रही है, देख नहीं रहा है आगे कैसा जाम लगा हुआ है?
2: हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बॉस कि हम पकड़े जाएंगे।
0: अरे पकड़े कैसे जाएंगे, अकल क्या पुलिस वालों के पास ही है?
2: अब तो फिर क्या करोगे बॉस?
0: तू तो देखता जा, ऐसे ही नहीं तेरा बॉस हूँ मैं।
2: ये क्या बॉस, ये रास्ता तो
0: तू क्या सोचता है कि रोड पर खड़ी पुलिस से कहूं कि आजा भाई आ हमें गिरफ्तार कर ले, हमने कार चुराई है? गधे कहीं के।
2: बॉस इस नंबर प्लेट का कुछ नहीं हो सकता, पहले तो हम लोग कितनी आसानी से इसे बदल दिया करते थे, फर्जी कागज भी बना दिया करते थे, पुलिस चेकिंग के बीच में भी हम लोग मूछ पर ताव देकर निकल जाते थे।
0: यही तो प्रॉब्लम है मेरे शागिर्द, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी ना हम चोरों के खिलाफ एक गहरी साजिश है।
2: हाँ बॉस
0: धंधे पर चोट है सीधे सीधे ये, पर क्या करें, हमारी कोई यूनियन भी तो नहीं है कि हमारी आवाज उठाए वो और सरकार को बताए कि इस तरह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
2: बॉस इसे बदलने की कोई तो टेक्निक होगी।
0: टेक्निक तो है, प्लेट तो मान लो किसी तरह हम बदल भी देंगे, पर ये जो विंड स्क्रीन पर जो स्टिकर चिपका है ना।
2: हाँ बॉस।
0: सबसे बड़ा जी का जंजाल ये है, इसके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी करो तो ये नष्ट हो जाती है, फिर तो हम सीधे सीधे पकड़ में ही आ जाएंगे।
2: इसका कोई तोड़ क्यों नहीं है बॉस अपने पास, आखिर अपने पेशे में भी तो एक से बढ़कर एक रिसर्च रोज हो रहे हैं।
0: अबे वो भी निकल आएगा कभी ना कभी, पर अभी तो नहीं है।
2: क्या करें बॉस।
7: श्रोताओं रहीमगंज में घंटों गाड़ियों की चेकिंग होती रही, पुलिस ने एक एक करके सभी गाड़ियों की तलाश ली। इस बीच कई अनसुलझे रहस्य सुलझ गए, घरों से भागी हुई लड़कियां पकड़ी गईं, कई युवक युवतियां चेहरे छुपाते हुए नजर आए, हवाला व्यापार के करोड़ों रुपए पकड़े गए। पूरे देश में रहीमगंज पुलिस की शोहरत फैल गई। वहां के थाना प्रभारी मूछों पे ताव दे करके मीडिया को इंटरव्यू देते रहे, पर हाय रे सुनील, उस बेचारे का 4 लाख का कोहिनूर यानी कार नहीं मिली। रानी सराय की पुलिस परेशान थी क्योंकि कार उसके इलाके से चोरी हुई थी, पर रहीमगंज की पुलिस खुशी से नाच रही थी। सुनील से किसी को कुछ लेना देना नहीं था, सबको चिंता अपने अपने थाने की थी।
8: आखिर गाड़ी गई कहां?
9: सर मैं तो बराबर मॉनिटर पर नजर रखे हूं, पर गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही है।
8: तो फिर आखिर गाड़ी गई कहां? जब इसी रास्ते से निकली तो रहीमगंज से क्यों नहीं गुजरी? ऑपरेटर तुम जरा स्क्रीन पर देखो, चेक अच्छे से चेक करो कहां गई।
9: हाँ सर मुझे लगता है गड्डी बीच में कहीं मुड़ गई है। अब पर समस्या ये आ रही है कि जीपीएस जैमर के कारण जीपीएस सिस्टम भी इसे ठीक से ट्रेस नहीं कर पा रहा है।
8: अरे तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा है अब? वो यूं ही हमारे इलाके से गाड़ी उड़ाकर ले जाएंगे और जनता को हम पुलिस वालों पर थू थू करने के लिए छोड़ जाएंगे।
9: नहीं सर एक रास्ता है सर।
8: हे तू जल्दी बोलो।
9: सर गूगल अर्थ का एक सिस्टम है, इंडिविजुअल ट्रैकिंग सिस्टम यानी ITS।
8: अच्छा।
9: इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन सर इसमें एक समस्या है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है।
8: अरे तो फिर क्या फायदा, फिर तो परमिशन लेते लेते ही गाड़ी बिक बिका जाएगी।
9: नहीं सर इसमें भी एक प्रोविजन है कि पब्लिक इंटरेस्ट का अगर काम है तो पुलिस इसका इस्तेमाल पहले कर ले और परमिशन बाद में ले ले।
8: अच्छा फिर तो बात बन जाएगी, तो करो इस्तेमाल इसका, परमिशन बाद में ले लेंगे। क्या हुआ नहीं दिख रही गाड़ी?
9: सर ITS में गाड़ी का नंबर तो डाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम केवल 5 किलोमीटर के रेडियस में ही एक्शन कर सकता है, इसलिए बार बार एरिया कोड बदल रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ सर।
8: लगे रहो भाई, मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
9: सर सर ये देखिए। हाँ? ये रही गाड़ी की लोकेशन।
8: अरे वाह
9: महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। मगर अब अपनी नजर में तो है, जिधर जिधर से भी गुजरेगी हमारा सिस्टम इसकी लोकेशन बताता रहेगा सर।
8: अब देखते हैं ये चोर बचकर कहां जाएंगे। मैसेज करता हूं अभी उस इलाके के थाने को। हेलो
6: जी श्रीमान जी, रहीमगंज थाना।
8: हाँ, नोट करें गाड़ी का नंबर।
6: जी
8: नंबर है 5219, रंग है सफेद। दूरी यही कोई 8 किलोमीटर है आपके थाने से।
6: बहुत अच्छे श्रीमान जी।
8: और जनाब गाड़ी की स्पीड 60-70 के लगभग है।
6: जी
8: बस 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी, आप बेरियल लगा दीजिए।
6: श्रीमान जी रिपीट, गाड़ी नंबर 5219 श्रीमान जी।
8: जी 5219 सफेद रंग की है।
6: जी सर,
8: बेरियल लगवाइए जल्दी से।
6: जी जय हिंद।
8: जय हिंद।
9: अब सर मैं कंप्यूटर पर ही बैठा रहूंगा और लोकेशन देता रहूंगा उन लोगों को।
8: हाँ ये भी ठीक रहेगा।
10: रुक जाए, रुकता कि नहीं। हाँ सर, गाड़ी साइड में लगा।
11: सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, सर मुझे जाने दीजिए सर। ये देखिए मेरे दोस्त की तबीयत खराब है सर।
10: तबीयत तो तेरी और तेरे दोस्त दोनों की अभी हम ठीक करते हैं। वो क्या है कि वो थाने में भी एक हाई फाई हॉस्पिटल होता है, जैसे हम लोग हवालात कहते हैं, उसमें लात घूसों से इलाज किया जाता है, समझा? फोर्स ट्रीटमेंट। और तू क्या सोचता है कि स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो तू सेफ हो गया है?
11: नहीं, ये सर हमारी गाड़ी है सर।
10: ये तेरी गाड़ी है
11: जी?
10: पेपर निकाल।
11: हाँ है
10: पेपर
11: जी,
10: जरा दिखा मेरे को।
11: अरे सर वो कागजात सर, मैं सर दोस्त को जल्दी हॉस्पिटल लेने के ले जाने के चक्कर में।
10: बेटा अब मुझे भी जल्दी है तुम दोनों को हवालात ले चलने की। और हाँ, वो गाड़ी मालिक भी आ ही रहा होगा अभी।
11: हैं? गाड़ी मालिक इतना फास्ट सर?
10: अरे तो तू क्या सोचता है कि बस चोर ही फास्ट होते हैं? और पुलिस तो स्पीड ब्रेकर पर चलती है। अबे इंडिया की पुलिस है ये, समझा? कोई ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ये चोरी ढूंढने में जितना पैसा खर्च होगा उतने से फरियादी को नई कार ही खरीद कर दे दो। अरे हम तो 1 रुपया की चोरी पकड़ने के लिए भी 1 लाख भी खर्च कर दे तो कम नहीं है, पर चोर को पूरा पकड़ कर ही मानते हैं।
11: सर ये पहले ही बता दिए होते ना।
7: तो श्रोताओं, ये था हाईटेक टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारा हास्य नाटक कार की चोरी, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
12: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 121 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं इंद्र अथवा विश्वेदेवा, छंद है त्रिष्टुप।
3: कदित्था नृम पात्रम देवयताम श्रवद्गिरो अंगिरसाम तुरण्यन् प्र यदानं विष आहर्म्यस्योरु क्रंसते अध्वरे यजत्रह। मनुष्यों को संरक्षण प्रदान करने वाले इंद्रदेव शीघ्रता से देवत्व पद पाने के इच्छुक अंगिरसों की प्रार्थनाओं को इस प्रकार कब सुनते हैं, इसका सुनिश्चित ज्ञान नहीं। लेकिन जब स्वीकार करते हैं तब प्रजाजनों के घर में स्थित यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर उनकी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करते हैं। स्तंभिद्ध द्याम स धरुणम पुरुषायद्रिभुर वाजाय द्रविणम नरो गोह अनुस्वजाम महिश्चक्षत राम मेना मश्वस्य परिमातरम गोह। निश्चित ही उन्हीं सूर्य रूप इंद्रदेव ने द्युलोक को स्थिरता प्रदान की है। तेजस्वी रश्मियों के प्रकाशक ये इंद्रदेव सर्वत्र अन्न उत्पादन के लिए जल को बरसाने के माध्यम हैं। वे महान सूर्यदेव अपनी कन्या देवी उषा के पश्चात प्रकाशित होते हैं तथा वे शीघ्र गतिशील चंद्रमा की पत्नी रात्रि को प्रकाश किरणों की माता बनाते हैं। नक्षद्धव मरुणी पूर्व्यम राट तुरो विषामंगिरसा मनुद्यून तक्षद्वज्रम नियुतम तस्तंभद द्याम चतुष्पदे नर्याय द्विपादे। श्रेष्ठ मनुष्यों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले आंगिरसों के ज्ञाता सूर्यदेव नित्य ही उषाओं को प्रकाशमान करते हुए श्रेष्ठ स्तुति रूप वाणियों से सम्मानित होते हैं, वंदनीय होते हैं। साथ ही वे इंद्रदेव वज्र को तेजधार युक्त करते हैं तथा संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त वे दिव्य लोक को स्थिरता प्रदान करते हैं। अस्य मदे स्वरियम दा रिताया पीवृत मुस्रियाणा मनीकम यद्ध प्रसर्गे त्रिक कुम्नी वर्तदप द्रुहो मानुषस्य दुरो वह। हे इंद्रदेव, इन प्रार्थनाओं से प्रशंसित होकर आप रात्रि में छिपी हुई प्रकाशमय किरणों के समूह को यज्ञ संपादन के लिए प्रकट करते हैं। जब तीनों लोकों में सर्वोत्तम इंद्रदेव युद्ध में तत्पर हो जाते हैं तब वे द्रोहियों के लिए पतन का मार्ग खोल देते हैं। तुभ्यं पयो यत् पितरा वनीताम् राधः सुरे तस्तुरणे भुरण्यु शुचि यत्ते रेक्ण आयजन्त सबर्दुघायाः पय उस्रियायाः। जब मनुष्य उत्तम दुधारू गौओं के पवित्र घृत दुग्धादि से आपके लिए यज्ञ करते हैं, तब हे इंद्रदेव शीघ्रता पूर्वक क्रियाशील आपके लिए भरण पोषण करता माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी ऐश्वर्य प्रद और श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता से युक्त वृष्टि रूप जल को बरसाते हैं। अधप्रजज्ञे तरणिर ममत्तु प्ररोच्यस्या उषसो न सूरः इंदुर्ये भिराष्टे स्वे दुहव्यैः स्रुवेण सिंच जनरणाभि धाम। जिस प्रकार सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं, वैसे ही दुखनाशक इंद्रदेव भी उषाओं के निकट प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ मधुर पदार्थों की हवि प्रदान करने वाले यजमानों द्वारा इंद्रदेव के लिए यज्ञ स्थल पर स्रुवा पात्र से सोमरस प्रदान किया जाता है। ऐसे सोम से अभिषिंचित होकर वे प्रसन्न हों। स्विद्मा यद वनधि तिरपस्यात् सूरो अध्वरे परिरोधना गोह यद्ध प्रभासी कृत्वाम अनु द्यून नर विषे पश्विषे तुराय। जब प्रकाशित सूर्य किरणों के माध्यम से मेघ जल वर्षण करते हैं, तब इंद्रदेव यज्ञार्थ किरणों के अवरोध को दूर कर देते हैं। हे इंद्रदेव, जब आप सूर्य रूप में किरणों का संचार करते हैं, तब गाड़ीवान पशुपालक तथा गतिशील पुरुष अपने कार्यों की पूर्ति के लिए तत्पर होते हैं। अष्टा महो दिव आदो हरि इह द्युम्ना साहमभि योधान उत्सम हरिम यत्ते मंदिनम दुक्षन वृधे गोर भस मद्रिभिर वाताप्यम। हे इंद्रदेव, जब यज्ञकर्ता मनुष्य आपके संवर्धन के लिए उत्तम आनंदप्रद गाय के दूध से मिश्रित और शक्तिप्रद सोम को पत्थरों द्वारा कूट पीस कर बनाते हैं, तब विस्तृत दिव्य लोक को संव्याप्त करने वाली आपकी अश्वरूपी किरणें हविरूप सोमरस को यहां आकर ग्रहण करें। आप वृष्टि अवरोधक तत्वों को हटाकर तेजस्वी जलधाराओं को चारों ओर बरसाएं। त्वमायसं प्रति वर्तयो गोर दिवो अश्मान मुपनीत मृभ्वा कुत्साय यत्र पुरुहूत वन वंचुक्षण मनंतैहि परियासि वधैहि। अनेकों द्वारा आवाहित हे इंद्रदेव, जब आप कुत्स के संरक्षण के लिए शुष्ण दानव को विभिन्न शास्त्रों का प्रहार करके नाश करते हैं, तब सभी निर्भय होकर चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। उस आक्रांता के हनन के लिए आप ऋभु द्वारा स्वर्गलोक से लाए गए पत्थर और लोहे से निर्मित अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हैं। पुरा यत् सूरस्त मसो अपीतेस्त मद्रिवः फलिगम हेतिमस्य शुष्णस्य चित्परिहितं यदोजो दिवस्परि सुग्रथितं तदादह। जब वज्रधारी इंद्रदेव ने बादलों को नष्ट करने वाले शस्त्र का प्रहार किया, तब सूर्यदेव मुक्त हुए। हे इंद्रदेव, आपने शोषण करने वाले असुर शुष्णु का जो बल द्युलोक को घेरे हुए था उसे नष्ट कर दिया। अनुत्वा महि पाजसी अचक्रे द्यावा क्षामा मदता मिंद्र कर्मन त्वं वृत्र माशयानं सिरासु महो वज्रेण सिश्वपो वराहुम। हे महान सामर्थ्य से युक्त इंद्रदेव, सभी ओर संव्याप्त द्युलोक और भूलोक ने आपके कार्य के प्रति आभार प्रकट किया। तब प्रोत्साहित होकर आपने विशाल वज्र द्वारा वृत्र को जल में ही सुला दिया। त्वमिंद्र नरियो याम अवो नृंतिष्ठा वातस्य सुयुजो वहिष्ठान यम ते काव्य उषना मंदिनम दाद वृत्रहणम।

0: वेगवान घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर आप मनुष्यों के हित चिंतकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। त्वं सूरो हरितो रामयो नृन्भरचक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्य पारं नवतिं नाव्यानामपि कर्तमवर्तयो यज्ञून। हे इंद्रदेव, आप प्रकाशमान सूर्यदेव के समान ही मनुष्यों की हितकारक और रसों को अवशोषित करने वाली रश्मियों को आलोकित करते हैं। आपके रथ का चक्र सदैव गतिमान रहता है। नौकाओं से लांघने योग्य 90 नदियों के पार यज्ञ विरोधियों को फेंक कर आपने विलक्षण कार्य संपन्न किया है। त्वं नो अस्या इंद्र दुर्हणाया पाहि वज्रिवो दुरितादभि के प्रनो वाज्यान्रथ्यो अश्वबुद्ध्यानिशे यंधि श्रवसे सूनृतायै। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिन्हें अति प्रयास पूर्वक ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसे दुर्गतिकारक पाप कर्मों से हमें बचाकर संरक्षित करें। युद्ध भूमि में भली प्रकार से हमारी रक्षा करें। हमें यश बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त व्यवहार के निमित्त रथ और अश्वों से युक्त ऐश्वर्य संपदा प्रदान करें। मा सा ते अस्मत सुमतिर् वि दशद्वाज प्रमह समिशो वरंत आ नो भज मघवन गोश्वरियो महिष्ठास्ते सधमादह स्याम। अपनी सामर्थ्यों से स्तुति योग्य हे इंद्रदेव, आपकी विवेक युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में अभाव न हो। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के अन्न एवं धन को अर्जित करें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप हमें गोधन से परिपूर्ण करें तथा आपकी महिमा को बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रहकर आनंदित हों।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 121 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। कल्पना आत्मा का नेत्र है।

ईश्वर ही हमारा आश्रयदाता है और शक्तिदाता भी। वही आपातकाल में हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।

ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है।

जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब निकल जाते हैं।

जो मनुष्य इस सत्य को पहचान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है, वह मनुष्य जल्द ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेता है।

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास पलटकर देखने वालों को इशारे से बुलाता है पास और दे देता है समय का संदूक जिसमें आज भी जीवित हैं स्मृतियां। इतिहास दोहराया नहीं जाता, लिखा जाता है बार बार नई दृष्टि, नए तेवर और नई भाषा में। कोई भी मानव सभ्यता अपने इतिहास को जाने बिना स्वयं को नहीं जान सकती। इतिहास हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है। इतिहास हमें हमारी जड़ों की ओर ले चलता है और गुजरे कल के आईने में हम अपनी असली तस्वीर देख पाते हैं। इस तरह इतिहास हमसे हमारा परिचय करवाता है तथा वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए हमें तैयार करने में मदद करता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे इतिहासकार और पुरातत्वविद की जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मोहन जोदड़ो की खोज कर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वो महान पुरातत्वविद और इतिहासकार थे राखालदास बंदोपाध्याय। राखालदास बंदोपाध्याय का जन्म 12 अप्रैल सन 1885 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। राखालदास बंदोपाध्याय अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत भाषा का भी गहन अध्ययन किया था। राखालदास बंदोपाध्याय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ अध्ययन के दौरान ही उनकी भेंट महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री और सुप्रसिद्ध लेखक रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी से हुई। पंडित हरप्रसाद शास्त्री एक शिक्षा शास्त्री, संस्कृत के विद्वान, भारतविद तथा बांग्ला साहित्य के इतिहासकार थे। इन विद्वानों के सानिध्य ने उनके मन में इतिहास और पुरातत्व के प्रति विशेष रुचि पैदा कर दी। उन दिनों बंगाल सर्किल के पुरातत्व अधीक्षक थे डॉक्टर टी ब्लॉक। राखालदास बंदोपाध्याय जब डॉक्टर ब्लॉक के संपर्क में आए तो उनके साथ अवैतनिक सहायक के रूप में जुड़ गए। अनेक अन्वेषणों और उत्खननों में उन्होंने डॉक्टर ब्लॉक के साथ काम किया। इस तरह राखालदास बंदोपाध्याय के जीवन ने जैसे अपनी एक दिशा तय कर ली। भारत और उसका गौरवशाली इतिहास उनकी आत्मा का संगीत बन गया।

सन 1907 में बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद राखालदास बंदोपाध्याय की नियुक्ति प्रांतीय संग्रहालय लखनऊ में हुई। यहाँ वो सूची पत्र बनाने का काम किया करते थे। लेखन में भी उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए इस बीच उन्होंने इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण लेख भी लिखे। 1910 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद उनकी नियुक्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उत्खनन सहायक के पद पर हुई। लगभग एक साल तक उन्होंने कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम में काम किया। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में एक वर्ष तक काम करने के दौरान उनकी रुचि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की ओर और गहरी हुई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में एक मजबूत नींव दी। 1917 में राखालदास बंदोपाध्याय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पश्चिमी मंडल पुणे में अधीक्षक नियुक्त किया गया। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थलों पर काम किया। मध्य प्रदेश के भूमरा में गुप्तकालीन मंदिर और है कलचुरी स्मारकों पर उनके शोध ने उन्हें अभूतपूर्व ख्याति दिलाई। महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, राजस्थान और मध्य प्रदेश की देसी रियासतों में उन्होंने पुरातत्व के जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनका विवरण एनुअल रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन राखालदास बंदोपाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण काम सामने आया सन 1922 में, जब उन्होंने सिंध में मोहनजोदड़ो की खोज की। दरअसल वो एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ असाधारण अवशेष मिले। इन अवशेषों ने एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा किया जो हजारों वर्षों से गुमनाम मिट्टी की तहों के नीचे दबी हुई थी। राखालदास बंदोपाध्याय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के साथ मिलकर इस स्थल की गहन खुदाई की। ये खोज थी सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, 2500 ईसा पूर्व की एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा था। ये स्थान सुनियोजित सड़कों, विशिष्ट जल निकासी प्रणाली और अपने बड़े बड़े अनाज भंडारों के साथ भारतीय प्राचीन सभ्यता का एक शहरी चमत्कार था। राखालदास बंदोपाध्याय की इस महत्वपूर्ण खोज ने ये साबित कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी।

मोहनजोदड़ो की खोज ने विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित कराया। इस शहर की खुदाई में कई आश्चर्यजनक चीजें सामने आईं। यहाँ की सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। यहाँ की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आधुनिक नगर नियोजकों को भी इसे देखकर आश्चर्य होता है। एक विशाल स्नानागार यहाँ मिला जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग होता था। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मुहरें और एक प्रसिद्ध नृत्य करती कन्या की मूर्ति भी मिली। इन मुहरों पर पशुओं और लिपियों की नक्काशी थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो के घरों में ईंटों का उपयोग और उनके डिजाइन से पता चलता है कि यहाँ के लोग निर्माण और कला में कितने कुशल थे। यहाँ मिली विदेशी सामग्रियों से पता चलता है कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ व्यापार भी करती थी। राखालदास बंदोपाध्याय की खोज ने न केवल भारत के इतिहास को समृद्ध किया बल्कि ये भी साबित किया कि प्राचीन भारत शहरीकरण और तकनीक में विश्व के अग्रणी क्षेत्रों में से एक था। उनकी इस उपलब्धि ने पुरातत्वविदों को अन्य स्थलों जैसे हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल की खोज के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त राखालदास बंदोपाध्याय ने पूना में पेशवाओं के राजप्रासाद का उत्खनन कर पुरातत्व और इतिहास की भग्न श्रृंखला को भी जोड़ने का प्रयत्न किया। राखालदास बैनर्जी केवल एक पुरातत्वविद ही नहीं बल्कि एक कुशल साहित्यकार भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पाषाणेर कथा, धर्मपाल, करुणा, मयूख, शशांक, प्राचीन मुद्रा, द ओरिजिन ऑफ बंगाली स्क्रिप्ट, असीम आदि। उनकी कृति द पाल्स ऑफ बंगाल, बंगाल के पाल वंश पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1924 में उनका स्थानांतरण पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्वी मंडल कोलकाता में हुआ जहां उन्होंने लगभग 2 वर्ष कार्य किया। यहां के अपने कार्यकाल में उन्होंने पहाड़पुर के प्राचीन मंदिर का उल्लेखनीय उत्खनन करवाया। सन 1926 में सरकारी सेवा से उन्हें अवकाश ग्रहण करना पड़ा। इसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राध्यापक के तौर पर जुड़े और अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वो लेखन और शोध कार्य में लगातार जुटे रहे। दुर्भाग्यवश 23 मई सन 1930 को मात्र 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया लेकिन उनकी खोज और लेखन आज भी जीवित हैं जो हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ते हैं। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी लेकर आपके साथ हाजिर हूं। फिर से एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में 23 और 24 जून को ये युद्ध लड़ा जा रहा था नर्मदा और गौर नदी के मध्य की नरई घाटी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थानों पर इस प्रकार खड़ी कर दी कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी और घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष बाण तीर तलवारों और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज गया। युद्ध समाप्त होने को था। गोंड सेनापति पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। दोनों ही सेनाओं में अनेक सैनिक हताहत भी हुए। रानी दुर्गावती की हाथी सेना का संचालन फौजदार अर्जुन सिंह बखीला कर रहे थे। उनका नाम अर्जुन सिंह बैस या अर्जुन सिंह बघेल भी मिलता है। उस समय सेना में हाथियों का बड़ा महत्व था। फौजदार अर्जुन सिंह बखीला संपूर्ण हाथी सेना का संचालन करते रहे और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन शाम होते होते इस युद्ध में फौजदार अर्जुन सिंह बखीला वीर गति को प्राप्त हो गए। ये गोंड सेना के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। लेकिन इतनी बड़ी क्षति होने के बाद भी आखिर सूरज ढलने से पहले रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की तरफ धकेल दिया। आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची मुगल सेना के साथ घाटी से जान बचाकर वापस भागने लगे और इस प्रकार गोंड रानी दुर्गावती की विजय हुई। पूजा जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की ओर से आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, गोंड रानी दुर्गावती की यहाँ पर विजय हुई तो इस विजय से तो गढ़ा की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई होगी।
1: जी हाँ, ये खुशी की बात तो थी ही, रानी दुर्गावती की विजय हुई थी
0: जी
1: और गढ़ा राज्य की विजय हुई थी। यह विजय भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखती है
0: जी।
1: निश्चित ही गढ़ा की सेना में खुशी की लहर तो दौड़ी गई होगी
0: जी,
1: किंतु नेतृत्व कर रही रानी दुर्गावती और उनके सेनापतियों ने संयम नहीं खोया। रात को गढ़ा की सेना के खेमे में आज के युद्ध के बारे में समीक्षा की गई
0: जी।
1: और अगले दिन की योजना भी बनाई जाने लगी
0: जी।
1: इधर रात होने से पहले ही मुगल सेनापति आसफ खां की विशाल मुगल सेना नरई के निकट पहुंच चुकी थी और सेना ने पास में ही अपना शिविर गाड़ लिया था, इसलिए अगले दिन सेनापति आसफ खां की विशाल सेना से सामना होना निश्चित था।
0: तो मतलब ये बात रानी के पास पहुंच चुकी थी कि आसफ खां भी वहां अपनी सेना लेकर आ रहा है।
1: बिल्कुल। तो अब जो योजना बनाई जानी थी वो उसी हिसाब से बनाई जानी थी कि अगले दिन आसफ खां की विशाल सेना के साथ में युद्ध करना होगा। तो योजना बनाते समय बीच में एक सुझाव आया
0: जी
1: कि क्यों ना मुगल सेना के शिविर पर रात को ही धावा बोल दिया जाए
0: जी।
1: थकी हुई सेना पर रात के अंधेरे में चारों ओर से धावा बोलकर आसान जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन गढ़ा की सेना इससे सहमत नहीं हुई। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध भी था, इसलिए एक मत से इसे नकार दिया गया।
0: वाह पूजा जी, आपने हमारे पिछले एपिसोड में भी हमें बताया था कि हमेशा से हम युद्ध कला कहते आ रहे हैं, कोई युद्ध सिर्फ एक कोई शब्द होता ही नहीं। आपने बताया था इतिहास में हम इसे युद्ध कला के नाम से जानते हैं और कला हमेशा नियमों से बंधी हुई होती है, तो इसी वजह से शायद ये भी बात यहाँ पर हुई। और देखिए कितनी अच्छी बात है श्रोताओं कि हम अपने दुश्मन पर भी पीठ पीछे हमला नहीं करते। रात के वक्त थके हुए सैनिकों पर हमला करना एक अच्छा मौका हो सकता था रानी के लिए, एक बहुत अच्छा अवसर था रानी दुर्गावती के लिए, क्योंकि उनके पास सेना कम थी और आसफ खां की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने युद्ध के मैदान में ही जंग करना उचित समझा। तो पूजा जी, अगले दिन क्या हुआ, किस तरह युद्ध आरंभ हुआ और क्या क्या हुआ?
1: सुबह हुई और नरई की घाटी में विशाल मुगल सेना प्रवेश कर गई
0: जी।
1: दूसरी ओर गढ़ा की सेना भी दलबल के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। योजना के अनुसार आज के युद्ध का नेतृत्व गढ़ा राज्य के उत्तराधिकारी राजा वीर नारायण को करना था। जैसी कि हमने पहले भी बात की थी कि वह इस समय सिर्फ 16-17 वर्ष के रहे होंगे। गढ़ा के सैनिक भी पूरी तैयारी से थे। मैंने एक लोकगीत में सुना था कि जब गोंड सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते थे तो वे एक खास फूल का रस अपने कपड़ों पर छिड़कते थे।
0: अच्छा।
1: इस फूल का रस भगवा रंग का हुआ करता था और भगवा छींटे सभी सैनिकों में उत्साह का संचार करते थे।
0: वाह, क्या बात है।
1: तो युद्ध आरंभ हुआ। गढ़ा की ओर से राजा वीर नारायण ने सेना की कमान संभाली। उनकी ओर से शम्स खां मियाना और मुबारक बिलूच भी बहादुरी से युद्ध का संचालन कर रहे थे।
0: जी, ये वही अफगानी लड़ाके थे जो रानी से परास्त होकर उनकी सेना में शामिल हुए थे।
1: बिल्कुल, ये वही थे।
0: जी,
1: दूसरी ओर से मुगल सेनापति आसफ खां की सेना भी पूरे दमखम के साथ लड़ी। युद्ध में धनुष बाण तीर तलवार बर्छे भाले की टनकार लगातार गूंज रही थी। दोनों सेनाओं के सैनिक हताहत भी हो रहे थे। समय के साथ युद्ध की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। घोड़े पर सवार राजा वीर नारायण भी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। तभी उन्होंने मुगल सेना को घाटी से पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त कर ली, किंतु कुछ समय बाद मुगल सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया और वीर नारायण ने फिर उन्हें परास्त कर दिया और पीछे धकेल दिया। यह क्रम 3 बार चला। तीसरी बार भी राजा वीर नारायण ने मुगल सेना को परास्त किया और उन्हें नरई की घाटी से पीछे भागने पर मजबूर कर दिया।
0: वाह, तो इसका मतलब जो वीर नारायण थे, कुंवर वीर नारायण, राजा वीर नारायण, वो सिर्फ 16-17 साल के थे और उस उम्र में इतना शौर्य, इतना पराक्रम, तो मतलब शुरू से वो भी युद्ध कला में पारंगत किए गए थे।
1: जरूर, युद्ध कला में शस्त्रों अस्त्रों में उन्हें पारंगत किया ही गया होगा।
0: जी,
1: उसका विद्या अध्ययन उन्होंने किया ही होगा। अब युद्ध आगे बढ़ा।
0: जी,
1: और चौथी बार मुगल सेना फिर से जोर लगाते हुए अधिक संख्या में दोबारा नरई में प्रवेश कर गई।
0: जी,
1: लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आसफ खां के साथ तोपखाना भी आया था।
0: जी,
1: और अब तक तोपखाना भी पूरा सजा लिया गया था। तोपें आग उगलने के लिए तैयार हो गई थी और आग उगलने लगी थी। दोपहर का समय हो रहा था। युद्ध अपने जोरों पर था। अचानक से राजा वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गए। जैसे ही रानी को यह पता चला, उन्होंने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली। उनके विश्वस्त सेनापतियों ने वीर नारायण को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकालने की जिम्मेदारी उनके महावत पर सौंपी।
0: जी,
1: गढ़ा की सेना की कुछ टुकड़ियां वीर नारायण को घेर कर इस प्रकार युद्ध लड़ती रहीं कि शत्रु सेना को पता भी नहीं चला और राजा वीर नारायण को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया।
0: जी,
1: किसी भी युद्ध में राजा का बचना अनिवार्य है।
0: जी,
1: यदि राजा ही मर जाए तो फिर युद्ध तो समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर की सेना जीत जाती है।
0: लेकिन पूजा जी, जब राजा वीर नारायण को सुरक्षित नरई से निकाल लिया गया तो फिर तब सेना का संचालन ऐसी स्थिति में किसने किया?
1: राजा वीर नारायण के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद
0: जी,
1: युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली।
0: जी,
1: उनके सेनापति तो युद्ध लड़ ही रहे थे। रानी दुर्गावती अपने प्रशिक्षित हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन करने लगी।
0: जी,
1: उनके हाथी का नाम सरमन था और सरमन के महावत का नाम आधार सिंह बखीला था।
0: अच्छा।
1: जिन्हें बघेला भी कहा जाता है।
0: जी,
1: युद्ध जोरों पर था। खूब जोर शोर से लड़ाई हो रही थी। भीषण युद्ध चल रहा था। रानी दुर्गावती पूरे पराक्रम से लड़ रही थी। शाम होने को थी और एक लोकगीत है। लोकगीत में इस समय का वर्णन हमको मिलता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाती हूँ कि काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, काली को रूप बनाए के दुर्गा झपटत जाए, रक्त लोहू के नदिया हो तुरते दईस है रे बहाए। यानी कि रानी जो है वो काली के रूप में
0: जी,
1: दुर्गा के रूप में दूसरे शत्रु सेना पर झपट रही हैं और रक्त की नदियां बह रही हैं।
0: जी,
1: अड़े रहो सब मग में हो या सबे ला सिखाए, जीत के डंका बजाए के माता मन मुस्काए। ऐसी तरह जीत रही हैं शत्रु सेना पर, ऐसी भारी पड़ रही हैं कि वो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और सबसे कह रही हैं कि डटे रहो, जीत हमारी होगी।
0: बिल्कुल। रणमा जूझे धरे तलवार, रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए। ये भी एक सैला लोकगीत हमें पूजा जी ने ही बताया था। तो पूजा जी, फिर आगे युद्ध किस तरह से आगे बढ़ा?
1: दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध हो रहा था और युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया कि अब निर्णय होने को ही था।
0: जी,
1: कि अचानक हाथी सरमन पर बैठी रानी दुर्गावती को युद्ध के दौरान एक तीर दाई कनपट्टी पर जा लगा। रानी ने उस तीर को अपने हाथों से निकालकर फेंक दिया। इस बीच शत्रु सेना ने अपना शिकंजा और जोर से कस दिया। उन पर नुकीले और जहर बुझे तीरों की बौछार कर दी। इससे पहले कि रानी संभल पाती, एक दूसरा तीर रानी दुर्गावती की गर्दन में जा धसा और एक और तीर उनके सीने को बेधते हुए निकल गया। इतने तीर एक साथ लगने से रानी मूर्छित होने लगी, किंतु इस अवस्था में भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उनका बचना अब असंभव है, किंतु वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि यदि वह जीवित अवस्था में भी मुगल सेना द्वारा बंदी बना ली गई तो उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा
0: जी।
1: जैसा कि उस समय होता भी था। यह तो फिर युद्ध क्षेत्र में लड़ती हुई रानी थी, इनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी
0: जी।
1: यहां रानी के साथ होने वाला दुर्व्यवहार सिर्फ उनका ही अपमान नहीं था, बल्कि गढ़ा राज्य की प्रजा का अपमान था। शत्रु सेना द्वारा अपनी रानी के साथ घृणित व्यवहार करते प्रजा से देखा नहीं जाता। रानी अपने गढ़ा और अपनी प्रजा का अपमान होते हुए नहीं देख सकती थी।
0: निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी रानी के समक्ष। वो मूर्छित होने को थी, पूरी तरह से मूर्छित नहीं हुई थी और जान का खतरा उन पर मंडरा रहा था, वो ये बात जानती थी। उसके बाद भी उनका जीवट इतना बड़ा था, उनकी जिजीविषा इतनी बड़ी थी कि वो जीते जी तो अपने आप को दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपना चाहती थी ताकि गढ़ा के लोगों का अपमान न हो। वाह क्या बात है, धन्य है रानी दुर्गावती। तो पूजा जी, जैसा कि आपने बताया उस समय हारे हुए लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, खास तौर पे ये जो मुगल थे उनका इस तरह का कुछ जो भी बर्बर तरीके थे, क्या उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: जैसा हम जानते हैं, जब मुगल सेनाएं जीतती थीं तो वह उन महिलाओं के साथ भी घिनौना कृत्य करती थी जो युद्ध में शामिल भी नहीं होती थी
0: जी।
1: जीत के बाद मुगल सेनाएं गाँव और कस्बों में घुस जाती थी और खेतों और खलियानों को नष्ट कर देती थी। घोड़े हाथी सैनिकों के पैरों तले हरी भरी फसलें रौंद दी जाती थी, उनमें आग लगा दी जाती थी। जिसके हाथ जो लगता था वह निर्दोष लोगों से लूट लेता था। मंदिरों मठों पर हमला बोलकर उन्हें ध्वस्त किया जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था। जो विरोध करता था उसके साथ बड़ा ही घृणित व्यवहार किया जाता था। जबरदस्ती धर्मांतरण होते थे, बड़ा ही भयावह और घृणित दृश्य होता होगा। मंदिरों महलों घरों खेतों खलिहानों में रखे धन संपदा अनाज की लूटपाट तो होती ही थी। स्त्रियों बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसका तो वर्णन करना भी असंभव है। उनका जितना अपमान शारीरिक मानसिक तौर पर किया जा सकता था वह सभी किया जाता था। इसलिए ही तो जौहर प्रथा आरम्भ हुई। स्त्रियां घिनौने शत्रुओं के हाथ लगे इससे पहले वह आग में जलकर या जल समाधि लेकर या किसी भी प्रकार से स्वयं को खत्म कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। और यहाँ नरई में तो मामला ही गंभीर था। यह तो रानी दुर्गावती थी, वह भी युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक गढ़ा का नेतृत्व करते हुए युद्ध लड़ती हुई रानी
0: जी।
1: उसे तो वह कतई नहीं छोड़ते
0: जी।
1: यदि वह जीवित बंदी बना ली जाती तो उनके साथ होने वाले घृणित अपराध के बारे में तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था
0: जी।
1: यदि युद्ध में इस प्रकार किसी का मृत शरीर भी प्राप्त होता था तो उसके साथ शिरोच्छेद या अंगोच्छेद आदि घृणित कार्य किए जाते थे।
0: कितने विभत्स दृश्य रहे होते होंगे जो हमें इतिहास के पन्नों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसे देख कर पढ़कर जो अभी हम महसूस कर रहे हैं वही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो उन दृश्यों की तो शायद हम वाकई कल्पना भी नहीं कर सकते। पूजा जी, फिर जब रानी को तीर गर्दन में लगा, एक तीर उनके सीने के पार हो गया, वो मूर्छित होने लगी, तो तब क्या हुआ युद्ध का, क्या हुआ सेना का?
1: जब रानी को एक तीर गर्दन में और दूसरा तीर सीने पर लगा तो रानी लहूलुहान हो गई और मूर्छित होने लगी। तब रानी दुर्गावती ने अपने महावत आधार सिंह बघेला को कहा कि वह अपनी कटार निकाले और उनके जीवन का अंत कर दे
0: जी।
1: किंतु महावत आधार सिंह बघेला तो उन्हें अपनी माँ जैसा मानते थे
0: जी।
1: वह अपनी माँ को कैसे मार सकते थे? उन्होंने रानी दुर्गावती के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वह ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकते
0: जी।
1: वह अपनी माँ को अपनी कटार से नहीं मार सकते। उन्होंने हाथ जोड़कर रानी से निवेदन किया कि उन्हें किसी भी प्रकार से बचाकर वह युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। रानी दुर्गावती सिर्फ उन्हें आज्ञा दें, वह कैसे भी अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा ले जाएंगे, शत्रुओं के हाथ नहीं लगने देंगे
0: जी।
1: किंतु रानी जानती थी शत्रु सेना के अनेक सेनापति उन्हें चारों ओर से बुरी तरह से घेर चुके हैं
0: जी।
1: सभी उन पर निशाना साधे हुए हैं। महावत आधार सिंह बघेला कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब रानी दुर्गावती को बचाना असंभव था।
0: और फिर रानी दुर्गावती तो रणक्षेत्र को छोड़कर, अपनी सेना को छोड़कर वैसे भी वहां से नहीं जाती।
1: जी हाँ।
0: देखिए श्रोताओं, इसलिए उनके बारे में आज भी हमें लोकगीतों से जो जानकारी प्राप्त होती है वो कुछ इस तरह की है। रणमा जूझे धरे तलवार, माता दुर्गा कहाए, नाम आसफ दुश्मन के, गई से धरी धरी हार, सज धज के आवे तिसरैया, फौजी धरे हथियार, ताक नसाना महारानी के हो, नहीं काई उपचार, जख्मी चोट लगे से सतन मा, बही रक्तन के धार, जोर फिरंगी माथा मा, मोहे नहीं जावे आंच, नारी के तन आए बचाहूं, यही हवे मोला साच। तो फिर पूजा जी, क्या रानी के जो महावत थे उन्होंने बात उनकी मानी या फिर उन्होंने कोई और तरीका निकाला?
1: रानी दुर्गावती भयानक दर्द से कराह रही थी
0: जी।
1: उन्हें अनेक तीर लगे थे, वह लहू लुहान थी। शत्रु सेना इससे पहले कि कुछ समझ पाए उन्हें निर्णय लेना ही था। समय ही तो नहीं था, हर क्षण भारी था
0: जी।
1: विपदा सामने खड़ी थी, शत्रु सेना आगे बढ़ रही थी, रानी लहू लुहान थी, गणराज्य की इज्जत दांव पर लगी थी, पल पल भारी था। बिना देर किए तभी रानी ने अपने ही कमर से बंधी कटार निकाली और अपने ही सीने में घोंप ली। क्षण भर में रानी दुर्गावती के प्राण निकल गए। उस वीरांगना के बलिदान को देखकर जैसे सारी सृष्टि थम गई, तलवारों की गूंज रुक गई, सन्नाटा पसर गया। उस वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के लिए सहर्ष ही अपने प्राण नौछावर कर दिए।
0: और तभी तो देखिए आज इतने सालों बाद, इतनी सदियों बाद, हम आज भी उनका नाम कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से लेते हैं। शौर्य की उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। रानी दुर्गा जो कहा है, आज भी वो रानी दुर्गा के समान जिन्हें गढ़ा के लोग मानते थे, आज वो पूरी दुनिया में वीरांगना रानी दुर्गावती कहलाती हैं। पूजा जी, सुना है कि इस दृश्य को पेंटिंग के रूप में भी उकेरा गया है, क्या ये बात सही है?
1: हाँ, जैसा कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि मुगल साहित्यकारों ने, लेखकों ने, चित्रकारों ने रानी दुर्गावती को हमेशा बहुत साहसी, निर्भीक और परिस्थितियों के आगे न झुकने वाला बताया है
0: जी।
1: तो मुगल शासक अकबर के जो दरबारी लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ भी लिखा है
0: जी।
1: ये अकबरनामा 1590 से 1595 के बीच कभी लिखा गया और इसमें बहुत सारा वर्णन तो है ही, साथ में अंदर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं। और वर्तमान में ये जो ओरिजिनल अकबरनामा है ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है।
0: अच्छा।
1: और मुझे 2016 में ये देखने का मौका भी मिला
0: जी।
1: तब मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि अकबरनामा में रानी दुर्गावती के बारे में क्या कहा गया है या उन्हें दर्शाया गया है। तो अकबरनामा में पूरे 2 पेज को मिलाकर एक पेंटिंग बनाई गई है और इसमें नरई के युद्ध का वह पल चित्रित किया गया है जिसमें रानी दुर्गावती को तीर लग चुके हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये पेंटिंग यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं
0: जी।
1: रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर बैठी हुई हैं
0: जी।
1: सरमन को छींट वाले सफेद वस्त्रों से ढका गया है, जैसे हौद जो होती है
0: जी।
1: ऐसे है, उस पर पालकी है, पालकी में रानी दुर्गावती बैठी हैं
0: जी।
1: उन्होंने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और अंगरखा जैसा है जिसे उन्होंने कमर पर बांधा हुआ है और उनके कमर में कटार है। उन्होंने सिर पर शिरस्त्राण भी पहना हुआ है, उनके हाथ में तलवार है, उनके आसपास धनुष बाण है
0: जी।
1: इस दृश्य में यह भी दिखाई देता है कि रानी दुर्गावती की गर्दन में एक तीर लगा हुआ है और दूसरा तीर उनके सीने में धसा हुआ है
0: जी।
1: उनका चेहरा कुछ पीछे की तरफ लटका हुआ है और सामने हमको दिख रहा है कि जो उनका हाथी है सरमन, उसका जो महावत है आधार सिंह बकीला, जिसने उनसे यह निवेदन किया था कि हम युद्ध क्षेत्र से आपको सुरक्षित बाहर ले जा सकते हैं इस अवस्था में, वो आधार सिंह तलवार लेकर हाथी के ऊपर बैठा हुआ भी रानी को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही आसपास के दृश्य में दिखाया गया है कि रानी दुर्गावती के सभी सेनापति ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और वो मुगल सेना को उनके निकट आने से रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना अपने तीर भाले लेकर पूरी तरीके से एकमात्र रानी के ऊपर निशाना साधे हुए है। इस पेंटिंग में एक और देखने वाली बात है, वो ये है कि एक सैनिक तो दो नाली बंदूक लिए हुए भी है।
0: मुगल सेना के सैनिक?
1: जी हाँ, मुगल सेना का सैनिक एक बड़ी सी दो नाली बंदूक भी रानी की ओर ताने हुए है।
0: अच्छा।
1: तो तोपखाना भी उनके पास था, दो नाली बंदूकें भी थी और तीर बरछे हाथी घोड़े ये सब तो थे ही। तो ये ठीक उस क्षण का दृश्य है जब रानी दुर्गावती को दोनों तीर लग चुके हैं और उन्होंने युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने को मना कर दिया है और उनके सभी लोग उनको बचाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
0: इतिहास के पन्नों से की 9वीं कड़ी में आज हमने पूजा जी से जो बात करी, हम इतने दिनों से रानी दुर्गावती की दास्तान सुन रहे थे और आज के अंक को, आज के एपिसोड को सुनने के बाद हम ये जान पाए कि किस तरह जो आज शौर्य गाथा गाई जाती है वो किस तरह रानी दुर्गावती ने खुद अपने ही हाथों अपनी कटार से लिखी थी, अपने पराक्रम से लिखी थी। उन्होंने कतई हार नहीं मानी, ना अपने आप को दुश्मनों के सुपुर्द किया, ना ही वो रणक्षेत्र छोड़कर भागी। वो एक लगभग निश्चित पराजय जब उनकी होने वाली थी तब भी उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी, आखिर समय तक वो लड़ती रही और अंत तक उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। निश्चित रूप से ये गढ़ा के गोंड राज्य की विजय गाथा है, एक महान वीरांगना की विजय गाथा है। तो श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे इतिहास के पन्नों से, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों को समेटकर हमारे लिए ये जो जानकारियां लाई हैं वो हैं मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। फिर एक बार पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अनुपम जानकारियां आप हमें दे रही हैं, इतनी अनूठी जानकारियां हमें आप दे रही हैं। गढ़ा के गोंड राज्य की दास्तान आगे भी जारी रहेगी लेकिन वक्त है अब आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में थी पुरातत्वविद के रूप में, ध्वनि संयोजन और ध्वनि संपादन का कार्य संभाला अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जब मनुष्य संसार की चकाचौंध के पीछे भागते भागते थक जाता है, तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या यही जीवन का सत्य है? क्या धन वैभव, यश, दीर्घायु जैसी बातें ही मानव जीवन की उपलब्धि हैं? इन्हीं गहरे प्रश्नों से उद्वेलित हैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम। उनका मन संसार की क्षण भंगुरता को देखकर अत्यंत विचलित है। उन्हें प्रतीत होता है कि धन संपत्ति, भोग और आयु सब कुछ समय के प्रवाह में विलीन हो जाने वाले स्वप्न मात्र हैं। योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम का विचलन और उसके समाधान हेतु दिया गया उत्तर केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के अज्ञान को दूर करने वाला सूत्र है। श्री राम के मन में उठने वाले प्रश्न हर उस व्यक्ति के प्रश्न हैं जो जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना चाहता है। तो आइए शामिल होते हैं योग वासिष्ठ की उस दिव्य संवाद यात्रा में, जहां वैराग्य की अग्नि में तपकर सत्य का सोना खरा होता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप श्रोताओं को याद दिला दें कि वो क्या घटना थी, और उसके बाद फिर हम आज के विषय पर आ जाएंगे।
2: जी, जब राम जी गुरुकुल से आते हैं और तीर्थ यात्रा की याचना करते हैं अपने पिताजी से कि मुझे तीर्थ दर्शन करना है,
1: जी।
2: जो ज्ञान उन्होंने गुरुकुल में प्राप्त किया है, उस ज्ञान के साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की जिज्ञासा उनके मन में होती है। और तीर्थ दर्शन से जब लौट के आते हैं तो वो वैराग्य की स्थिति में हैं, और जब उनको भरी सभा में बुलाया जाता है तो उनके चित्त को जो देखते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, आपने तो विषय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे में आपके चित्त में इस तरह की व्यग्रता क्यों है? और विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके आंखों में जो चंचलता दिखाई दे रही है, ये आपके चित्त की व्यग्रता को दर्शा रही है, तो इसका कारण क्या है, इसको विस्तार से कहिए। और यही बात वाल्मीकि जी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से कह रहे हैं, उसमें ये पूरी कथा चल रही है। तो राम जी जब लौट के आते हैं, जैसे आज का संसार है हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही लोग व्यग्र दिखाई दिए, कहीं कोई किसी कर्म से संतुष्ट नहीं दिखा, तो ऐसे में उनको लगा कि जब कोई कर्म व्यक्ति को संतुष्टि नहीं दे सकता तो कर्म ही छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने को कर्म से विरत कर लिया।
1: तो संसार को देखकर बहुत विचलन उनके मन में है, और कुछ उनके मन में जो बातें धन संपत्ति को लेकर भी हैं जो वो मुनिश्री के सामने रखते हैं।
2: जी।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि धन संपत्ति को वो कष्ट का कारक मान रहे हैं।
2: हाँ,
1: है ना। जबकि आज का जो समय है, सुख का आधार हम धन संपत्ति को मानते हैं, सफलता का आधार हम धन संपत्ति को मानते हैं, और आनंद का आधार भी धन संपत्ति को माना जाता है आज के संसार में, लेकिन ठीक इसके विपरीत बात कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि धन संपत्ति को हमें किस रूप में देखना चाहिए, एक जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो इसे कैसे देखता है?
2: विवेकवान व्यक्ति इसको व्यामोह की तरह देखता है। वो कहता है कि धन संपत्ति जो है, ये जैसे हम विषय को अर्जित करते जाएं और उस विषयों में कभी संतोष की प्राप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे ही धन संपत्ति में भी व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए आप देखिएगा कि धन की कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति जितना पैसा या धन अर्जित करता है, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और कहा जाए तो दरिद्रता का संबंध धन की आकांक्षा से है। किस व्यक्ति को कितना धन की आवश्यकता है, उसके अनुपात में उतना ही दरिद्र होगा।
1: बहुत ही सुंदर बात, क्योंकि बहुत धन संपत्ति होने के बाद भी आदमी दरिद्र हो सकता है, क्योंकि उसकी आकांक्षा भी धन के लिए है, वो अभाव महसूस कर रहा है।
2: होता ही है। आप देखिए कि जिसको जितने अधिक धन की आवश्यकता है, इसका मतलब उसकी गरीबी उतनी बड़ी है,
1: उतनी बड़ी है। जी जी जी,
2: है ना। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार का व्यामोह पैदा करता है। तो विवेकवान पुरुष इस रहस्य को जानता है, वो देखता है कि एक व्यक्ति जो छोटी सी इच्छा लेके आया था, फिर वो इच्छा इतनी बड़ी होती चली गई कि इतना कुछ आने के बाद भी उसकी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं हुई। इसलिए आप देखेंगे कि धन के पीछे जो लोग भागते हैं वो पूरा जीवन असंतोष में बिताते हैं। और भारतीय चिंतन में, गांव और हमारे लोक कथाओं में भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष धन है।
1: संतोष को धन कहा गया, बिल्कुल।
2: लेकिन संतोष धन की प्राप्ति धन से नहीं होती, धन से हमेशा असंतोष की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्रकार का व्यामोह हुआ कि नहीं हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: विवेकवान इसको जानता है कि जो धन है वो व्यक्ति को असंतुष्ट करेगा,
1: असंतुष्ट करेगा,
2: और असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होगा।
1: और वो संतुष्टि के लिए धन एकत्रित करता है।
2: एक कथा आती है कि धन का तीन प्रकार का भोग होता है। भारत के ऋषियों ने ऐसा चिंतन किया, कहा कि सबसे उत्तम भोग उसका ये है कि उसका दान हो, क्योंकि आपके पास अगर धन आया है आपकी आवश्यकता से अधिक, तो ऐसे में जो लोग धन के अभाव में अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं तो उनके लिए आप उसका दान करें, तो उस समय आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी शायद जितना आप उसका भोग करके आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, उतना आपके द्वारा अर्जित सामर्थ्य से अगर कोई दूसरा भोग करता है जिसको आप चाहते हैं कि आप दें तो उस समय आपको खुशी होती है। देखिए, त्याग और दान में फर्क है। त्याग में व्यक्ति को कष्ट होता है, दान में प्रसन्नता होती है।
1: प्रसन्नता होती है।
2: तो दान में आप दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं और आपको लगता है कि देखिए परमात्मा ने कैसी कृपा आप पर की कि आप में इतना सामर्थ्य आया कि आप अपने को तो संतुष्ट कर ही पा रहे हैं लेकिन दूसरा भी आपसे संतुष्ट हो रहा है। इसको कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं साथ में भूखा जाए। तो मतलब ये हुआ कि दान सबसे उत्तम भोग है। उसके बाद मध्यम भोग कहा गया कि आप उस संपदा का अपने इच्छानुसार जो आपको उपयुक्त लगे, जो उचित लगे, जो सार्थक लगे, उसमें उसका उपभोग करें। और जो लोग परिग्रही होते हैं, क्योंकि धन के साथ परिग्रह भी आता है, संकलन की प्रवृत्ति भी आती है, तो कहते हैं ये परिग्रही लोग धन का नाश करते हैं, उनके लिए धन नष्ट हो जाता है। वो परिग्रह आप करते हैं और फिर कोई दूसरी पीढ़ी आती है जो उसे नष्ट करती है। तो ऐसा देखने को आपको या तत्त्व सर्वत्र दिखेगा। तो राम जी कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष है वो धन के व्यामोह में कभी नहीं आता, जानता है कि ये व्यामोह का कारण है, व्यक्ति को मोहित करेगा।
1: तो जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं वो धन संपत्ति को किस तरह से देखते हैं?
2: आपने सुंदर कहा। राम जी कहते हैं कि ये लोगों को भ्रम है कि वो सोचते हैं कि धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों का साधन हो सकती है और सब में उत्कृष्ट वस्तु है, क्योंकि धन के द्वारा किसी भी वस्तु का विनिमय हो सकता है। जो आपने अभी कहा कि विकास में, आज के समय में सामाजिक आर्थिक विकास की बात की जाती है, तो धन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। तो वस्तु विनिमय में धन का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे जो मूढ़ लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर संसार में हमारे पास धन स्थिर रहा तो हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे उत्कृष्ट वस्तु धन है। ऐसी जो सोच रखता है उसको कहते हैं कि वो मूढ़ है। वास्तव में धन जो है वो व्यामोह में डालता है। और राम जी तो ये तक कहते हैं कि सारे अनर्थ का कारण अर्थ है।
1: अच्छा,
2: हाँ, ऐसी दृष्टि है।
1: जी,
2: और
1: जी।
2: अगर आप इस पर विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि जब आपके पास धन आता है तो धन के आने के साथ साथ आपके अंदर भय भी आता है, आपके अंदर सुरक्षा की प्रवृत्ति भी आती है, आप लोगों से झूठ भी बोलते हैं, आप हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं कि कोई कहीं आपसे धन न मांग ले या इसी धन के लिए लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो आप मूलतः भाव को पकड़ने के बजाय सबके केंद्र में आपके धन आ जाता है, तो धन से तमाम सारे विकार आपके मन में भी जन्म लेते हैं और धनवान व्यक्ति हमेशा सशंकित और चौकन्ना रहता है कि कहीं उससे कोई कुछ मांग न ले।
1: तो क्या मनुष्य को मलिन बनाने का काम धन संपत्ति ही से होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मनुष्य के चित्त को जो धूमिल करता है, जो उसके चित्त पर धूल आता है, वो धन के कारण आता है। आप सामान्य तौर पर विचार करें कि जैसे आपके पास धन है और आपके जानने वाले लोगों को ये पता चल गया कि आप धनवान हैं, तो फिर ऐसे में जैसे ही लोग आपके पास आएंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं?
1: हाँ, वो भावनाओं का जुड़ाव नहीं रहेगा।
2: नहीं रहेगा। आपको लगता है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है भले वो अच्छे भाव में हो लेकिन आपको लगता है ये किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है या मुझसे कुछ चाहता है। आप अक्सर ये देखेंगे व्यवहार में, जीवन व्यवहार में देखिए तो मनुष्य कहता भी है और कहते भी हम लोग हैं कि आपको लोग नहीं चाहते तब जब आपके पास संपन्नता आती है तब आपसे चाहते हैं, और जब आपके पास संपन्नता नहीं होती है, या कहा भी जाता है कि आप देखिए कि जब आपके पास धन नहीं होता है तब सही लोगों की पहचान होती है कि कोई आपको चाहता है या फिर आपसे चाहता है। तो मित्रों की परख, गोस्वामी जी ने लिखा धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परीख उचारी। तो जब आपत्ति का समय हो, अनुकूल समय में तो सब आपके प्रेमी हैं और सब लगेंगे कि जैसे आपके लिए ही जी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं लक्ष्मी से आपका वियोग हो गया, धन संपत्ति का अभाव हो गया, तो उस समय आप देखिए कि आपके पास कितने लोग हैं। शायद आदमी अपने लोगों से भी दूर हो जाता है और अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं।

0: कलंकित कर देता है ये। मतलब आप इसके सामने कभी भी चाहें कि अपने चित्त की शुचिता बचा के रखें, तो ये धन संपत्ति होने की वजह से ये रह नहीं सकता। और इस पर मैं आपको कथानक कहूं, ऐसा कहा जाता है कि एक महात्मा थे, तो उनको किसी राजा ने कुछ स्वर्ण मोहरों का दान कर दिया, तो जब वो चलने लगे तो इसके पहले बड़े निश्चिंत रहते थे वो, लेकिन उस समय उनका चित्त बड़ा व्यथित हाँ। था, कहीं कोई मुझे लूट न ले, कहीं कोई बदमाश ना आ जाए। अब ये सारे ख्याल क्यों आए? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी जरूरत लोगों को है, जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। तो फिर आपने क्या किया, आपने अपनी स्वाभाविक दशा खो दी। तो शिष्य को लगा कि महाराज तो ऐसे थे नहीं, आज क्या हो गया इनको? तो उसको लगता है कि जैसे राजा के द्वारा दी गई जो मुहर है उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो जब थोड़ा शाम होने लगा, सूर्यास्त होने का समय आया, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि थोड़ा और तेज चलो
1: जी,
0: क्योंकि जल्दी पहुंचना है गांव में। तो शिष्य समझ गया महाराज की व्यग्रता का कारण, जो चित्त उनका जो विचलित था, तो कहा महाराज मैंने वो कारण ही मिटा दिया है जिस कारण की वजह से आपके चित्त में ये भय समाया हुआ है। मैंने उस स्वर्ण मोहरों को बाहर फेंक दिया। वो थोड़ा सा झुझलाए, लेकिन एक पल के लिए फिर उन्हें होश आया, कहा ठीक ही हुआ, आखिर मेरे चित्त में विचलन का कारण ये धनी था। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी ये बात कही जाती है कि स्वामी जी को जब एक कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ ने एक बहुत कीमती वस्त्र दिया जिस पर रत्न जड़ित थे, और कहा कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, चूंकि आपसे बड़ा कोई संत नहीं है, इसे आप धारण करें। तो जब वो वस्त्र धारण करके माँ काली के मंदिर में गए, तो उन्हें माँ के समक्ष लेटने में वस्त्र का ख्याल आता था, माँ का ख्याल धूमिल हो गया। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरे और माँ के बीच बाधा बन रहा है, तो उन्होंने उस
1: वस्त्र को संभालना है
0: जी, तो उन्होंने उस रत्न जड़ित वस्त्र को निकाल दिया। तो ये है विवेकमान की दृष्टि। और आप देखें तो हम लोग भी इसी दृष्टि से कहीं कहीं ग्रसित हैं। और एक बार हम विचार करके देखें, आत्मन्वेषण करें, तो हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं संसार की अपेक्षाओं को पूरा करने की कामना लेकर, तो आप देखिए हमारी कितनी रुचि भगवान में होती है। सच यह है कि बार बार ध्यान हमारा अपनी अपेक्षाओं पर रहता है, कामनाओं पर रहता है। तो ये सारी कामनाओं की जड़ ये संपत्ति ही तो है। अगर आपके पास संपत्ति न हो तो आप घर से बाजार नहीं जाएंगे, और संपत्ति आते ही आपको बार बार बाजार का चिंतन आएगा कि कहाँ चलें, क्या खरीदें। तो ये वो चित्त को विचलित कर देता है, मलिन कर देता है।
1: चाहे संपत्ति की बात करें, चाहे आकांक्षाओं की बात करें, चाहनाओं की बात करें, ये सब ईश्वर से दूर कर
0: जी बिल्कुल।
1: तो खुद का एक अगर हम ईमानदार विश्लेषण करना चाहें कि हम धन को लेकर किस तरह की दृष्टि रखते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभ पुरुष की भी चर्चा हुई है, तो मैं चाहती हूँ वो आप जरूर बताएं।
0: हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा योग वासिष्ठ में राम जी ने कहा है। राम जी ने कहा है कि जो मैंने देखा इस जगत को, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, कि जो मैंने जगत को देखा उसमें तीन तरह के लोग मिले। वो कैसे मिले? कहते हैं जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। आज के समय में अगर इस एक लाइन पर आप विचार करें
1: जी जी जी।
0: कि आपकी निंदा ही तब होती है
1: जब आप
0: संपन्न होते हैं,
1: धनवान हो जाते हैं। बिल्कुल।
0: तो कहते हैं कि ऐसा आदमी दुर्लभ है जिसके पास धन संपत्ति हो और उसकी निंदा ना हो।
1: बिल्कुल।
0: लोग बाग तो ये तक कहते हैं कि अरे वो कैसे धन संपत्ति आया मैं जानता हूँ, मतलब नहीं आपको मिला और उनको मिल गया तो वो निंदा के पात्र हो गए, आपके पास होता तो आप सम्मान के पात्र होते। तो ऐसी दृष्टि आपको देखने को मिलेगी सामान्य तौर पर। तो कहते हैं ऐसा आदमी हमने नहीं देखा कि जिसके पास संपत्ति हो और निंदा का पात्र न हो।
1: जी, जी, जी।
0: फिर कहते हैं कि शूरवीर हो और अपने मुंह से बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा न करता हो।
1: अच्छा,
0: आप देखेंगे कि अगर थोड़ी बहुत आपने शक्ति आई तो आदमी यथार्थ नहीं बताता, उसमें दो चार जोड़ के बताता है
1: ताकि, जी जी जी।
0: ताकि और वो प्रशंसनीय हो सके। हा, हा, हा। तो कहते हैं कि ऐसा भी आदमी दुर्लभ है। एक ऐसा आदमी दुर्लभ है कि धन संपत्ति हो और निंदा का पात्र
1: ना हो,
0: और शूरवीर हो और अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर न बताए, ऐसा आदमी भी
1: दुर्लभ है।
0: कहते हैं और एक आदमी ऐसा भी जो स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो। जैसे ही आपके अंदर स्वामित्व का भाव आता है आपके दृष्टि में विषमता आ जाती
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: और आप विषम दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ।
1: हाँ।
0: और ये तो कहते हैं ये लोग दुर्लभ हैं। तीन तरह के लोग दुर्लभ हैं जिनमें स्वामित्व का भाव है और उनके पास विषम दृष्टि ना हो।
1: हाँ।
0: और जिनके पास संपत्ति हो निंदा के पात्र ना हो और आदमी शूरवीर हो और अपनी वीरता को बढ़ा चढ़ा के न बताए, तो ये दुर्लभ लोग हैं। इस पैरामीटर पर अगर आज के समय में आप लोगों को देखें तो मैक्सिमम लोग आपको इसी तरह के मिलेंगे जो ऐसा करते हैं, यानी ये दुर्लभता आज भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इस जीवन में भय और भ्रांति का क्या कारण है?
0: भय और भ्रांति का कारण जो

0: हम लोगों ने पहले भी बात की, धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी विषय को बढ़ाने वाला है, ऐसा राम जी ने साफ कह दिया कि मैंने जो जगत देखा उसमें धन संपत्ति ने ही व्यक्ति को भय और भ्रांति में डाल रखा है। भ्रांति का मतलब ये हुआ कि जैसे धन से हम संसार में सुख प्राप्त करेंगे, जबकि धन से असंतोष प्राप्त होता है और असंतोष दुख ही देता है। संतोष धन के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और धन कभी संतुष्ट करता नहीं है, तो एक प्रकार की भ्रांति ने जन्म दिया इसको। और भय ये है कि जब आपके पास कुछ खोने को होता है तभी आप भयभीत होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो धन जब आपके पास आता है, वो आते ही सबसे पहले आपको भयभीत करता है कि कहीं आपसे ये छिन न जाए, क्योंकि आपके पास इकट्ठा हुआ है। इसके लिए कथा भी आती है, आप गांव में लोग सुनाते हैं कि एक बड़ा पहलवान था, वो था तो बहुत गरीब लेकिन बहुत निश्चिंत रहता था और उसको कोई हरा नहीं पाता था। तो एक दिन जो वहां के सामंत लोग थे वो पूछे कि इसकी इस ताकत की वजह क्या है, तो कहा साहब उसको चिंता नहीं है इसलिए ये ऐसे रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक दिन जाओ उसको 99 रुपए दो,
1: चिंतित कर दो,
0: चिंतित करो उसे। तो 99 जैसे ही आपके पास आएगा, अब आप खर्च करने नहीं, एक को जोड़ने की सोचेंगे ताकि 100 हो जाए,
1: है
0: ना। तो कहते हैं ना कि 99 के चक्कर में लोग फंसे हैं, तो यही है 99 का चक्कर, कि जहां आप जोड़ने पर, संग्रह पर लग जाए, तो संपत्ति जो है ये आपको संग्रह करने की तरफ ले जाती है। तो हालांकि ये गलत नहीं है, संग्रही होना चाहिए, इसका कभी भी हमें सही और गलत के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टि की दृष्टि से देखना चाहिए कि वास्तव में जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वो हमारे सुख की वजह है, और अगर हमारे पास नहीं है तो जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो जब उनको भी आप देखेंगे तो ऐसे में देखेंगे चित्त आपका शांत हो जाएगा। देखिए, चित्त की शांति का एक मूल कारण है वैराग्य। इसीलिए योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ या कभी भी योग की शुरुआत हमेशा वैराग्य से होती है। वैराग्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप संसार को छोड़ करके कहीं दूर भागें। वैराग्य का अर्थ यह है कि आपके चित्त को संसार जिन कारणों से मलिन करे, दूषित करे, उन कारणों को सही अर्थों में समझ करके अपने चित्त को दूषण से बचा लें, इसका नाम है वैराग्य। और इसी का अभ्यास करके आप अपने चित्त की चंचलता को रोक सकते हैं। एकाग्रता आप में विकसित हो सकती है, और जीवन में जब एकाग्रता आती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप अर्जित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस जो चित्त को अपने वश में कर सकते हैं। तो वैराग्य प्रकरण ये आता है। तो चित्त जो है ये संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाली है, ऐसा साफ साफ राम जी कह रहे हैं। राम जी को देखने में ऐसा आया। और ये विषाद रूपी विष को बढ़ाती है और व्यक्ति के जीवन में तमाम संकल्पों का विकल्प खड़ा करती है। अच्छा। आप देखिए, संपत्ति के नाते हम बहुत सारे विकल्प खड़ा करते हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो ये विकल्पों में ले जाती है। इसलिए आप एक ऐसी यात्रा में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
1: योग वासिष्ठ में क्या बताया गया है कि अनर्थकारी जो कर्म है उनका जन्मदाता कौन है?
0: अनर्थकारी कर्मों का जन्मदाता अर्थ है, ये योग वासिष्ठ में राम जी कहते हैं कि जो ये अर्थ है यही व्यक्ति को अनर्थ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में भी देखें तो तमाम सारे जो जांच होने के बाद कुछ लोगों के पास जो संपत्ति मिलती है उसमें आप देखिए तो वो जो अनर्थकारी कर्म उन्होंने किया है किसके लिए किया है? अर्थ के लिए किया है, उससे अर्थ ही प्राप्त हुआ है और उस अर्थ ने उनका पूरा साम्राज्य व्यर्थ कर दिया। तो ये अनर्थकारी कर्म तो हुआ, अनर्थकारी कर्म करके अर्थ इकट्ठा हुआ और फिर इकट्ठा अर्थ ने अनर्थकारी कर्म का रूप ले लिया और आप समाज में किसी लायक नहीं बचे, है ना, कोई प्रतिष्ठा नहीं बची। तो इस तरीके से अगर देखें तो धन का ये महत्व जो लोग जानते हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं, वो धन के इस प्रभाव से अपने को मुक्त कर पाते हैं, या जो धन के प्रति वैराग्य का भाव उनके अंदर है वो सदा बना रहता है, तो इसलिए वो उसका अर्थकारी उपयोग करते हैं।
1: तो अर्थ से अनर्थ है और अनर्थ से सब व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ जी, अनर्थ से सब व्यर्थ है।
1: आयु के संबंध में भी योग वासिष्ठ में बात हुई है, क्या आयु मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण हो सकती है?
0: बिल्कुल, आयु ही मनुष्य के जीवन में क्लेश का कारण बनती है, क्योंकि महापुरुषों की आयु लाभ हानि सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। यानी जो महापुरुष लोग हैं उनकी आयु सुखदायिनी है, लेकिन जो लोग विवेकवान नहीं हैं उनके आयु में आप देखें तो वो सुख को पाना चाहते हैं, दुख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब सुख दुख के प्रति उनके अंदर समदृष्टि नहीं है। जबकि सच ये है कि सुख और दुख दोनों आपके आयु को खाते हैं। जिसको कहा जाता है ना रात दिन, ये दो काले और सफेद चूहे हैं जिसको काल भी कहा गया है, जो आपकी आयु को कुतर रहे हैं। तो अगर देखें तो सारे क्लेश का कारण जो है ये आयु है। अब ऐसे में क्लेश से बचने का उपाय क्या है, तो कहते हैं कि वो सुख दुख में चित्त को समान भाव से स्थिर रखना रखा जाए, योग की सिद्धि की जाए, जो समत्वम योग उच्चते भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो उस समान बुद्धि वाली जब दृष्टि आपकी होगी, उस बुद्धि से जब आप युक्त होंगे जिसमें सुख दुख समान भाव से आप ग्रहण कर सकें, तो फिर आपके लिए आयु सुखकारी है और ऐसा महापुरुषों के साथ है। अन्यथा ऐसी दृष्टि अगर नहीं है, सुख दुख में विषम भाव है, तो ये जो दुख आयु है ये क्लेश का ही कारण है, ये दुख ही देगी, अहंकार की वृत्ति को बढ़ाएगी और अंततः व्यक्ति सुख दुख राग द्वेष में अपना जीवन व्यतीत कर देगा।
1: तो जीवन को लेकर महापुरुषों का जो भाव है वो इस तरह का होता है। संत कबीर दास ने भी अमनी भाव दशा का जिक्र किया है और योग वासिष्ठ में भी ये बात आती है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए आप इसकी व्याख्या करें।
0: देखिए अमनी मतलब कहते हैं ये कि मन से मनन करके आप अमनी दशा को प्राप्त हो जाएं।
1: मन से मनन
0: करके अमनी दशा, अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये अमनी दशा कबीर साहब भी कहते थे अमनी भाव। अमनी भाव का मतलब जहां मन अब क्रियाशील नहीं है, मन में अब वेग नहीं आ रहे हैं। जब अमनी की बात आई तो मुझे एक दोहा याद आ गया जिसमें कहते हैं कि लहरें ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत।
1: अच्छा,
0: अब देखिए लहरें अगर पानी को खोजने लगे और कपड़ा सूत को खोजने लगे, क्योंकि सूत से ही तो बना है,
1: उसी से बना है,
0: और जीव ब्रह्म को खोजने लगे, तो जीव ब्रह्म ही तो है, अज्ञानतावश जीव बना हुआ है।
1: जी जी।
0: तो ये एक प्रकार की क्या है, इसको कहते हैं ये दोनों जो है मूर्ख हैं, दोनों जो है ये कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसलिए भगवान की खोज तक भी नहीं होनी चाहिए। यानी मन ही भगवान खोजता है, अमनी दशा में भगवान की भी खोज नहीं होती। और ये मनन करके, ये चूंकि जिसके मनन किया है, ये मनन में ही ये दोहा बोला गया है कि लहरें पानी से बनी हैं, सूत से कपड़ा बना है, और ब्रह्म ही जीव अविद्या के कारण बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो ज्ञानी लोग हैं ये मन से इस बात का मनन करके अपनी को अमनी दशा में लाते हैं, यानी फिर वहां मन का प्रभाव नहीं होता, मन लहरों की तरह ऊपर नीचे नहीं आता, मन डोलता नहीं है। जिसको कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, है ना, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार फिर क्यों खोले। तो अमनी दशा मतलब हीरा की प्राप्ति, अब उसको फिर बार बार आपको खोलने और जांचने की जरूरत नहीं है। वो महंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तो मान सरोवर की दशा है अमनी दशा।
1: जी जी जी। शशिकांत जी बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज की, मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले उन्हें बहुत पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की धन संपत्ति के वास्तविक स्वरूप पर। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स के जमाने से पहले से मौजूद है और आज भी हमारा साथी बनकर इस धरती पर, यानी लगभग 22 करोड़ सालों से इस धरती का हिस्सा है। यानी हम मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले से ये जीव धरती पर मौजूद है, हमारी संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी कहानियों का एक महत्वपूर्ण किरदार भी रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कछुए की। अब प्रश्न ये उठता है कि कछुए पर आज बात करने का क्या उद्देश्य है। आज है विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, और भी इस बारे में आपसे चर्चा होगी। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जो कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, वर्तमान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं। आपने भोपाल के वनस्पति जगत पर PhD की है तथा पर्यावरण और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। सर, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: कार्यक्रम में सबसे पहला विचार या प्रश्न यही उठता है, ये कछुआ दिवस मनाने का इतिहास क्या है और आखिर ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है?
2: देखिए, कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई है। ये अमेरिका में कुछ संस्थाएं थीं जो कछुए के संरक्षण पे 80 और 90 के दशक में काम कर रही थी।
1: अच्छा।
2: काम करते करते उनको यह एहसास हुआ, डाटा कलेक्शन करके उन्होंने पता लगाया कि कछुओं की जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक इस पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और विधिवत रूप से 23 मई को ये सन 2000 से मनाना शुरू हुआ।
1: अच्छा।
2: अब चूंकि शुरुआत इसकी अमेरिका में हुई थी, पहले अमेरिका में ही मनाया गया, फिर धीरे धीरे कछुओं की गिरती हुई अवस्था को, उनकी संख्या को, उनके महत्व को देखते हुए ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा और आज हम और आप भी उसी कछुआ दिवस को मनाने के लिए चर्चा करें।
1: तो फिर प्रश्न यही उठता है सर कि इसके संरक्षण की हमको आवश्यकता महसूस क्यों हुई?
2: देखिए, कछुआ जो है जलीय इको तंत्र का की स्टोन स्पीसीज है।
1: अच्छा।
2: की स्टोन स्पीसीज क्या होती है कि यदि आपने उस स्पीसीज को निकाल दिया, हटा दिया वहां से
1: जी,
2: तो बाकी जो इकोसिस्टम में वो भी कलैप्स हो जाएगा।
1: अच्छा।
2: पहले जो किले बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनमें एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगाया जाता था जैसे की स्टोन स्पीसीज कहते थे, और यदि उसको हटा लिया जाए तो दीवार समेत छत भी भरभराकर नीचे गिर जाती थी। तो वो शब्द उपयोग किया जाता है ऐसी प्रजातियों के लिए जो कि किसी भी इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे जंगल में टाइगर होता है, या कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें बरगद का पेड़ होता है। तो ये इसी प्रकार से कछुआ, चाहे वो समुद्र का पानी हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, दोनों के लिए की स्टोन स्पीसीज है, इसलिए इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए इस दिवस का मनाया जाना प्रारंभ किया गया।
1: तो सर, मतलब ये कीस्टोन स्पीशी जो है तो वो क्यों बनता है, आखिर कारण क्या है, वो ऐसे क्या काम है उसके, या उसकी क्या गतिविधियां ऐसी हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है इकोसिस्टम की कड़ी में?
2: देखिए, एक तो यदि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से सोचें
1: जी,
2: तो कछुआ सर्वभक्षी प्राणी है।
1: माने
2: वो वेजिटेरियन भी है, वो इंसेक्ट्स भी खाता है, वो सड़ी गली चीजें भी खाता है, वो जीवित चीजें भी खाता है। तो जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा काम कह सकते हैं आप, जो काम नगरपालिका सफाई का शहरी क्षेत्रों में करती है वो काम पानी के अंदर कछुआ करता है।
1: अच्छा।
2: और पानी की तमाम ऐसी गंदगी जो मांस के रूप में होती है,
1: अच्छा,
2: उनका भक्षण करके, और इवन जो दूसरे जंतु मल का विसर्जन करते हैं पानी में, उनका भक्षण भी कर लेता है। तो एक तो बहुत ही अच्छा बड़ा सफाई कर्मी
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: दूसरा, इकोसिस्टम में जो अन्य जंतु हैं उनका बैलेंस बनाए रखता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो कोरल रीफ हैं उनकी रक्षा करने में कछुओं का बहुत बड़ा योगदान।
1: तो सर, अब हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कछुओं की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे इनका हम महत्व समझ सकते हैं?
2: विशेषताओं के साथ साथ ये भी स्मरण रखें कि हम किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कछुओं के बारे में, ताकि उनको जागरूकता हो, या कछुओं के संबंध में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जो उनसे सीधे डे टू डे एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनमें जागरूकता है। तो देखिए, कछुए का एक तो विशेषता यह होती है, समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हों या नदियों में पाए जाने वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलते हैं
1: जी।
2: उनको ज्ञान रहता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: एक तो महत्वपूर्ण बात यह हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कछुए का जीवन काल बहुत बड़ा होता है, यानी वो उस इकोसिस्टम में काफी साल तक बना रहेगा
1: जी।
2: दो बातें हुई। तीसरी बात यह हुई कि वो तालाब की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो मछलियां हैं, जो मेंढक है, जो क्रस्टेशिया है, जो घोंगे है, और जो अन्य प्राणियों का मृत मांस है, उनको सफाई करता रहता
1: जी,
2: है
1: जी,
2: तो आप अपने आप समझ सकती है कि इकोसिस्टम में कछुए कितना बड़ा योगदान निभा रहा है।
1: जैसे हम यदि भूमि पर देखें तो गिद्ध है या कौवे हैं या लकड़बग्घे हैं जो सड़ा गला मांस या इस तरह की चीजें खाके और हमारे इकोसिस्टम को साफ रखने का काम करते हैं प्राकृतिक तरीके से, वही काम कछुआ भी करता
2: है। बिल्कुल, कछुआ उसी तरह का काम
1: जी। तो सर, बात यह आती है कि क्या कछुआ जो होता है उसमें अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं?
2: निश्चित रूप से, कछुए को हम तीन तरह की प्रजातियों में बांटा जाता है अमूमन। कछुए का एक तो ये है कि ऐसे कछुए जो मैरीन वाटर में, यानी सी वाटर में, यानी समुद्री जल में, खारे पानी के वाटर में, पानी में पाए जाते हैं, एक प्रजाति हो गई समुद्री प्रजाति। उनको सामान्यतया टर्टल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक। अब इसके बाद दूसरी प्रजाति हुई जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी जो हमारे नदियों में पाया जाता है मोस्टली, या बड़े बांधों में पाया जाता है, उसमें पाए जाने वाले उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स। तो दूसरी प्रजाति ये हो गई।
1: अच्छा।
2: तीसरी प्रजाति हो गई फ्रेश वाटर मार्स टर्टल, यानी जो थोड़ा कीचड़ में भी रह लेते हैं, ऐसे कछुए। ये तीन प्रजातियां हैं, उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन।
1: अच्छा अच्छा।
2: जो कि ताजा पानी में रहते हैं, उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन। अब इसमें आप मोटे तौर पे, यदि हमको बच्चों को समझाना हो तो मोटे तौर पे बच्चों को सिर्फ दो बातें बताना चाहिए, एक टर्टल, एक टॉर्टाइज। टर्टल जो समुद्र में और खारे पानी में या मीठे पानी में रहता है, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज सामान्यतया स्ट्रॉ टॉर्टाइज के लिए यूज किया जाता है, जो पूरा जीवन काल पृथ्वी पर गुजारता है, टेरिस्ट्रियल होता है, धरातल पर रहता है, पानी में नहीं जाता। तो ये मोटे तौर पे, ये वैज्ञानिक तरीके से देखें तो मैंने तीन तरह में विभाजित कर दिया, समुद्री कछुए, फ्रेश वाटर कछुए और मार्श वाले, मर्ड वाले कछुए। और यदि हम बिल्कुल साधारणीकरण कर दें उसका, तो दो कछुए होंगे, एक होगा टर्टल और दूसरा होगा टॉर्टाइज, जो कि भूमि पर।
1: अच्छा, तो सर जो टॉर्टोइज है, जो भूमि पर रहता है, वो पानी में भी रहने के का अभ्यस्त होता है ना सर?
2: नहीं, उसने अपने आप को ढाल लिया है जमीन पर रहने के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो वो पानी में नहीं रहता, पानी का बिल्कुल अभ्यस्त नहीं रहता। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगा
1: जी, जी।
2: कि जो कछुओं का विकास हुआ है, जो विकसित हुए हैं कछुए
1: जी,
2: इनको भी रीढ़धारी प्राणियों में गिना जाता है। एक अकशेरुकी होते हैं, कशेरुकी होते हैं, तो ये कशेरुकी प्राणी होते हैं।
1: अच्छा।
2: तो इनका जो विकास हुआ है ये उभयचर से हुआ है, एम्फीबियंस से हुआ है, जिसका उदाहरण हम मेंढक समझ सकते हैं।
1: अच्छा।
2: मेंढक जैसे धरती पे भी काफी आराम से रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, तो कछुओं का, कछुओं के जो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, सरीसृप कहलाते हैं, उनका विकास, विकास के क्रम में विकसित हुए हैं वो उभयचर से।
1: अच्छा, तो सर मुझे अब इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि विश्व में, भारत में और मध्य प्रदेश में कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं कछुओं की?
2: देखिए, पूरे आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें
1: जी,
2: तो लगभग 300 के आसपास प्रजातियां पूरे विश्व में कछुओं की पाई जाती हैं।
1: अच्छा।
2: जिसमें समुद्री कछुए भी शामिल है और पानी में, फ्रेश वाटर में रहने वाले समुद्र कछुए भी शामिल है
1: जी।
2: हमारा जो भारत देश है उसमें जो कछुए पाए जाते हैं वो लगभग 30 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: अच्छा।
2: हमारे भारत देश में
1: जी,
2: और 30 से लगभग सभी प्रजातियां जो हम छोड़ दें, हमारे कुछ असम वाली प्रजातियां छोड़ दें, उड़ीसा वाली प्रजातियां छोड़ दें, तो फ्रेश वाटर की काफी सारी 30 प्रजातियां लगभग हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं।
1: अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि एक उभयचर प्राणी है जो कछुआ है, और कशेरुक है यानी कि जिसकी मेरुदंड होती है
2: जी।
1: तो सर एक बात यह भी आती है कि बहुत ही जिज्ञासा रहती है हमको भी और बच्चों को भी, कि उसकी वो शेल होती है, जो उसका कवच है, वो क्या है सर? वो हड्डी है या मांस है या ये क्या चीज है जो उसकी रक्षा करता है?
2: हाँ, यह आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। उसके पहले हम थोड़ा सा धार्मिक पृष्ठभूमि की बात
1: करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: शेल के बारे में तो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर यह बताऊंगा कि पहले जब लोहे का आविष्कार करके ढाल नहीं बनाई गई थी, तो जो योद्धा लोग थे जो युद्ध में जाते थे, वो तलवार के साथ जो ढाल का उपयोग करते थे, उसके उसी शेल का उपयोग, कछुए की शेल का उपयोग करते थे। और रासायनिक संगठन मुख्यतया इसका कैल्शियम कार्बोनेट और उसी से मिलते जुलते अन्य चीजों का होता है, जिससे हमारा कैरोटीन हमारा ये बना होता है, नाखून वगैरह बने होते हैं उससे बना हुआ होता है। हम आते हैं भारतीय संस्कृति में कछुआ, हमारे धर्म में कछुआ और हमारे आध्यात्मिक जीवन में कछुआ। आध्यात्मिक की बात जब आती है तो गीता के पांचवें अध्याय के एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है, अपने कवच के अंदर समेट लेता है, इसी तरह से जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके ध्यान लगाता है वो सच्ची ध्यान की ओर अग्रसर हो।
1: क्या बात है, मतलब कछुए का उद्धरण गीता में भी है,
2: ऋग्वेद में भी है।
1: अच्छा,
2: ऋग्वेद में भी गीता का दिया गया, शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है। मगर एक और दूसरी बात है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी वैज्ञानिकता को धर्म से जोड़कर समझाने का एक प्रयास है कि विष्णु के जो दशावतार हैं उसमें एक कच्छप अवतार भी है, कूर्मा अवतार भी है। उसकी कहानी है, हम यदि संक्षेप में आज के दिन उस कहानी को याद करना चाहें कि जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन क्या, हम हर तरह का, जैसे हमारा वैचारिक मंथन करते हैं तो विचार निकल के आते हैं, हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो भी एक तरह का मंथन है। तो इसी तरह से मंथन शब्द जो है वो एक तरह से वैचारिक चीजों से जुड़ा हुआ शब्द है, मथना। तो भाई इंद्र परेशान हुए, उनका बहुत सारी चीजें छिन गई उनसे, तो वो भगवान विष्णु के पास आए कि मैं क्या करूं भगवान, तो उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो असुर और सुर माने देवता और राक्षस दोनों ने से ने समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र को मथने के लिए क्या करा जाए, तो आधार बनाना पड़ेगा मटका जैसा,
1: जी बिल्कुल,
2: तो और दूसरा होगा मथानी। तो ऐसा कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत था उसका बनाया आधार, यानी मटका जैसा बनाया, और वासुकी नाग थे उनका बनाया रस्सा और मंथन हुआ। तो अब ये हुआ कि वो जो पर्वत था उसका कोई आधार नहीं था, वो पर्वत शने शने समुद्र में डूबने लगा। तो सब देवता और असुर दोनों ने प्रार्थना करी विष्णु भगवान से, तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने तब कूर्मा उतार लिया, कछुए का उतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे उठा लिया और उसको डूबने से बचा लिया। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। तो दरअसल देखिए, कोई भी पुराणों में जो कहानियां आई है या हमारे संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता लिए हुए होते हैं कि एक तो मंथन करेंगे आप तो ही कुछ अमृत मिलेगा, अमृत पाएंगे। उसका मतलब का ये नहीं है कि आप मथानी लेके दही मिल ले, मतलब वैचारिक मंथन करेंगे तो ही आपको कुछ मिल पाएगा। दूसरा ये भी हमको पता चलता है कि हमारे पुराणों में पहले से इस बात का उल्लेख है कि जीवन का जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। जैसा आपने अभी कहा 25 करोड़ साल पहले कछुआ पाया जाता था, इसका मतलब हम हमारे पास इस बात के पहले भी कहीं ना कहीं चिंतन करके हम इस बात को अपने सामाजिकता में ला चुके थे कि कछुआ बहुत पुराना जीव है।
1: जी सर, ये तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ हुआ, पौराणिक संदर्भ हुआ। तो इसी से मिलती जुलती एक बात यही आती है कि कहा जाता है कि कछुओं की बहुत उम्र होती है, लंबी उम्र होती है, तो कितने इनका जीवन काल होता है सर?
2: देखिए, अब ये इसमें भी कछुए के उम्र को लेके भ्रांतियां हैं। मैं स्पष्ट करूं आपको कि एक वैज्ञानिक तथ्य जो है, एक अध्ययन हुआ था, एक कछुआ वैज्ञानिक आधार पर 152 वर्ष का पाया गया था। कछुए जीते हैं, काफी लंबी आयु जीते हैं, कैप्टिविटी में भी जीते हैं और खुले क्षेत्रों में भी जीते हैं, मगर जो हमारे पास रिकॉर्डेड है 152 वर्ष का कछुआ है। अभी आप कह रहे थे कि क्यों संरक्षण किया जाए, देखिए ये भी एक मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और हम ऐसे भी समझा सकते हैं लोगों को कि क्यों कछुए का संरक्षण किया जाए। कल को मनुष्य अपनी आयु 152 साल करना चाहता है, निश्चित रूप से जीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे जीन्स की। यदि कछुए का उसे 152 साल वाले कछुए का जीन सुरक्षित रहता है तो हम उन जीन्स को मनुष्य के जीन्स के साथ मिलाकर, ये जीन टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का युग आ गया है, चल रहा है, तो यदि हमने किसी प्रकार से हमारा जीन में परिवर्तन कर देंगे तो मनुष्य भी बड़ी आसानी से 152 साल जी पाएगा। तो इसलिए भी कछुए का संरक्षण करना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा जीव चलता फिरता है जिसकी आयु 152 साल वैज्ञानिक रूप से प्रूव की है।
1: जी, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही सर। तो यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है, क्या सर कछुए के दांत नहीं होते?
2: आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया
1: जी।
2: कछुए के दांत नहीं होते, मगर उसका जो मुंह के अंदर जो संरचना होती है
1: जी।
2: वो काफी कठोर होती है खाने के लिए। दूसरी बात क्या कि मैंने आपसे कहा है कछुए का भोजन क्या होगा, मेंढक होगा, मछलियां होंगी, कुछ क्रस्टेशियंस होंगे, कुछ घोंगे होंगे
1: जी।
2: और इसके बाद मृत मांस होगा, सड़ा हुआ मांस होगा। तो इन सबको चबाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कछुओं के दांत नहीं पाए जाते, ये सही बात है।
1: तो सर इनका मैंने सुना है कि इनकी हृदय गति भी बहुत धीमी होती है सर।
2: निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। एक कछुआ होता है के बारे में अध्ययन किया गया, 2 साल बिना खाए पिए जीवित रहा, उसको कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया। यानी जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ज्यादा आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे हमारा हम वार्धक्य आ जाता है, हमारे बुढ़ापा आ जाता है, तो चूंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है इसलिए हम खाना भी कम हो जाता है और डाइजेशन पावर भी कम हो जाता है। तो कछुए के साथ यही बात है कि वो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। एक और बात आपको बताऊं मैं कि कछुए भी हम जो आसपास जगत देखते हैं, हमारा जंतु जगत, उसमें एक तो मनुष्य और दूसरा पक्षी, इनका शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है
1: जी।
2: ये समतापी हैं। जैसे हमारे मनुष्य का जीव तापक्रम है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्थिर है
1: जी।
2: ऐसा नहीं होगा कि सर्दी आएंगी तो हमारे शरीर का तापक्रम गिर के 90 हो जाए और गर्मी आने लगे तो 101 हो जाए, स्थिर रहता है। परंतु कछुआ ऐसा जीव है जिसके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए हम देखेंगे कि सर्दी में कछुए पानी के बाहर आकर बास्किंग करते हैं, उसको तकनीकी भाषा में, वन्य प्राणी की भाषा में बास्किंग कहते हैं, आके धूप सेक के अपना तापक्रम, शरीर का तापक्रम बढ़ाते हैं। और गर्मियां आती हैं तो वो सामान्यतया पानी में ही रहते हैं, बाहर आके बास्किंग नहीं करते, पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बहुत से कछुए ऐसे होते हैं जिसका मैंने आपको बताया ना, ट्रॉटर्डाइस, वो हाइबरनेशन एक तरह से सर्दियों में खाना पीना बंद कर देता है।
1: अच्छा,
2: या ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उसका खाना बहुत कम हो जाता है।
1: यानी सर तपस्वियों का जीवन है, इसीलिए तपस्वियों जैसा उनकी आयु भी है,
2: आयु भी है, वैसे ही उनका जिसको हम कहेंगे चयापचय की दर या मेटाबॉलिक रेट उनका कम है, इसलिए उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा
1: जी। सर एक प्रश्न मेरा मन में ये भी आ रहा है कि जो जलीय कछुए हैं क्या वो मछली की तरह पानी में ही सांस ले लेते हैं या उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है?
2: बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा
1: जी।
2: इस प्रश्न को मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगा कि हमें समुद्री कछुए जो होते हैं, जो मैरीन रेटाइल कहलाते हैं, वो हम 5 कछुओं की बात करेंगे।
1: अच्छा जी,
2: ठीक है। पहला कछुआ होता है समुद्री कछुआ, बोलते हैं ग्रीन टर्टल। अब आपने सांस रोकने की बात करी, ग्रीन टर्टल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 5 घंटे तक सांस रोके रहता है पानी।
1: क्या बात,
2: समुद्री कछुआ है। दूसरा टर्टल है ओलब रिडले टर्टल, ये बड़ा खबरों में रहता है पूरी दुनिया में, क्यों रहता है मैं आपको भी बताता हूँ। नहीं, तीसरा है हॉकबिल कछुआ, ये समुद्री कछुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा है लैदरी टर्टल, इसको शेर कछुआ कहते हैं। और विशेषता क्या है शेर कछुआ क्यों कहते हैं, इसका वजन 1000 किलो के आसपास होता है, बड़ा भारी कछुआ होता है।
1: अच्छा, तो सर ये मतलब समुद्र में इतना बड़ा
2: कछुआ पाया जाता है। और फिर इसके बाद है लॉगरहेड कछुआ, ये लॉगरहेड कछुआ लगभग विलुप्ति के कगार पे है, कम मिलते हैं। ये 5 तरह के प्रमुख कछुए हैं जो समुद्र में मिलते हैं। तो अब मैं आपको जो ओलिव रिडले टर्टल, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारे भारत के हिंद समुद्र तट पे पाया जाता है, उड़ीसा में खास तौर से। तो ये कछुआ काफी बड़ी संख्या में, ये ग्रुप बना के, समूह बना के रहते हैं। कछुआ अकेले रहने वाला प्राणी नहीं है,
1: सामाजिक प्राणी है,
2: समूह बना के रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया अपनी गति करते हैं, तो इन्हें दिशा किस दिशा में जाना है, बीच समुद्र में है उनको किनारे पे आना है तो कैसे आएंगे, वो आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। मैंने कहा
1: मैग्नेटिक मतलब कि सर साउथ और नॉर्थ का इनको ज्ञान है,
2: चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं, उसके हिसाब से गति करते हैं। अब इनको अपना प्रजनन करना है, बच्चे देना है। जितने भी दुनिया में कछुए पाए जाते हैं रहते जरूर पानी में हैं, परंतु प्रजनन वो जमीन पे आके करते हैं।
1: अच्छा सर, समुद्री जो कछुए हैं वे
2: वो भी करते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और जो कछुए बाहर पृथ्वी पे रहते हैं वो तो करेंगे करेंगे
1: जी,
2: और मैंने आपको तीसरा मार्श वाले कछुए बताए वो भी करेंगे
1: जी।
2: तो ये समुद्र के तट पे जहाँ रेत होती है वहाँ समुद्री कछुए करते हैं, जहाँ रेत नहीं होती वहाँ पृथ्वी पे पाए जाने वाले कछुए भुरभुरी मिट्टी में करते हैं
1: जी।
2: जो ओलिव रिडले आपको टर्टल्स की बात कर रहा था, ये कहा जाता है कि समुद्र का सबसे छोटा कछुआ है
1: जी।
2: बड़ा इंटरेस्टिंग है, हजारों की संख्या में उड़ीसा के तट पर आता
1: जी।
2: है और उड़ीसा के तट पर आकर ये केवल प्रजनन करने के लिए आता है। मादा आती है, अंडे देती है वहां पे
1: जी।
2: और इनक्यूबेशन जिसको हम कहते हैं कि वो जैसे माँ गर्भ में अपने बच्चे को रखती है 9 महीने तक
1: जी,
2: या मुर्गी अंडे पे बैठ के उसको अंडा सेती है
1: जी, जी।
2: इसी तरह से उनका इंक्यूबेशन, उनका गर्भ वो समुद्र की रेत होता है।
1: अच्छा,
2: अंडों का।
1: अच्छा अच्छा,
2: अंडे उसमें दबा देते
1: जी
2: हैं।
1: मतलब समुद्र की रेत में गड्ढा खोद के उसमें अंडे दिए,
2: अंडे बाहर बाहर आके।
1: अच्छा,
2: तट पे
1: जी,
2: समुद्र के पानी के अंदर नहीं, तट पे
1: बिल्कुल।
2: इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं और वो 40-45 दिन 80 दिन जितना भी उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसके बाद उसमें से वो बच्चे निकलते हैं और वो बच्चों को जन्म से ही मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान होता है।
1: अच्छा।
2: वो तर के समुद्र की तरफ चलने लगते हैं।
1: क्या बात है,
2: उल्टा नहीं चलते, ऐसा नहीं चलेंगे कि जिधर समुद्र उस तरफ चलना शुरू कर दे। वो माँ नहीं आती उनको लेने के लिए।
1: अच्छा।
2: माँ का काम है अंडे दिए चली गई वापस समुद्र में, ना रक्षा करती ना कुछ करती, और फिर वो अपने आप समुद्र में जाके अपने समूह से जाके मिल जाते हैं, ओलिव रिडले टर्टल।
1: अब प्रश्न यही आता है सर कि आखिर इतनी प्यारी प्रजाति जो है कछुआ प्रजाति, ये विलुप्त क्यों हो रही है? क्या कारण है कि ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए?
2: देखिए, उसी के लिए तो विश्व कछुआ दिवस मनाना शुरू किया गया है कि जागरूकता आए। नंबर एक जो बात है, हैबिटेट लॉस।
1: अच्छा,
2: उनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट होता जा रहा है। तालाब थे उनको खत्म कर दिया
1: जी,
2: नदियां हैं उनको खत्म कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं, या तो नदियों को हमने समाप्त कर दिया है, समाप्त नहीं कर पाए हैं तो प्रदूषित कर दिया
1: जी,
2: है उनको। तीसरी बात है, समुद्र के कछुओं के बारे में यदि आप सोचें तो प्लास्टिक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं छोटे छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं जिनको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, और माइक्रो प्लास्टिक्स को वो कुछ आहार समझ के कछुए खा लेते हैं।
1: अच्छा,
2: तो उसके कारण नाश विनाश हो रहा है उनका। दूसरा हो रहा है कि कई बार समुद्र में तेल छोड़ा जाता है, तेल जैसी ग्रीस जैसी चीजें, ऑयल जैसी चीजें छोड़ दी
1: जाती
2: है
1: जहाजों से जो लीक हो जाती
2: लीक हो जाता
1: जी,
2: है
1: जी, जी,
2: उसके
1: जी।
2: अलावा भी जो प्रदूषित पानी है उसके साथ बहुत सारा शहरों के पास जहाँ समुद्र में प्रदूषण का पानी छोड़ रहे हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है पानी उसके ऊपर तेल की
1: जी,
2: जिसके कारण अंदर कछुए को सांस लेने में तकलीफ होती
1: है।
2: सभी कछुए ऐसे नहीं होते कि 2-2 घंटे सांस रोक लें, सांस तो सबको ऑक्सीजन सब
1: उन्हें सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए,
2: सांस लेने के लिए सतह पर, या जो ऑक्सीजन पानी में है
1: जी जी
2: उसमें उससे लेंगे, वो पानी की ऑक्सीजन लेंगे
1: जी, जी,
2: तो पानी की ऑक्सीजन भी यदि आप उसके ऊपर ऑयल की सतह बना देंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो पानी में अब्सॉर्ब होती है वो कम हो जाएगी,
1: कम हो जाएगी।
2: तो ये बड़े कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि जो लोग मछली पकड़ते हैं उसके साथ साथ कछुए भी पकड़ लेते हैं, तो कछुआ पकड़ में आ जाता है तो वो कछुए को बेच देते हैं। कछुआ, कुछ लोग कछुए खाते भी हैं जो कि हमको आहार के रूप में दूसरी चीजों पे जाना चाहिए बजाय कछुए के, उसके कारण भी कछुओं के जीवन पर संकट आ रहा है। एक बड़ा संकट और आ रहा है बांध बनने के कारण।
1: अच्छा,
2: बांध बनने के कारण बांध के किनारे पे कछुए नहीं पहुंच पाते जहां उनका उनको अंडे देना है,
1: आवास था,
2: आवास था
1: जी,
2: तो,
1: जी, जी।
2: तो सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो आवास का संकट है कछुओं के साथ, इसलिए कछुओं की संख्या में कमी आ रही है। अब मैं अभी समुद्री कछुओं के बारे में तो आपने पूछ लिया था मेरे से, किंतु आपने मीठे पानी के कछुए के बारे में नहीं पूछा जो हमारे मध्य प्रदेश के कछुए हैं। बताना चाहें लोगों को कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे कछुए हैं, 5 प्रमुख कछुए जिनका संरक्षण होना चाहिए और जो समाप्त होते जा रहे हैं, तो उनमें पहला कछुआ जो है वो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टर्टाइल्स और टेरापिन कहलाते हैं, तो पहला वाला फ्रेश वाटर टर्टल है, रेड क्राउन रूफ टर्टल।
1: अच्छा, जो ये मध्य प्रदेश में,
2: जो मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी में मिलता है, मुरैना में पाया जाता है।
1: अच्छा,
2: ये बहुत ही नियर टू एक्सटिंक्शन है। अब आप समझेंगे, एक तो मनुष्य का लालच, रेत की खुदाई,
1: अच्छा, रेत खनन।
2: रेत खनन। और देखिए मैंने आपसे कहा कि वो बच्चे कहाँ दे रहा है अपने अंडे, कहाँ दे रहा है?
1: तट पर आकर ही देते
2: हैं। तट पर आकर रेत में दे रहा है और उस रेत को आप भर के ले जा रहे हैं
1: जी।
2: तो एक बड़ा कारण उनका यह है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय, इनको मॉनिटरिंग करती है, इनको उसने रेड डाटा लिस्ट में डाला हुआ है कक्षार्थी के कार पे। दूसरा एक सामान्य कछुआ है जिसको जो हम लोग देखने में आता है, फ्लेप शेल टर्टल।
1: अच्छा।
2: उसका जो ऊपर की जो वो रहता है ना, वो बिल्कुल जरा नाजुक सा रहता है।
1: अच्छा, नरम रहता है।
2: फ्लेप शेल टर्टल। नंबर तीसरा है गंगीज सॉफ्ट टेल टर्टल। गंगा में और उसकी गंगा की जो सहायक नदियां, जैसे आप गंगा की सहायक नदियां किसको कहेंगे? बेतवा को कह दीजिए, चंबल को कह दीजिए, इनमें जो पाया जाता है यमुना है, इन इसको मिलता है गंगीज सॉफ्ट शेल टर्टल। तीसरा है थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। उसके ऊपर तीन लाइन पंक्तियां होती हैं, तीन लाइनें खिंची होती हैं, इसलिए थ्री लाइन रूफ टर्टल कहलाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया वो था स्टार टॉर्टाइस। ये स्टार टॉर्टाइस पाया जाता है कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो ये सारनी बैतूल के जंगल में मिलता है।
1: अच्छा।
2: गांधी सागर के जंगल में मिलता है। ये भी नियर टू एक्सटिंक्शन है, विलुप्ति की कगार पे है, गिनी चुनी संख्या में बचे हैं। इनका भी आवास खतरे में पहुंच गया है। आवास का खतरे में पहुंचने का कारण मेन भी आदमी भी है, पालतू पशु भी है
1: जी।
2: इनके आहार एक बड़ा भी बात हो रही है, आहार
1: जी,
2: ये आहार नहीं है इनके। ये जो स्टार टर्टाइस है बहुत ही सुंदर किस्म का कछुआ है, इसकी तस्करी भी होती है और इसका आहार ये शाकाहारी होता है।
1: अच्छा।
2: तो जंगल में ह्यूमन इंटरवेंशन इतने बढ़ गए हैं कि उसको अपना आहार नहीं मिल पाता है। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा था कि उनके दांत होते हैं कि नहीं होते, तो जिसके दांत होते हैं जरा और चीजें भी खा लेता है, जिसके दांत नहीं होंगे उसको लिमिटेड खुराक ही होगी। तो स्टार टॉर्टाइस भी विलुप्ति के कगार पे है। ये हमारे मध्य प्रदेश के पांच कछुओं के बारे में बात। अच्छा।
1: तो सर, ये जब संरक्षण की बात चल रही है तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि भारत में कछुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम क्या कहीं क्या अभयारण्य हैं, और यदि हैं तो कहाँ कहाँ हैं?
2: देखिए, एक तो बहुत पहले से कछुओं के संरक्षण के बारे में जहाँ चर्चा की, जहाँ काम किया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है, वो है चेन्नई।
1: अच्छा।
2: है ना, चेन्नई में प्रारंभ से ही कछुओं के बारे में काफी काम किया गया है। तो एक तो संरक्षित स्थल है, कोई घायल कछुआ होता है, बीमार होता है, वो लोग इलाज भी करते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं। वहाँ शार्प सेल टर्टल, वहाँ पर साफ डॉटर टॉर्टाइस और सी टर्टल दोनों पे काम किया जाता है। मगर भारत में अभी दो अभयारण्य बनाए गए हैं स्पेसिफिक कछुए के। एक तो बनाया गया है वाराणसी में, वाराणसी में रामनगर के आसपास, रामनगर से लेकर 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो जो गंगा नदी में कछुए पाए जाते हैं, ना केवल उनका संरक्षण हो रहा है बल्कि वहां पर अन्य कहीं से भी कछुए आते हैं तो उनको भी संरक्षित किया जाता है।
1: अच्छा।
2: ये जो संरक्षण वाराणसी में हो रहा है, ये हो रहा है सॉफ्ट वाटर यानी मीठे पानी वाले कछुओं के संरक्षण और उनका अभयारण्य। दूसरा जो स्थान है जहाँ बड़े पैमाने पर कछुओं का संरक्षण किया जाता है, वो उड़ीसा की मैंने आपको बात बताई। उड़ीसा में भी संरक्षण हो रहा है इसका, और वहां पर भी, यहाँ पर ओलिव रिड्रे आते हैं, उस जगह का नाम है केंद्रापाड़ा।
1: अच्छा।
2: तो वो केंद्रापाड़ा में वहां पर संरक्षण करके वहां भी सेंचुरी बनाई गई है और इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो दोनों तरह का संरक्षण हो रहा है, समुद्री कछुओं का भी भारत में संरक्षण के लिए सेंचुरी बनाई गई है और फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए भी बनाई गई।
1: तो सर, ये अभयारण्य में सबसे ज्यादा तो जब इनका क्या कोई विशेष प्रजनन काल होता है, क्या उस समय विशेष ध्यान दिया जाता होगा?
2: मोटे तौर पर ऐसा समझिए, वैसे तो हर कछुए का प्रजनन काल में अंतर होता है।
1: अच्छा।
2: मगर सामान्यतया कछुए बारिश के पूर्व प्रजनन करते हैं ताकि रेत की स्टेबिलिटी बनी रहे और बारिश के पहले बच्चे निकल आए और वो पानी में चले जाए,
1: यानी अमूमन गर्मियों के समय में।
2: गर्मियों में नवंबर से लेके और अप्रैल के बीच में।
1: अच्छा।
2: इनका सामान्यतया प्रजनन काल रहता।
1: तो सर, अब बात यह आती है, आपने संरक्षण के लिए जो अभयारण्य बताए वो, लेकिन हम हमारे स्तर पर कछुओं के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं?
2: एक तो जो लोग कछुओं का शिकार कर रहे हैं
1: जी,
2: अवैध व्यापार कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था, अभी भी ये प्रथा परंपरा है कई देशों में, तो वहां पे कछुओं की मांग रहती है। कछुए का जो शेल होता है ना, उससे कान के टॉप्स बनाए जाते थे।
1: अच्छा।
2: कुछ अंगूठियां बनाई जाती थी, गले में पहनने के गारमेंट्स बनाए जाते थे। कछुए के बारे में मिथक है कि वो यौन शक्ति को बढ़ाता है, वो उसके कारण कहे जाते थे, उसके कारण कछुए का था। अब कछुए के संरक्षण के लिए कछुए जितने प्रकार के कछुए हैं वो सभी के सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शामिल किए गए।
1: अच्छा।
2: यदि कछुओं का कोई मारता है या अवैध व्यापार करता है या अवैध रूप से पालता है तो उस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 3 साल से लेके अधिकतम 6 साल तक की सजा है।
1: अच्छा।
2: तो हमको कछुओं का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि कछुआ बहुत ही विनम्र जीव है, किसी को परेशान नहीं करता, काटता नहीं है, मारता नहीं है, हानि नहीं पहुंचाता, की स्टोन स्पीसीज है, पानी की स्वच्छता बनाए हुए है और हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और जंतुओं को इसलिए संरक्षण करना चाहिए, बेजुबान है, बोलते नहीं है, अपना कष्ट बता नहीं पाते हैं। कछुए दिवस पर जो परिचर्चा है उसमें मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि हमको भी जीवित रहना है प्रकृति के साथ तो कछुओं का भी संरक्षण करना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए आज और आपने कछुए के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई बातें तो हमको आज पहली बार पता चली हैं कि कछुआ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। तो श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति में मनुष्य का बढ़ता हुआ दखल, जैसे कि प्रदूषण है या अवैध शिकार है या हमारे शौक है, इसके कारण इस प्यारे से प्राणी को विलुप्ति की कगार पर पहुंचना पड़ गया। जरूरत है कि हम इनका संरक्षण करें और इसके लिए विश्व में जागरूकता बढ़ाएं, और इसीलिए ही इस विशेष दिवस को यानी विश्व कछुआ दिवस को हम मनाते हैं। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

ये समारोह 24 मई तक चलेगा। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए संतवाणी समारोह में। यह है भक्ति गायन पूर्वी सप्रे का।

इसके पश्चात राग मिश्र किरवानी में एक भजन है कबीर जी का, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे दादा गुरु जी, मेरे पिताजी के गुरु जी लेट मिस्टर तनवानी, उन्होंने इसकी धुन बनाई है जो कि बहुत बहुत सुंदर है। मिश्र किरवानी है ये राग, तो आगे चाहूँगी गुरु जी से आगे सभी से आगे चाहूँगी।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का प्यार भरा नमस्कार।
2: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार। इतिहास, आज तुम इस तरह अपने में खोए खोए कहाँ पहुँच गए हो?
1: तारीख, मैं हूँ झारखंड में।
2: अच्छा इतिहास, तो इसे विस्तार से समझाओ।
1: झारखंड का छोटा नाग, जहाँ मुंडा और उरांग जनजातियाँ इस विस्तृत और सघन वन क्षेत्र में उन्मुक्त और प्राकृतिक जीवन जीती है और अपने सिंगबोगा, नगेरा, बुरुबोगा, जेहरा, एरा आदि आराधनाओं में लगी रहती हैं। पर अंग्रेज शासकों की दखल अंदाजी, जमींदारों की बैठ बेगारी, ठेकेदारों द्वारा शोषण और धार्मिक संस्थाओं द्वारा बहला फुसला करके धर्मांतरण में उन्हें समय समय पर विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया है।
2: हाँ, देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में देश के अलग अलग हिस्सों के आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपनी आजादी के लिए झारखंड की विभिन्न जनजातियों और समुदाय ने विभिन्न कालखंडों में अनेक विद्रोह किए। इनमें प्रमुख थे पहाड़िया विद्रोह, भूमि विद्रोह, कोल विद्रोह, संथालम, सरदार विद्रोह, मुंडा विद्रोह आदि।
1: हाँ, और इसमें सबसे प्रसिद्ध है सन 1811 का मुंडा विद्रोह। और इस विद्रोह के नायक पता कौन थे?
2: कौन थे?
1: बिरसा मुंडा, जिसने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बिरसा मुंडा ने जवानी में कदम रखते ही अपने इलाके के आदिवासियों के लिए संघर्ष का बिगुल बजा दिया। मात्र 26 वर्ष की आयु में उस क्षेत्र का सबसे पूज्य मसीहा बन करके सिंगबोहा यानी परम पुत्र धरती आंबा के रूप में दुनिया से कूच कर गया। आज भी झारखंड के आदिवासी अंचल में उनकी याद में कितने ही लोकगीत गाए जाते हैं।

0: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 को छोटा नागपुर की ऐतिहासिक धरती पर रांची जिले के अलीहुआतु में डोमवारी पहाड़ी की गोद में हुआ। बिरसा के पिता सुगना मुंडा एक गरीब किसान थे जो बाद में ईसाई धर्म स्वीकार करके मसीह दास मुंडा कहलाने लगे। बिरसा का बचपन अपने ननिहाल चकलन में बीता। गरीब माँ बाप की दयनीय स्थिति का प्रभाव उनके व्यक्तित्व जीवन पर स्पष्ट रूप से पड़ा, जिसने उन्हें संघर्षशील बना दिया।
1: शुरू में तो वे मिशनरी के प्रभाव में रहे, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा मिशन स्कूल में हुई थी, किंतु वैष्णव धर्मावलंबी शिक्षक आनंद स्वामी के संपर्क में आने के बाद धर्म के प्रति उनका नजरिया बदल गया। रामायण, महाभारत, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद आदि का अध्ययन और श्रवण करते करते वे अपने समाज में सोखा और गुणी समझे जाने लगे। संघर्ष में पला बड़ा बिरसा का हृदय लोगों का दुख दर्द दूर करने में अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता था।
0: बिरसा मुंडा चटुपूर्ति गोत्र के थे, जिसके पूर्वज चटियार नगर में राज किया करते थे। बिरसा के लिए यह बड़े गर्व की बात थी, जिसने उन्हें कभी हीन भावना का शिकार नहीं होने दिया। उनके मन में राम कृष्ण ईसा मसीह के उपदेश गूंजते रहते थे। धीरे धीरे एक साधुवादी और समाजवादी धर्मगुरु के रूप में वे विकसित होते गए। उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। बिरसा को लोग उनके नए पंथ का भगवान मानने लगे और उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए कृत संकल्पित होते गए।
1: अब बिरसा मुंडा एक धार्मिक नेता थे और उनका प्रौढ़ होता मन समाज को बदलने का संकल्प ले रहा था। शीघ्र ही उनका आंदोलन धार्मिक आंदोलन से खेतिहर मजदूरों के राजनैतिक आंदोलन में बदल गया। जमीन और जंगल पर आदिवासी जनता का अधिकार मानते हुए जमींदारों के हक में बने कानून और मालगुजारी की वसूली को गैर कानूनी बताकर उन्होंने अपने अनुयायियों से मालगुजारी न देने की अपील की। वे गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को धार्मिक और राजनैतिक आधार पर हथियार बंद करने में जुट गए।
0: 22 अगस्त 1895 में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए, पर बाद में आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया। अब उनका सुधारवादी व्यक्तित्व पूरी तरह से राजनैतिक हो गया। अब वे धरती बाबा के नाम से जाने जाने लगे। उनका आंदोलन बिरसैत आंदोलन के रूप में विख्यात हो चुका था।
1: मुंडा समाज की बुराइयों, हंडिया, शराब पीना, डायन ओझा के अंधविश्वास और अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना आदि को दूर करने में वे जुट गए थे। साथ ही जनजातीय समाज की अस्मिता और संस्कृति को नष्ट करने वाले कारकों जैसे अंग्रेज सरकार और उनके देशी दलाल, धार्मिक संस्थाएं, जमींदार, राजा तथा जंगल के ठेकेदारों को जड़ से उखाड़ कर सिंह बोगा भगवान की इस धरती को स्वतंत्र कराने के संकल्प का प्रचार कर रहे थे।

0: इस बिरसैत आंदोलन का जनक था अंग्रेजों के शासनकाल में पनपा असंतोष, जिसकी जड़ में थे अंग्रेज सरकार के कानून, जिसके कारण सामूहिक खेती की उनकी खुटखुट्टी व्यवस्था का बर्बाद होना, जंगलों पर कानूनी बंदिशें लगने के कारण बने कानून जैसे आरक्षण और भू खेती की मनाही, क्षेत्र में बाहर से आने वाले यानी डाकू, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण और ईसाई द्वारा आदिवासियों का धर्म परिवर्तन।
1: बिरसैत आंदोलन के फलस्वरूप मुंडा आदिवासियों का पूरा इलाका जैसे खत्म हो गया। बिरसा की अगुवाई में मुंडा आदिवासी अपने हक के लिए उठ खड़े हुए।
0: 22 दिसंबर 1899 को आताताइयों के खिलाफ कोटगढ़ में मुंडाओं की महती सभा हुई, जिसमें 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के अवसर पर आताताइयों के खिलाफ मोर्चा लेने का संकल्प लिया गया। बिरसा इस आंदोलन को संचालन करने के लिए अज्ञातवास पर चले गए। 24 दिसंबर 1899 की मध्य रात्रि में सरबता, बंडू, बरहू आदि स्थानों पर एक साथ हमला हुआ और बहुत से अंग्रेजों, पादरियों और उनके समर्थकों का कत्ल हुआ। अनेक घायल हुए, कई घर जला दिए गए। सशस्त्र क्रांति की यह पहली चिंगारी थी इस क्षेत्र में।

0: 8 जनवरी 1900 को 10 बजे रांची से आयुक्त और उपायुक्त फौज की एक टुकड़ी लेकर खूंटी पहुंच गए। भारी सेना के आगे भी हजारों बिरसैत अपने नायक बिरसा के संदेश की प्रतीक्षा में थे। उपायुक्त ने उनसे अपने परंपरागत हथियार डालकर अपना आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, पर बिरसैत नायक ने कड़कती आवाज में कहा, तुम सफेद चमड़ी वाले दीकू हमारे देश छोड़कर अपने देश वापस चले जाओ, हम हथियार नहीं डालेंगे।
1: उपायुक्त ने गोलीबारी के आदेश दे दिए और देखते ही देखते देशभक्त मुंडाओं के गर्म खून से डोमवारी पहाड़ी लवलुहान हो गई। पर अंग्रेज एसपी और उपायुक्त को बिरसा नहीं मिले तो नहीं मिले, उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया।
0: मुंडा को इटके गांव के पास पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दो सिपाहियों को मारकर और अपने दाहिने हाथ की बलि देकर वे वहां से भाग निकले, पर बंदगांव राजा के दलाल वीर सिंह महली ने पुरस्कार के लालच में धरती आबा को गिरफ्तार करा दिया।
1: 3 मार्च 1900 की रात में बिरसा गिरफ्तार किए गए। उन्हें गुप्त रूप से पालकी में बिठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के केंद्रीय कारागार लाया गया। पर्याप्त सबूतों के ना होते हुए भी न्यायाधीश काउंडट्स ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा शुरू कर दिया। पर 9 जून 1900 को केंद्रीय कारागार कक्ष में सिंहबुगा का पुत्र धरती आबा बिरसा मुंडा परम ज्योति में विलीन हो गया। उनकी पार्थिव देह धरती एंगा की गोद में समाहित कर दी गई। बिरसा ने सुधारवाद क्रांति की जो मशाल जलाई, उसने आगे के समय में झारखंड प्रदेश के विभिन्न आंदोलनों का मार्गदर्शन किया। बिरसा का पार्थिव शरीर यदि भी पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु बिरसा धर्म आज भी जनजातीय जीवन में रच बस गया है और उनकी पवित्र आत्मदीप शिखा बनकर बिरसैतों का मार्गदर्शन कर रही है।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद,
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने,

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। कर

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे बुंदेली गायन। कलाकार हैं आकांक्षा मिश्रा और उनके साथी।

0: ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में श्रृंखला संभावना के तहत।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुंदेली गायन बुंदेलखंड की माटी की सौंधी खुशबू लिए आल्हा, फाग, लमेटरा और दीवारी गीत इसमें प्रमुख होते हैं। यह छतरपुर सागर क्षेत्र में ढोलक और मृदंग की थाप पर गाए जाने वाले गीत और प्रेम, वीरता, विरह और त्योहारों को जीवंत करते हैं। बुंदेली बोली की मिठास और सहजता इसे सीधे हमारे दिल से जोड़ती है। ऐसे ही बुंदेली गायन को लेकर के हमारे बीच उपस्थित है आकांक्षा मिश्रा जी, उनका साथ दे रहे हैं अरमान विश्वकर्मा ऑक्टोपेट पर, धीरज कुमार साथ दे रहे हैं ढोलक पर, सतीश पांडेय साथ दे रहे हैं हारमोनियम पर और अब्दुल खान बेंजो पर साथ दे रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।
2: राम राम आप सभी जन को। हम आकांक्षा मिश्रा छतरपुर से अपने साथी कलाकारों के साथ आप सभी को बुंदेलखंड की कुछ झलकियां दिखाना चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड कितना मनमोहक है और कैसी कैसी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो सुने आप।

श्री शारदा माई की जय हो। और जब कान्हा बचपन में रूठ गए माँ से कि हमें तो माँ चंद खिलौना चाहे और हम कौनों चीज से ना मांगे मान है सो कह रहे।

है भीमकुंड के नाम से, वो क्षेत्र की खोज डिस्कवरी के चैनल के लोग आके कर गए कि देखो जो पानी आप वो कहाँ आ रहा और कहाँ तक ये छोड़ है जा देखो, पर बे लोग भी पता नहीं लगा पाए। तो कह

जाना तो ये महुआ और चरवा के बारे में, जो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध मतलब फल कह लो या जो भी कहो आप, बहुत प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। सो कहो जाते देखी महुआ और चरवा, देखी नदियाँ और नरवा। और हमारे बुंदेलखंड में नदियन का माता स्वरूप मानो जाता है।

कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे आकांक्षा मिश्रा और उनके साथियों का बुंदेली गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वामी जी के दार्जिलिंग में रहते समय जब सर्वप्रथम उनकी जाति च्युति को लेकर अशोभनीय वाद विवाद आरंभ हुआ, तब वे इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। और जानते भी कैसे, वे तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाकर मां काली का दर्शन कराए थे। वहां मंदिर के कर्मचारियों तथा विश्वास महाशय के पुत्रों ने उनके साथ प्रीति एवं श्रद्धापूर्ण व्यवहार ही किया था, अतएव उन्हें कैसे आन हो सकता था कि इसके बाद ही शत्रुगण एक काल्पनिक घटना रचकर कहेंगे कि समुद्र यात्रा के फलस्वरूप जाति च्युत हो जाने के कारण उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था।
1: और यदि सचमुच ही ऐसा हो जाता तो क्या इसमें स्वामी जी के कार्य में कोई स्थायी बाधा उत्पन्न हो जाती, या फिर क्या स्वामी जी का हृदय इससे कांप जाता? उनके परवर्ती काल के एक पत्र से पता चलता है कि वे इस प्रकार की अवज्ञा को किस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। स्टडी के कुछ मिथ्या आरोपों के उत्तर देते हुए उन्होंने 14 सितंबर 1899 ईस्वी को लिखा था,
2: भारत में अनेक लोगों ने यूरोपीय लोगों के साथ भोजन करने पर भी आपत्ति दिखाई है। मैं यूरोपियन लोगों के साथ खाता हूँ, इसलिए मुझे एक पारिवारिक देवालय से निकाल दिया गया था। मैं तो ऐसा नमनीय हो जाना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी इच्छानुसार मुझे मोड़ सके, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे देखने में नहीं आया जो सबको संतुष्ट कर पाया हो।
0: इस पत्र को पढ़ने से बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्वामी जी ने स्टडी को उल्टा जवाब देने के लिए तर्क के रूप में ही त्रैलोक्यनाथ विश्वास का काल्पनिक विवरण स्वीकार करते हुए लिखा था कि उन्हें एक पारिवारिक देवालय अर्थात रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर स्थित कालीबाड़ी से निकाल दिया गया था, परंतु इसके बाद 1898 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के समय उन्हें सचमुच ही उस मंदिर में प्रवेशाधिकार से वंचित कर दिया गया था। उत्सव के पूर्व ही विश्वास परिसर की यह मनसा जानकर 15 नवंबर 1897 ईस्वी को स्वामी जी ने लिखा था, इस बार महोत्सव होना तक असंभव है क्योंकि रासमणि के मंदिर उद्यान के मालिक मेरे विदेश हो जाने के कारण मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे।
1: स्वदेश और विदेश में इस प्रकार के विरोध और युक्तिहीन लोक निंदा की बातें सुनकर भी स्वामी जी ने निर्भीक हृदय के साथ मैरी को 9 जुलाई 1897 को लिखा था,
2: प्रिय मैरी, मेरे लिए भय बिल्कुल मत करना। कुछ भी हो, मैंने जितना कार्य किया है उसी से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने कभी मंसूबा बांधकर कुछ नहीं किया। चीजें जैसे जैसे सामने आती गईं, उन्हें मैं वैसे वैसे स्वीकार करता गया। केवल एक ही चिंता मेरे मस्तिष्क में दहक रही थी और वो ये कि भारतीय जनता को उन्नत करने वाले एक यंत्र को चालू कर दूं। इस कार्य में मुझे कुछ हद तक सफलता मिली है। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंद से प्रफुल्लित हो जाता कि किस प्रकार मेरे लड़के अकाल रोग तथा दुख दर्द के बीच कार्य कर रहे हैं। हैजे से पीड़ित पैरिया की चटाई के पास बैठे उसकी सेवा कर रहे हैं, भूखे चंडाल के मुख में अन्न दे रहे हैं, प्रभु मेरी तथा उन सब की सहायता कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे क्या परवाह, क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूं और समस्त सांसारिक प्रपंचों की असारता जान चुका हूं। क्या मैं बच्चों की तोतली बोली सुनकर अपने मार्ग से हट जाऊंगा? मुझे देखकर क्या ऐसा ही लगता है?
0: स्वामी विवेकानंद का संन्यास ग्रहण करने के उपरांत हिंदू धर्म का प्रचारक होने का दावा करना, समुद्र यात्रा तथा विदेशियों का आहार ग्रहण करना आदि को केंद्र बनाकर देश विदेश में जो वाद प्रतिवाद अथवा शत्रु पीड़न का जो उत्साह दिख पड़ा था, उसी की चरम परिणति मिलती है कि प्रेमदास मित्र को लिखित स्वामी जी के 30 मई 1897 के पत्र में मेरी को लिखित पत्र में उत्तर है, उदासीनता है और विरोचित आत्मतुष्टि का भाव है। परंतु वे सब बातें प्रधानतः अमरीकी समाज को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। प्रेमदास बाबू को लिखित पत्र भारतीय परिवेश में एक सुशिक्षित पुरातन पंथी पुराने मित्र को उपदेश देने के निमित्त लिखा गया था। प्रेमदास बाबू को लिखा यही उनका अंतिम पत्र है और इसी पत्र में हम ये भी देखते हैं कि जटिल प्राचीन समाज बातों में तो कट्टरता प्रदर्शित करता है, तदापि अंतर में पश्चिम की वाहवाही पाने को लालायित रहता है और व्यवहार में दुर्बल एवं दरिद्रों के शोषण में लगा रहता है। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट भाषा में अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए सब प्रकार से समझौता करके चलने की नीति पर मोटा पर्दा डाल दिया। उस पथ की इतिश्री हो गई। प्रमदा बाबू को लिखे उस पत्र के उल्लेखनीय अंश ये हैं।
2: सुनने में आया कि हिंदू धर्म के गोरे मिशनरियों के आप विशेष मित्र हैं और दुष्ट काले भारतवासी आपकी घृणा के पात्र हैं। जो मिल जाए सो खाता हूं, वो भी जिस तिस के साथ और सबके सामने, चाहे देश हो या परदेश। उपनिषद और गीता सच्चे शास्त्र हैं और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य नानक कबीर आदि सच्चे अवतार हैं, क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान अनंत थे। और भी एक विसंगति है, दिन पर दिन मेरी ये दृढ़ धारणा होती जा रही है कि जाति बोध ही सर्वाधिक भेद उत्पन्न करने वाला और माया का मूल है। चाहे जन्मगत हो या गुणगत, हर प्रकार का बाहर का जाति भेद बंधन ही है। कोई कोई मित्र सुझाते हैं कि वो मन में रहे, पर बाहर के व्यवहारिक जगत में तो जाति आदि को बनाए रखना होगा। मन नहीं, मन अभेद, बुद्धि और बाहर पिशाच का नृत्य, अत्याचार, उत्पीड़न और गरीबों के लिए साक्षात यम, जाति आदि पागलपन के विचार केवल पुरोहितों द्वारा लिखित ग्रंथों में ही पाए जाते हैं, ईश्वर प्रणीत ग्रंथों में नहीं। पुरोहितों के पूर्वजों के कर्मों का फल पुरोहित ही भोगें। मैं तो ईश्वर की वाणी का अनुसरण करता हूं, उसी से मेरा कल्याण होगा। एक और बात मेरी समझ में आई है कि परोपकार ही धर्म है और बाकी याग यज्ञ इत्यादि सब पागलपन है। अपनी मुक्ति की इच्छा भी अनुचित है। जिसने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे दिया है वही मुक्त होता है, और जो लोग मेरी मुक्ति रटते हुए दिन रात सिर खपाते हैं वे इतो नष्ट स्ततो भ्रष्टः बनकर भटकते रहती हैं। ऐसा भी अनेकों बार मेरे देखने में आया है।
1: सभी दृष्टियों से एक सुंदर उत्तर है। शास्त्र दर्शन युक्त व्यवहारिकता और नवीन युग दर्शन, इसमें सब कुछ है। और मजे की बात तो ये है कि प्रतिपक्ष की ओर से जो लोग शूद्र नरेंद्र नाथ को धराशायी कर सच्चे धर्म की विजय पताका को उड़ते देखने को ठान कर युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, योगेंद्र नाथ बसु, त्रैलोक्यनाथ विश्वास, प्रमदा दास मित्र, बैरोज, वे सभी अब्राह्मण थे। वैसे तो ये पत्र जन साधारण के लिए प्रकाशित होने की संभावना न थी, फिर भी परवर्ती युग के भारतीय परिदृश्य में स्वामी जी को समझने के लिए ये अमूल्य है। पश्चिम में भी ठीक ऐसा ही एक सर्वांग सुंदर उत्तर मिलता है। डॉक्टर जेन्स को लिखित श्रीमती ओली बुल के 7 जून 1897 के इस पत्र में।
3: कैलिफोर्निया के अखबार की कटरन के लिए धन्यवाद। डॉक्टर बैरोज ने छप इतने स्पष्ट भाषा में विवेकानंद को मिथ्यावादी कहकर निंदा की और इस कारण उन पर यह आरोप लगा है कि वे जानबूझकर मद्रास में डॉक्टर बैरोज से नहीं मिले, तब डॉक्टर बैरोज के ही भले के लिए मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि वे उन सुप्रचारित स्वागत सूचक पत्रों का बिल्कुल भी उल्लेख न करते तो अच्छा होता, जिनमें स्वामी जी ने हिंदू से अनुरोध किया था कि डॉक्टर बैरोज का हिंदू धर्म अथवा उनके अपने धर्म के बारे में चाहे जो भी अभिमत हो उन पर विचार न कर उपयुक्त सद्भाव पूर्ण ढंग से उनका वैसा ही स्वागत किया जाए जैसा कि डॉक्टर बैरोज और श्री बोनी ने शिकागो में एकत्र प्राच्य प्रतिनिधियों के प्रति सदैव व्यवहार किया था, जिस समय समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व आंतरिकता एवं उत्साह के साथ स्वामी का स्वागत करने को तैयार हो रहा था। उस समय उनके प्रचारित पत्रों के साथ जब हम स्वदेश लौटकर कैलिफोर्निया में ठिया खाए डॉक्टर बैरोज के विवेकानंद संबंधी व्यक्तित्व की तुलना करते हैं तो उनमें कैसा विपरीत भाव दिखाई देता है। भारतीय जनता के मूल्यांकन करने के लिए दोनों व्यक्तियों का कैसा विपरीत चित्र उपस्थित करता है।
0: श्रीमती बुल ने डॉक्टर जेन्स को खेद जताते हुए बहुत लंबा खत लिखा था, जिसमें स्वामी जी के प्रति लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इस प्रसंग के अंत में हम स्वामी जी के 3 मार्च 1898 के एक पत्र का अंश भी उद्धृत करना चाहेंगे कि जिसमें यह स्पष्ट होता है क्यों वे बैरोज साहब से बिना मिले ही मद्रास चले गए थे और उस समय वे कितना अस्वस्थ थे। उन्होंने लिखा था,
2: लंदन से लौटकर जब मैं दक्षिण भारत में था तो शरीर में शक्ति का पूर्ण ह्रास तथा चरम अवसाद आ गया और मुझे तुरंत मद्रास छोड़कर अपेक्षाकृत ठंडे उत्तरांचल में जाना पड़ा। एक दिन भी विलंब करने का अर्थ होता उस भीषण गर्मी में और भी एक सप्ताह जहाज के लिए प्रतीक्षा करना। खैर, मुझे बाद में पता चला कि अगले दिन श्री बैरोज मद्रास पहुंचे और अपनी अपेक्षा के अनुसार मुझे वहां ना पाकर बड़े नाराज हुए। वैसे मैंने वहां उनके स्वागत तथा आवास का प्रबंध कर दिया था। उन बेचारे को क्या मालूम कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था।
1: बैरोज के लिए लिखे गए अभिनंदन पत्र पर स्वामी जी का भी हस्ताक्षर था और उनका नाम देखकर और भी अनेक हिंदू सज्जनों ने उस पर दस्तखत किए थे।
0: एक वर्ग के लोगों ने जातिवाद के आधार पर स्वामी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, तथापि उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु संपूर्ण देश में और विशेषतः त्रावणकोर राज्य में उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के लोग जिस प्रकार पीड़ित किए जा रहे थे उससे वे विचलित हुए थे और उसे दूर करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। इसलिए हम देखते हैं कि 3 अप्रैल 1897 को वे निवेदिता के नाम पर पत्र में लिखते हैं,
2: भारत की पीड़ित जनता के लिए तुम कर सको ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्य का मुझे अभी अभी पता चला है। जिन सज्जन को तुमसे परिचित कराने का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया है वे मालाबार केरल के एक देशी राज्य तिया जाति के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में हैं। तिया लोग एक निम्न जाति के हैं। तुम्हें इन सज्जन से पता चलेगा कि केवल जाति के कारण ये बेचारे गरीब लोग कैसे सताए जाते हैं। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के कारण भारत की अंग्रेज सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। एकमात्र ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उनकी आशा है। इस बात को ब्रिटेन के जनसमाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार तुम जो भी कर सको करो।
0: इसी समय एक दिन स्वामी जी माताजी तपस्विनी के आमंत्रण पर शिष्य शरद बाबू को लेकर महाकाली पाठशाला के निरीक्षण के लिए गए। विद्यालय की शिक्षा प्रणाली देख स्वामी जी संतुष्ट हुए। लौटते समय वार्तालाप के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए मठों की स्थापना करने के साथ ही साथ नारी मठ स्थापित करने की भी इच्छा है। वहां पर ब्रह्मचारिणी व सन्यासिनी सुशिक्षित बनकर नारी जाति की उन्नति व शिक्षा के लिए प्रयत्न करेंगी।
1: उन्होंने और भी कहा था कि वे जातीय आदर्श के अनुसार जीवन जीने की कोशिश न करते हुए भारतीय स्त्रियों को अभी से जातीय भाव में शिक्षा देना ही कर्तव्य है। वे शिक्षित होकर अपने भले बुरे को स्वयं ही समझ लेंगी। इसके लिए पुरुषों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है और कर्म क्षेत्र में नारी की स्वाभाविक दक्षता स्वतंत्र रूप में यदि राष्ट्र की उन्नति के लिए नियुक्त हो तो कल्याण होगा। इन दिनों स्वामी जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। अल्मोड़ा जाने से पहले उन्होंने 28 अप्रैल को मैरी को लिखा था,
2: मेरे गुच्छे के गुच्छे बाल सफेद हो रही हैं, मुख पर चारों ओर झुर्रियां पड़ गई हैं और शरीर का मांस घट जाने से मेरी आयु और भी 20 वर्ष बढ़ गई प्रतीत होती है। अब मैं दिन पर दिन तेजी से दुबला होता जा रहा हूं। उसका कारण ये कि मुझे केवल मांस खाकर रहना पड़ रहा है। रोटी नहीं, भात नहीं, आलू नहीं, इतना ही क्या, अब मैं एक बड़ी दाढ़ी रख रहा हूं जिसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। हे सफेद दाढ़ी, तुम कितनी ही चीजें छुपा सकती हो, धन्य हो तुम।
1: अल्मोड़ा जाने से एक दिन पहले यानी 5 मई को स्वामी जी ने श्रीमती बुल को लिखा था,
2: अपने बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मैं एक महीना दार्जिलिंग में था। अब मैं काफी अच्छा हो गया हूँ। दार्जिलिंग में रोग पूरी तौर से भाग गया। स्वास्थ्य को पूरा ठीक करने के लिए कल मैं अल्मोड़ा नामक एक अन्य पहाड़ी स्थान में जा रहा हूँ।
0: दोनों पत्रों को एक साथ पढ़ने से पाठकों को सहज ही प्रतीत होगा कि स्वामी जी ने यद्यपि अपने स्वस्थ हो जाने की बात लिखी है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे रोग, शोक, आपत्ति, विपत्ति आदि की विशेष परवाह नहीं करते थे। अतः भयानक रोग को भी कुछ नहीं कहकर उड़ा देना उनके लिए असंभव न था। वस्तुतः इसी आयु में बालों का पक जाना और आटा, चावल, आलू तथा मीठी चीजों का निषिद्ध हो जाना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यद्यपि उन्होंने दार्जिलिंग में रोग मुक्त होने तथा अल्मोड़ा में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की बात लिखी थी, तथापि चिकित्सकों के उनके सहमत न होने के यथेष्ट कारण थे। उन लोगों ने स्वामी जी को ग्रीष्म काल में समतल में न रहकर पहाड़ों में बिताने की सलाह दी थी।
1: 6 मई को उन्होंने अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया। कुमारी मूलर पहले ही भारत पहुंच चुकी थी और स्वामी जी की यात्रा के पूर्व ही वे गुडविन के साथ देहरादून होते हुए अल्मोड़ा पहुंच चुकी थी। स्वामी जी के आगमन की संभावना जानकर अल्मोड़ा वासियों ने इसमें विशेष उत्सुकता दिखाई और आग्रह पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया।
0: अल्मोड़ा जाते समय लखनऊ में उनके अनुरागी मित्रों तथा भक्तों ने उनका सादर स्वागत किया और उन्होंने भी एक दिन वहां ठहरकर विश्राम किया। लखनऊ से ट्रेन में यात्रा कर हिमालय के द्वार पर स्थित काठगोदाम स्टेशन 9 मई पहुंचने पर पता चला कि उन्हें साथ ले जाने को अल्मोड़ा से गुडविन आए हुए हैं। आलम बाजार मठ से स्वामी जी योगानंद भी स्वामी जी के साथ आए हुए थे।
1: अल्मोड़ा के निकट लोदिया नामक स्थान में 11 मई को पहुंचने पर एक विशाल जनसमूह ने जय ध्वनि के साथ स्वामी जी का हार्दिक स्वागत किया। ये लोग स्वामी जी के लिए एक सुसज्जित घोड़ा ले आए थे, उसी के पीठ पर उन्हें बैठाकर एक शोभा यात्रा और अविराम जय ध्वनि के साथ लोग उन्हें नगर की ओर ले चले।
0: सभा स्थल में पहुंचने पर देखा गया कि वहां लगभग 5,000 लोग एकत्र हो गए हैं।
1: ऋषि मुनियों की निवास भूमि, आध्यात्मिक संपदा तथा माओं से परिपूर्ण गिरिराज हिमालय के साथ स्वामी जी का बचपन से ही एक तरह का घनिष्ठ लगाव था। अतः इन मान पत्रों का उत्तर देते हुए उन्होंने हिमालय का गुणगान करते हुए वहां एक आश्रम स्थापित करने की अपनी आंतरिक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा,
2: यह हमारे पूर्वजों के स्वप्न का प्रदेश है। भारत जननी श्री पार्वती की जन्मभूमि है। ये वो पवित्र स्थान है जहां भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। ये वही भूमि है जहां निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यकाल से ही करता रहा हूं। मेरे मन में इस समय हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है और संभवतः मैं आप लोगों को भलीभांति ये समझाने में समर्थ हुआ हूं कि क्यों मैंने अन्य स्थानों की तुलना में इसी स्थान को सार्वभौमिक धर्म शिक्षा के एक प्रधान केंद्र के रूप में चुना है। इन पहाड़ों के साथ हमारी जाति की श्रेष्ठतम स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यदि धार्मिक भारत के इतिहास से हिमालय को निकाल दिया जाए तो उसका थोड़ा ही बचा रहेगा। अतएव यहां एक केंद्र अवश्य होना चाहिए। यह केंद्र केवल कर्म प्रधान न होगा बल्कि यहां निस्तब्धता, ध्यान तथा शांति की प्रधानता होगी और मुझे आशा है कि एक न एक दिन मैं इसे रूपायित कर सकूंगा।
0: इन्हीं दिनों स्वामी शिवानंद अल्मोड़ा में तपस्या कर रहे थे। वे भी स्वामी जी के साथ आ मिले। और भी जो गुरु भाई या शिष्य स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा आए थे अथवा बाद में आकर उनसे मिले थे या फिर कुछ दिनों बाद उनके उत्तर भारत के भ्रमण के दौरान उनके संगी हुए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी योगानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी अद्वितानंद तथा स्वामी विज्ञानानंद। ये सभी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और स्वामी सदानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी शुद्धानंद, ब्रह्मचारी कृष्णलाल तथा श्री जे जे गुडविन, ये सभी स्वामी जी अथवा उनके गुरु भाइयों के शिष्य थे।
1: आर्य समाज के भूतपूर्व प्रचारक स्वामी अच्युतानंद भी कुछ काल तक स्वामी जी के साथ रहे। ये श्री रामकृष्ण संघ के न थे और उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते। इनमें जब जो लोग अल्मोड़ा में रहते स्वामी जी दल के साथ आमोद प्रमोद में दिन बिताते। व्यायाम तथा स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त वे घोड़े पर चढ़कर दूर दूर तक भ्रमण करते। 29 मई को उन्होंने कलकत्ता के चिकित्सक डॉक्टर शशि भूषण घोष को लिखा था,
2: सुबह शाम घुड़सवारी के रूप में मैंने यथेष्ट व्यायाम प्रारंभ कर दिया है और इसके फलस्वरूप मैं सचमुच ही काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
0: अल्मोड़ा पहुंचकर शहर में कुछ दिन बिताने के बाद गर्मी के कारण वे वहीं से 20 मील दूर देवलधार नामक अपेक्षाकृत ठंडे स्थान में स्थित लाला चिरंजी लाल के एक उद्यान में चले गए। वहां प्रचुर मात्रा में फल विशेषकर खुबानी होने के कारण वे उन्हीं को खाते तथा नैनीताल से अन्य प्रकार के फल भी मंगा लेते। ये सारा संवाद देते हुए उन्होंने डॉक्टर साहब को अंत में लिखा था,
2: इस समय मैं अपने आप को खूब बलवान महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर, आजकल जब मैं बर्फ से ढके पर्वत शिखरों के सम्मुख बैठकर उपनिषद के अंशों का पाठ करता हूँ, उस समय तुम यदि काश एक बार मुझे देख पाते। रामकृष्ण मिशन की कलकत्ते की सभाओं की सफलता की खबरें पाकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ। जो लोग इस महान कार्य में सहायक हो रही हैं, उनका सर्वांगीण कल्याण हो।
0: शारीरिक अस्वस्थता के कारण हिमालय पहाड़ के निर्जन फलोद्यान में दिन बिताने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। वहां रहकर भी वे इन बातों पर विचार करते और दूसरों को परामर्श भी देते। स्वामी जी ब्रह्मानंद के नाम लिखे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है। उस समय वे कलकत्ते के पास एक स्थायी मठ निर्माण के लिए आवश्यक धन के बारे में सोच रहे थे। कभी मुर्शिदाबाद जिले में चल रहे अकाल राहत कार्य के बारे में सलाह देते, मद्रास में शुरू किया गया केंद्र के लिए असिस्टेंट की बातें सोचते थे। मेरी हेल्बास्टर को लिखे 2 जून के पत्र में लिखा,
2: अल्मोड़ा के एक व्यापारी के एक सुंदर उद्यान में हूँ। परसों रात एक चीता यहाँ धमका और बाग में रखे झुंड में से एक बकरा उठा ले गया। मिस मूलर की तुम्हें याद है ना, कुछ दिन रहने के लिए वे यहाँ आई हुई हैं, परंतु चीते वाली घटना सुनकर डर सी गई हैं।
1: देवलधार के उद्यान में कई सप्ताह बिताने के बाद 19 जून को वे अल्मोड़ा लौट आए। स्वयं को उस समय वे काफी स्वस्थ अनुभव कर रहे थे, तथापि संगीगण उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ नहीं मानते थे। अल्मोड़ा निवास के दौरान वे स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप करते और अनेक देशी विदेशी मित्रों को पत्र लिखकर अपने विभिन्न भावी कार्यों के विस्तार हेतु क्षेत्र तैयार करते। वैसे उस समय भारत में होने के कारण भारतीय कार्य ही प्रधानतः उनके मन पर अधिकार जमाए हुआ था और इस विषय में उनका मत था,
2: कर्म कर्म कर्म, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पोथी पत्र विद्या योग ध्यान और ज्ञान प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान है। प्रेम में ही अणिमादि सिद्धियां हैं, प्रेम में ही भक्ति है, प्रेम में ही ज्ञान है और प्रेम में ही मुक्ति है। यही तो पूजा है, मानव रूपधारी ईश्वर की पूजा। ये तो आरंभ मात्र है। इसी प्रकार क्या हम संपूर्ण भारत पृथ्वी भर में नहीं छा जाएंगे?
0: इन्हीं दिनों स्वामी जी की सफलता पर जलते हुए कुछ लोगों ने उन पर चौतरफा आक्रमण चलाया था। स्वामी जी ने इस पर मेरी को पत्र लिखकर कहा था,
2: मैं समझ रहा हूं कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। जीवन के अधिक से अधिक 3-4 वर्ष बचे रहे हैं। अपनी मुक्ति की इच्छा अब मुझमें बिल्कुल नहीं है और सांसारिक सुख की कामना तो मैंने कभी की नहीं। मैं अपने यंत्र को खूब सशक्त रूप से शुरू हो गया देखना चाहता हूं और जब मैं निश्चित रूप से समझ लूंगा कि मानव जाति के कल्याणार्थ मैंने एक ऐसा यंत्र अंततः भारत में चालू कर दिया है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, तब भविष्य की चिंता छोड़कर मैं सो जाऊंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बारंबार जन्म लेकर हजारों दुख भोगता रहूं ताकि समस्त आत्माओं के समष्टि रूप अपने उस एकमात्र ईश्वर की पूजा कर सकूं जो सचमुच विद्यमान है और जिन पर मुझे विश्वास है। सर्वोपरि सभी जातियों तथा सभी वर्णों के पापी तापी तथा निर्धन रूपी ईश्वर ही मेरे विश्वास तथा उपास्य हैं।
0: अल्मोड़ा में इसी प्रकार कई दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को वे पुनः देवलधार गए। सेवियर दंपत्ति उस समय शिमला में थे, मिस मूलर अल्मोड़ा में थी और गुडविन स्वामी के आदेश पर मद्रास चले गए थे।
1: इसी काल में एक अन्य पत्र में स्वामी जी की स्वभाव सुलभ निर्भीक सत्यवादिता का उदाहरण मिलता है। कुमारी मैकलाउड भारत आना चाहती थी। स्वामी जी ने उन्हें इसके लिए सस्नेह आमंत्रित किया था, तथापि अपने 10 जुलाई के पत्र में उन्होंने भारतीय हालात तथा उसके साथ पाश्चात्य जीवनधारा के मापदंड के पूर्ण पार्थक्य के विषय में एक ऐसा सटीक तथा निरावरण चित्र खींचा था जो केवल स्वामी जी के लिए ही संभव था। उन्होंने लिखा था,
2: जैसे भी बने तुम यहाँ आ जाओ, केवल इतना ही स्मरण रखना कि यूरोपीय तथा भारतीय का साथ रहना तेल तथा जल के समान है। नेटिव लोगों के साथ मिलना जुलना यूरोपीय लोगों के लिए एक बड़ी भयानक बात है। सर्वत्र धूल कीचड़ और काले आदमी, परंतु दार्शनिक चर्चा करने वाले लोग भी तुम्हें अनेक मिलेंगे।
0: अनुरागी भक्तों को वे चाहते थे, परंतु मिथ्या आशा के धोखे में रखकर नहीं। निवेदिता के भारत आने के पूर्व उन्होंने उन्हें भी ठीक इसी प्रकार या इससे भी स्पष्ट रूप से सावधान कर दिया था। कहना न होगा कि इस प्रकार जान सुनकर भी इन दो महामना महिलाओं ने यहां आकर भारत की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। इन दोनों महान महिलाओं ने भारत के सर्वहारा वर्ग के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। उनके चरणों में हमारा कोटिशः प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।